0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 6 বজাত হিন্দীত আৰু 6:05 ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে চন্দ্রশেখর শর্মা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
2: दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने SRCC के संस्थापक श्री राम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉ दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। डॉ शर्मा अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे। डॉ शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के संसद सदस्य हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की यह सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण जल तथा कृषि उप मंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। सऊदी में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी वे बातचीत करेंगे। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल भारत के 3 दिन के दौरे पर कल भारत आएंगे। इस दौरान वे दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। श्री बेटेल चेन्नई भी जाएंगे और IIT मद्रास के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में सीतापुरा स्थित आयन डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र पर NEET PG की पुनर्परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार जयपुर के 5 केंद्रों पर परीक्षा सुचारू तरीके से संपन्न हुई। पिछले महीने की 30 तारीख को जयपुर के परीक्षा केंद्रों में बिजली की समस्या के कारण 2,445 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी नहीं हो सकी थी। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितंबर को होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। महिला क्रिकेट में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए 2020 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर 57 रन बनाए और आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। बाएं हाथ की स्पिनर श्री चंडी ने 7 रन देकर 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के चलने की संभावना व्यक्त की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड में ऐसी स्थिति बने रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi has urged young Indians to dream even bigger than previous generations and build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. Mr. Modi said, "Today, Indians are leading the top companies of the world, so why can't companies built by Indians lead the world?" The Prime Minister was addressing centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce at Delhi University yesterday evening. Mr. Modi said, "India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength." He said, "India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism." He said, "The world is watching India become the fastest growing major economy."
2: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
3: Presenting hard economic data to counter persistent critics, the Prime Minister detailed that between April and June, electricity production increased by 9%. Mr. Modi said overall vehicle sales surged by over 20% during the period, driven by 20% growth in two-wheelers and nearly 30% in three-wheelers. He stressed that an 8% increase in steel and cement consumption proves that construction, housing and commercial activity are expanding rapidly. Mr. Modi shared that smartphone exports now exceed 2.5 lakh crore rupees, while domestic defense production has hit an all-time high of nearly 2 lakh crore rupees, contrasting past struggles with today's achievements. The Prime Minister emphasized that terrorism has been defeated with armed forces confidently striking enemies in their own homes and peace restored from Jammu and Kashmir to the northeast. President Draupadi Murmu has appointed Dr. Dinesh Sharma as the Lieutenant Governor of the Andaman and Nicobar Islands. Dr. Sharma will succeed Admiral Devendra Kumar Joshi, retired, who was serving as Lieutenant Governor of the Islands since October 2017. Dr. Sharma is presently a Rajya Sabha MP from Uttar Pradesh and has also served as Deputy Chief Minister of the state. Union Home Minister Amit Shah arrived in Goa last night on a three-day visit, during which he will chair the 28th meeting of the Western Zonal Council. Today, he is scheduled to chair a Home Ministry meeting, address a press conference and inaugurate the BJP's new state office. In Chhattisgarh, the National Investigation Agency's special court in Jagdalpur has convicted all 10 accused in Jhelum Valley Maoist attack case under various charges. A total of 11 accused were tried in the case, of whom one died during the trial. The court found all 10 accused, including two women, guilty of the murder of 29 people and attempt to murder 15 others. The order on the quantum of punishment has been reserved for September 16th. In May 2000.

0: सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे श्री सिंह की ये सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण, जल तथा कृषि उप मंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। वे सऊदी में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: नई दिल्ली में इस महीने की 12 और 13 तारीख को आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। ये आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समानांतर होगा। सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, भरोसेमंद बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। एक रिपोर्ट।
4: संप्रभु धन कोष, पेंशन कोष और परिवार कार्यालय कुल मिलाकर $1 ट्रिलियन मूल्य की संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमेरिकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितम्बर को होगा। दिल्ली में नकली दवा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली पुलिस की अपराध नियंत्रण शाखा ऐसी आपराधिक गतिविधियों की पहचान के लिए लगातार निगरानी कर रही है, जिससे गलत लेबल वाली और नकली दवाओं के निर्माण और वितरण को रोका जा सके।
5: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी मिलने पर दिल्ली पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। इसी लगातार निगरानी और कार्रवाई के तहत दिल्ली अपराध शाखा ने इस साल अप्रैल में दिल्ली में बिना लाइसेंस वाली जगह से गलत लेबल वाली और खराब गुणवत्ता की रेबीज वैक्सीन जब्त की थी। पिछले महीने की 27 तारीख को एक सूचना के जरिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने सभी राज्यों के ड्रग्स कंट्रोलर से कहा कि वे अपने इंस्पेक्टर स्टाफ को अलर्ट करें और दवा के गलत लेबल वाले बैच की आवाजाही, वितरण और उपलब्धता पर कड़ी नजर रखें। DCGI ने यह भी पुष्टि की है कि संबंधित बैच का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश में निर्यात नहीं किया गया था। अस्पतालों, क्लिनिकों और सरकारी हेल्थ केयर सेंटरों में दी जाने वाली वैक्सीन सिर्फ लाइसेंस वाली फार्मेसियों के जरिए ही दी जाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र के मेलाघाट और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के पुनर्वास मामले में देश के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं। इन केंद्रों में गिद्धों को पाला गया।

0: और उनके जीवित रहने की दर उत्साहजनक रही है। एक रिपोर्ट।
1: बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के अनुसार दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच दोनों अभयारण्यों में कुल 29 गिद्ध छोड़े गए थे। BNHS ने कहा है कि यह सफलता दर्शाती है कि गिद्धों को पर्याप्त शिकार और कम मानवीय हस्तक्षेप वाले बाघ अभयारण्यों में छोड़ना एक प्रभावी तरीका साबित हो सकता है। ये परिणाम देश में घटती गिद्ध आबादी के संरक्षण और पुनर्स्थापना के प्रयासों को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देते हैं। प्रार्थना के साथ माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का दिल का दौरा पड़ने से गिरिडीह के मर्सी अस्पताल में निधन हो गया है। देर रात तबीयत खराब होने के बाद उन्हें रात करीब 2 बजे अस्पताल लाया गया, जहां सुबह करीब 4 बजे उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुदिव्य कुमार सोनू के निधन को अपनी व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन झारखंड की अस्मिता, अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई को समर्पित कर दिया। ईरान की नौसेना ने होर्मुज जल डबरू मध्य से गुजर रहे 3 तेल टैंकरों और अमरीका से जुड़े 3 जहाजों पर हमले का दावा किया है। इससे पहले अमरीका ने फारस की खाड़ी और ओमान सागर में 3 ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किया था। महिला क्रिकेट में दुबई में T20 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर और 1 गेंद में महज 55 रन बनाकर आउट हो गई। ये T20 में उसका अब तक का सबसे कम स्कोर है। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से स्पिनर श्री चरणी और प्रेमा रावत ने 3-3 जबकि दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट हासिल किए। ये मैच हरमनप्रीत का बतौर कप्तान 150वां T20 मैच था। वे पुरुष या महिला क्रिकेट में ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली कप्तान हैं। बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में उनका मुकाबला आज चीन के हेजीटिंग और रेन जियांग यू की जोड़ी से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज में दिए गए वक्तव्य को प्रमुखता दी है। युवा ही विकसित भारत बनाएंगे, मुझे पूरा भरोसा। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री की युवाओं को सलाह को सुर्खी बनाया है, बड़े सपने देखें और पूरा करने में जान लगा दें। जनसत्ता ने खतरा शीर्षक से IIT मंडी के शोध को प्रकाशित किया है। हिमाचल में आकार में तेजी से बढ़ रही 9 हिमनद झीलों की पहचान हुई। एक दशक में हिमालय क्षेत्र में हिमनद झीलें करीब 30% बढ़ी। 457 साल बाद बदलेगा दुनिया का नक्शा, लिखता है राजस्थान पत्रिका। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पारित, भारत सहित 164 देशों का इक्वल अर्थ मानचित्र के पक्ष में वोट। वर्ष 1569 में बने मर्केटर प्रोजेक्शन की जगह वर्ष 2018 के इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अमर उजाला ने न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को प्रमुखता दी है। 1200 बेकाबू AI एजेंट्स ने इंटरनेट पर बना ली खुद की सरकार। पकड़े जाने के डर से मिटाए सबूत, ओपन AI और एंथ्रोपिक ने रोकी सबसे ताकतवर मॉडल की ट्रेनिंग। नवभारत टाइम्स ने परवरिश पृष्ठ पर AI की बढ़ती दखलंदाजी को प्रमुखता दी है। पेरेंट्स की जगह तो नहीं ले रहा AI, मम्मी पापा नहीं समझ पा रहे बच्चों को चैटबॉट से क्या हो रहे हैं नुकसान। पत्र ने बचाने के रास्ते भी दिए हैं। चैट हिस्ट्री जरूर देखें, अपना ज्यादा से ज्यादा समय दें, AI को दोस्त बनने से रोकें और हर जवाब तुरंत मत लेने दें।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, भारतीय युवा परामर्श, लेखा, वित्त और कानून से जुड़ी ऐसी संस्थाओं का निर्माण करें जो वैश्विक स्तर की हों। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। एनआईए की विशेष अदालत ने 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड में 10 माओवादियों को दोषी ठहराया। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आए ब्रिक्स सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। और क्रिकेट में भारत ने दुबई में महिला टी20 एशिया कप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses centenary celebrations of Shri Ram College of Commerce at Delhi University, calls upon young Indians to build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. BJP Rajya Sabha MP Dinesh Sharma appointed Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands. NIA Special Court convicts 10 Maoists in 2013 Chhattisgarh Jhiram Valley Massacre case. IBRICS Summit to be held in New Delhi. On the sidelines of BRICS Summit on the 12th and 13th of this month, over 500 institutional investors, finance ministers and business leaders to participate in the two-day event. And in cricket, India beat Pakistan by 7 wickets in the Women's T20 Asia Cup match in Dubai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has urged young Indians to dream even bigger than previous generations and build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. Mr. Modi said, today Indians are leading the top companies of the world, so why can't companies built by Indians lead the world? Prime Minister was addressing the centenary celebrations of Shri Ram College of Commerce SRCC at Delhi University yesterday evening.
5: कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
4: Mr. Modi said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. He said the world is watching India become the fastest growing major economy. Mr. Modi shared that smartphone exports now exceed 2.5 lakh crore rupees, while domestic defense production has hit an all-time high of nearly 2 lakh crore rupees.
5: देश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अपने ऑल टाइम हाई पर है। आज भारत करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन कर रहा है। 2013-14 में हम 600-700 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट करते थे। आज ये आंकड़ा करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है।
4: The Prime Minister said the SRCC has given generations of students the opportunity to learn, grow and make a difference over the years. Mr. Modi said the college has distinguished itself over the years, making a mark for academic excellence. He stated that former Finance Minister Arun Jaitley was an alumnus of SRCC. He said SRCC alumni has left their mark in every sector from arts to politics. Mr. Modi added that together 140 crore Indians will make India both Viksit and Atmanirbhar.
5: मुझे विश्वास है हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। आने वाले समय में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा। आने वाले समय में रिसर्च एंड इनोवेशन का हब हिंदुस्तान होगा। भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की सुपर पावर होगा।
4: The Prime Minister highlighted the profound significance of this 100-year milestone for both the college and the nation's education sector and paid tribute to founder Shri Ram and bowed to his enduring vision. Education Minister Prahlad Joshi in his speech praised SRCC for maintaining its high standard over the years. He said today India is the third largest startup ecosystem under the leadership of Prime Minister Modi. He said that there is a requirement of skilled human resources in the global market. President Draupadi Murmu has appointed Dr. Dinesh Sharma as the Lieutenant Governor of the Andaman and Nicobar Islands. Dr. Sharma will succeed Admiral Devendra Kumar Joshi, who was serving as Lieutenant Governor of the islands since October 2017. Dr. Sharma is presently a BJP Rajya Sabha MP from Uttar Pradesh and has also served as Deputy Chief Minister of the state. Talking to Akashwani News, Dr. Sharma said, whatever assignment is given by the party to him, he will try his level best to perform it.
6: Whatever instruction the Honorable Prime Minister gives are always acceptable to everyone.

0: নমস্কাৰ, এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। সমূহ শ্ৰোতালৈ সাদৰ সম্ভাষণ জনাই মুকলি কৰা হৈছে আজিৰ দ্বিতীয় অধিৱেশন। অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰা হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 289.9 মিটাৰত 1035 কিলোহাৰ্জত আৰু DRM ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 1026 কিলোহাৰ্জত। এতিয়া ডিউটি ৰুমত আছে শ্ৰুতি মেধি, নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষত বিবেক শৰ্মা, আছিফ আহমেদ, ফটিক চন্দ্ৰ বৰ্মন, আয়ুষ্মান জেচি, ট্ৰান্সমিটাৰত আছে অজয় আনন্দ, মিতুল গগৈ আৰু বিজিৎ শৰ্মা, ষ্টুডিঅত মই ৰুলিমণি শইকীয়া। খন্তেক পাছতে পোষ্টবক্স নম্বৰ 111 আকাশবাণী দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব আৰু 12:10 পৰা সৈন্য বাহিনীৰ উদ্দেশ্য।
1: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, मन की बात के विस्तार इस कार्यक्रम में आप जानते ही हैं कि हम हमेशा बात करते हैं उन हस्तियों की, उन घटनाओं की, उस शख्सियत की जो किसी ना किसी प्रकार हमें प्रेरित करती है और हमें एक नया पक्ष जानने के लिए भी आगे बढ़ने का अवसर देती है, हमें कुछ पढ़ने का अवसर देती है, कुछ जानने का अवसर देती है। माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात में जिन विषयों का उल्लेख करते हैं वो हमेशा ही चर्चा का विषय रहते हैं, हमेशा ही प्रेरित करते हैं। और इस बार प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया है मन की बात में अभिनेता उत्तम कुमार का। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उत्तम कुमार सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे। तो किस प्रकार से उन्होंने समाज को कुछ दिया और उनके व्यक्तित्व के कुछ अनछुए पहलू क्या थे, आज इस कार्यक्रम में जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ हैं, संजीव श्रीवास्तव हैं, आप जाने माने फिल्म क्रिटिक हैं, लेखक हैं। इस बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार स्वर्ण कमल पुरस्कार आपको प्रदान किया जा रहा है फिल्म क्रिटिक के तौर पर। हमारे साथ हैं प्रदीप सरदाना जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, फिल्म समीक्षक हैं, विभिन्न चैनल्स पर पत्र पत्रिकाओं में अलग अलग भूमिकाओं में नजर आते हैं। पिछले 50 वर्षों से आप एक सक्रिय पत्रकार के रूप में समाज के बहुत सारे पहलू समाज को ही दिखाते रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। संजीव जी आपका स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: प्रदीप जी आपका स्वागत।
3: धन्यवाद बहुत बहुत।
1: तो आइए श्रोताओं, अब सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं मन की बात का वो हिस्सा जिसमें प्रधानमंत्री जी ने अभिनेता उत्तम कुमार का उल्लेख किया है।
4: मेरे प्यारे देशवासियों, महानायक उत्तम कुमार जी एक वर्सेटाइल एक्टर थे जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में रस बस गए। फिल्म लवर्स का मानना है कि श्रीमान सत्यजीत रे ने फिल्म नायक द हीरो की पूरी स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार जी को ध्यान में रखकर लिखी थी। श्रीमान सत्यजीत रे ने कहा था कि उनमें डिग्निटी के साथ साथ अद्भुत इमोशनल डेप्थ भी था। किरदार को वो जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उत्तम कुमार जी अपनी सहजता के साथ ही फिलैंथ्रोपी के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन से कभी भी हार न मानने की एक और बड़ी सीख भी मिलती है। उनकी शुरुआती फिल्में बहुत नहीं चली लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस बनाए रखा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की। साथियों, मुझे ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो कर रहा था तो मैं उत्तम कुमार जी के घर के सामने से भी गुजरा था। वहां मुझे एक व्यक्ति ने उनकी एक तस्वीर भी भेंट की थी। मैं एक बार फिर महानायक उत्तम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुषे हृदय राज कोरबैन।
1: तो आइए अब अपने सवालों के माध्यम से हम जानना शुरू करते हैं अभिनेता उत्तम कुमार के व्यक्तित्व को और साथ ही समाज से वो किस प्रकार से जुड़े थे इस बारे में। उत्तम कुमार का नाम जहन में आते ही एक करिश्माई मुस्कान सामने आती है, एक रौबिला अंदाज और कैमरे पर सहज अभिनय का जादू हमारी आंखों के सामने तैरने लगता है। लेकिन पर्दे की रोशनी और तालियों की गड़गड़ाहट से परे उत्तम कुमार का एक और रूप भी था। क्या था वो रूप? एक सहृदय इंसान, एक संवेदनशील कलाकार और एक उदार सहयोगी। और भी कई रूप थे जो हमें आज हमारे विशेषज्ञ बताएंगे। सबसे पहले हम उनके अभिनय क्राफ्ट के बारे में जानना चाहेंगे और मैं संजीव जी यहाँ आपसे जानना चाहूंगी, उत्तम कुमार को बांग्ला सिनेमा का पहला ऐसा स्टार माना जाता है जिन्होंने थिएटर की लाउड एक्टिंग शैली को तोड़कर कैमरे के सामने बहुत ही नेचुरल और सटल अभिनय की शुरुआत की थी, तो उनके इस क्राफ्ट के बारे में आप क्या हमें बताना चाहेंगे?
2: बहुत ही अच्छी शुरुआत की आपने नीलम जी, और बहुत ही अच्छा सवाल किया। ये बड़ा अच्छा मौका है कि हम लोग आज उत्तम कुमार जी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने मन की बात प्रोग्राम में किया है। तो इस मौके पर उत्तम कुमार जी को चाहने वाले उनके अभिनय कौशल के बारे में जो भी बारीकियां हैं, जो भी उपलब्धियां हैं, उन सब के बारे में जो भी सिनेमा प्रेमी है, मुझे लगता है कि बहुत ही गहराई से जानना चाहेंगे। और जो आपने सवाल किया है अभिनय क्राफ्ट के बारे में, वह एक बहुत अहम सवाल इसलिए है कि उत्तम कुमार जी का अभिनय जब हम सिनेमा में देखते हैं, फिल्मी पर्दे पर जब हम देखते हैं, तो उनके बारे में एक शब्द बहुत ही खास तौर पर कहा जाता है कि वह बहुत ही मासी एक्टर थे। लेकिन मासी के साथ साथ जब हम उनके अभिनय कौशल को देखते हैं पर्दे पर, तो हमें उनके मासी आमतौर पर ऐसा कहा जाता है एक्टर को कि जो बिल्कुल ही आम दर्शक होते हैं उनको प्रभावित करने वाले कलाकार, लेकिन उत्तम कुमार आम से आम और खास से खास दर्शक को भी उतने ही प्रभावित करते हैं। खास कहने का मतलब मेरा यह है कि जो भी क्लासिक किस्म के जो दर्शक होते हैं, जो बहुत ही गुड सिनेमा को देखते हैं और अभिनय की ऊंचाई को पहचानते हैं, उनकी बारीकियों को, उसमें बहुत एक उनको सुखानुभूति मिलती है, तो वो सब कुछ हम उत्तम कुमार जी के अभिनय कौशल में देखते हैं। तो मासी एक्टर के साथ साथ वो एक मेथड एक्टर के तौर पर भी हमारे सामने आते हैं, और जिस वक्त वो बांग्ला सिनेमा में बतौर अभिनेता अपनी पहचान उन्होंने बनाई, उस वक्त अगर हम देखें तो हिंदी सिनेमा में दिलीप कुमार साहब भी थे, देवानंद साहब भी थे, राज कपूर थे, इतने बड़े बड़े दिग्गज थे, इसके बावजूद उत्तम कुमार जी की जो पहचान थी, आज की शब्दावली में जो हम पैन इंडिया कहते हैं, पैन इंडिया इम्पैक्ट छोड़ने वाला कोई एक्टर, तो वो उस वक्त, आज सोचिए कि इतने सालों पहले हमने उत्तम कुमार जी के अभिनय कौशल में एक पैन इंडिया का प्रभाव हमने देखा था। क्योंकि हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, मेरा पूरा अनुमान है कि उनकी बांग्ला फिल्में जितनी भी हैं उनसे कम वाकिफ होंगे, लेकिन जो हिंदी फिल्में उनकी है, अगर उसमें देखे अमानुष एक बहुत ही चर्चित फिल्म है
1: जी।
2: लेकिन इसके अलावा भी उनकी दूरियां बहुत ही अच्छी फिल्म है, और भी कई सारी फिल्में हैं, दो तीन फिल्में और भी हैं, उनमें अगर हम अभिनय कौशल देखते हैं उनका, तो पता चलता

0: लगता है कि वाकई क्या रेंज है। मासी के साथ साथ वो कितने शानदार मेथड एक्टर के तौर पर भी हमारे सामने आते हैं, और मेथड एक्टर की जब भी बात होती है हिंदी में तो दिलीप कुमार जी का जिक्र करते हैं
1: जी,
0: मासी का जिक्र करते हैं, तो फिर देखिए देवानंद का जिक्र करते हैं। तो दोनों की क्वालिटी, बल्कि दोनों बहुत ही उनको बहुत पसंद करने वाले कलाकार भी रहे हैं, तो सारी खूबियां हम उत्तम कुमार जी में पाते हैं। तो अपने नाम को वो बिल्कुल सार्थक करते हैं, उत्तम कुमार
1: जी।
0: सिनेमा के उत्तम है, सर्वोत्तम है,
1: उत्तम कुमार सिनेमा के सर्वोत्तम जी। बहुत खूब आपने कहा। मैं प्रदीप जी आपसे जानना चाहूंगी, हम सत्यजीत रे जी की फिल्म का अगर जिक्र करें, नायक या फिर सप्तपति हो या फिर है चिड़ियाखाना, तो किसी भी फिल्म का हम जिक्र करें, उत्तम कुमार ने अपने आप को कभी भी एक छवि में बांध कर नहीं रखा। अलग अलग किरदार उन्होंने निभाए और पूरी तरह से उस किरदार को उन्होंने जीवंत किया पर्दे पर। तो एक अभिनेता के तौर पर आप उनकी रेंज के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह से वो न्याय करते थे उस किरदार के साथ?
2: देखिए, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा
1: जी,
2: कि उन्होंने उत्तम कुमार को उनकी जन्म शताब्दी पर याद किया। अभी 3 सितंबर को उनकी जन्म शताब्दी थी
1: जी,
2: और उससे पहले उन्होंने उनको याद किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अब आप देखिए, उत्तम कुमार जी को दुनिया से विदा हुए 46 साल हो गए, 1980 में उनका निधन हुआ था, और उन्होंने अपने 30 वर्ष उनके बहुत ऐसे रहे बंगाली सिनेमा में, उसके बाद हिंदी सिनेमा में भी, कि उन्होंने बहुत नाम कमाया, उनको महानायक कहा गया। सत्यजीत रे तक ने जो नायक फिल्म बनाई वो उसी लिए बनाई उनको ध्यान में रखकर
1: जी,
2: तो वो इस तरह का उनका वो था। लेकिन उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो उत्तम कुमार को नहीं मिला। आप ये देखिए कि हमारे यहाँ सब उत्तर भारत के जो सिनेमा है, हिंदी सिनेमा है, बॉलीवुड का है, इवन जो साउथ का सिनेमा है, उनके लोगों को भी पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिल जाते हैं, उनको दादा साहब फाल्के मिल जाते हैं, लेकिन उत्तम कुमार को पद्मश्री पुरस्कार तक नहीं मिला जबकि उन्होंने इतना काम किया। उनको बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार, सबसे पहले जब राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत हुई तो 1957 में सबसे पहले उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया, जो ये बताता है कि वो राष्ट्रीय पुरस्कार के काबिल थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उनको भुला दिया गया है, बड़ा खराब लगता है। उनको बाद में फिल्म निर्माता के रूप में भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, कुल 5 बार पुरस्कार मिले। उसके बाद उनको इस तरह की सम्मान तो मिलते रहे, फिल्म फेयर में मिलते रहे, साउथ के इस तरह के मिलते रहे, लेकिन जो राष्ट्रीय पुरस्कार इस तरह के हैं, जो मतलब राष्ट्रीय सम्मान जो हमारा एक अलग मान देते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, या दादा साहब फाल्के जो फिल्म जगत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, वो उनको नहीं मिला। तो उनके साथ सुचित्रा सेन ने 30 फिल्में की। आप देखिए सुचित्रा, उनकी जो रेंज है उसकी बात भी इसमें आ जाएगी कि उन्होंने, सुचित्रा सेन ने अपने जीवन में कुल 60 फिल्में की, लेकिन 60 में से 30 फिल्में सुजीत कुमार, 30 फिल्में उत्तम कुमार के साथ की। तो उत्तम कुमार के साथ 30 फिल्में करना इतनी बड़ी एक्ट्रेस का बहुत बड़ी बात है, और उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा मशहूर हुई। तो ये जो है, उसके बाद इन्होंने खैर और बहुत सारे, इन्होंने तो बहुत अभिनेत्रियों के साथ काम किया, इन्होंने 200 से ज्यादा अलग अलग फिल्में की, और इसमें कभी वो एक चोर बनते हैं तो कभी न्यायाधीश बनते हैं, कभी जादूगर बनते हैं तो कभी अलग अलग इस तरह की भूमिका, नायक बनते हैं। जो नायक फिल्म है उसमें का नायक का रोल है, उसमें एक देखिए जो सत्यजीत रे ने इस तरह की फिल्म बनाई, एक नायक जो है वो राष्ट्रीय पुरस्कार लेने के लिए कलकत्ता से, आपको कोलकाता बोले आप, कोलकाता से दिल्ली आ रहा था, तो 24 घंटे की जर्नी थी उस समय जो ट्रेन की, उसमें किस तरह एक पत्रकार को मिलती है शर्मिला टैगोर, जो शर्मिला टैगोर के साथ में इनकी बांग्ला फिल्मों में जो भी रही, और हिंदी फिल्मों में तो ज्यादातर फिल्में इनकी उन्हीं के साथ आई, शर्मिला टैगोर के साथ
1: जी।
2: तो ये जो वो जो नायक का वो जो था, इतना बढ़िया चित्रण था इस फिल्म के अंदर। सत्यजीत रे साहब तो ऐसे वो थे जिनको सबसे ज्यादा फिल्म पुरस्कार मिले, और फिल्म जगत के भी अकेले ऐसे वो फिल्मकार हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा पुरस्कार लिए। ये अभी तो उनके निधन को इतने साल हो गए, अगर वो अभी तक रहते तो शायद ऐसा रिकॉर्ड बन जाता कि किसी को नहीं मिलता, ऑस्कर तक सत्यजीत रे को मिला। तो सत्यजीत रे जैसा अभिनेता फिल्मकार, इतना बड़ा फिल्मकार जो इनको पसंद करे और आप इनकी इस तरह को फिल्म बनाए, बाद में भी इन्होंने सुचित्रा सेन के साथ एक फिल्म बनाने की सोची थी, लेकिन सुचित्रा सेन ने सत्यजीत रे के साथ फिल्म करने से मना कर दिया, तो सत्यजीत रे ने वो फिल्म बनाई ही नहीं। लेकिन इनकी जो रेंज है वो तो आप देखिए कमाल की रेंज है, और आप सत्यजीत रे से इन्होंने सीखा भी, इस तरह वो निर्माता थे, निर्देशक थे, लेखक थे, संगीत पे ध्यान देते थे, वही खूबियां उत्तम कुमार में। उत्तम कुमार ने देखिए निर्माता के रूप में 9 फिल्में बनाई, निर्माता निर्देशक भी इतने की, और संगीत में भी उनको बहुत था, गायक के उस रूप में भी काम किया, निर्देशन भी किया, और हिंदी फिल्मों में भी जो उनकी देखिए चाह है वो बंगाल के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत महानायक कला है और उनकी अलग वो थी। और मुझे वो दृश्य में भी तक याद है जब 1980 में उनका निधन हुआ, तो इतना सैलाब था, जन सैलाब उभरा हुआ था उस समय के हिसाब से, इतना जन सैलाब बहुत किसी अभिनेता के रूप में शायद कभी ना देखा गया हो। बाद में तो हम चाहे अब नया जमाना आ गया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल सब कवर करते हैं, उस समय तो कोई था ही नहीं, फिल्म डिवीजन ने कुछ बनाई, कुछ और लोगों ने बनाई उनकी फिल्म, कुछ सत्यजीत रे ने भी बनाया था उनका वो हिस्सा जब उनकी शव यात्रा निकली हुई थी, इतना बड़ा वो था, लेकिन वो इतनी कम उम्र में चले गए, सबसे बड़ी बात है।
1: यानी एक अभिनेता के रूप में भी परिपक्व थे और उनके व्यक्तित्व के बहुत

0: सारे अनछुए पहलू थे, और अगर व्यक्ति के तौर पर भी हम देखें उन्हें तो समाज से वो गहरे से जुड़े हुए थे, इसीलिए इतने सारे लोग जो है जब उनके निधन की खबर उन्हें पता चली तो तुरंत वहां पहुंचे। जी, यहां मैं प्रदीप जी इसी मोड़ पर आपसे आपकी पसंद का कोई गाना पूछना चाहूंगी उत्तम कुमार से जुड़ा हुआ।
1: देखिए, उनके मेरे को कई गाने पसंद है, हिंदी फिल्मों के गाने तो सारे समझ में आते हैं, बंगला फिल्म के गाने भी जब सुनते हैं थोड़े अच्छे लगते हैं। हिंदी फिल्मों की बात करूंगा तो उनकी अमानुष फिल्म
0: जी,
1: उन्होंने हिंदी में आप देखिए करीब 15 फिल्मों में काम किया, लेकिन अमानुष उनकी सबसे लोकप्रिय फिल्म थी
0: जी।
1: और जो मुझे अभी तक याद है दिल्ली के कश्मीरी गेट पर ब्रिटिश सिनेमा है जहां इसकी सिल्वर जुबली हुई थी अमानुष की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अमानुष वहां खूब चली। और उत्तम कुमार बहुत खुश थे देखकर कि मेरी दिल्ली जैसे शहर के अंदर कलकत्ता में उनकी बंगाली फिल्मों ने तो बहुत जुबली मनाई, और कुछ ऐसी फिल्में भी थी जो उनकी हिंदी में भी आई बंगला में भी आई। अमानुष भी ऐसी फिल्म थी, इसके अलावा एक बंदी फिल्म भी ऐसी थी जो हिंदी बांग्ला दोनों में साथ बनी, तो वो वहां बंदी वहां चली यहां नहीं चली, लेकिन अमानुष वहां भी चली और यहां भी चली। उसका जो गाना है सबसे अच्छा वो तो भूल ही नहीं सकते, जो अमानुष का टाइटल सॉन्ग है और उसको जो इंदिवर ने लिखा है, और किशोर कुमार का बहुत बेस्ट गाना है
0: दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा।
1: ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, आप देखिए इतने सुंदर शब्द, इतने सादे बड़े शब्द हैं, कहीं मुश्किल बड़े शब्द नहीं है। इंदिवर ने इतने अच्छे से इस गाने को लिखा, और जो उसके अंदर चलता है बोट के अंदर, शिप के अंदर, शिवा टैगोर पीछे लेटी हुई है, और जब गाना सुनती है तो आ जाता है उनकी इनसे प्रेम होता है। लेकिन
0: और ये शब्द भी अमानुष,
1: अमानुष बना के छोड़ा, अमानुष मतलब अभी भी लोग सोचते अमानुष क्या है, लेकिन अमानुष वही जो क्रूर व्यक्ति हो जो अपना जानवरों जैसा व्यवहार करता हो, बहुत कठिन हो, उसको बोलते हैं
2: अमानुष। जो फिल्म का टाइटल है उस पर मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, और बहुत ही एक रोचक प्रसंग मुझे याद आ गया है अमानुष शब्द को लेकर के, क्योंकि मैं परिचित रहा हूँ कमलेश्वर जी से
0: जी।
2: और उनका भी लेखन इस फिल्म में रहा है अमानुष में, और शक्ति सामंत साहब ने यह फिल्म बनाई थी, तो मुझे उनकी एक मेमोरी याद आ रही है इस वक्त कमलेश्वर जी की, और उन्होंने मुझे बताया भी था, और जब उनसे जिक्र होता था काफी फिल्मों पर चर्चा होती थी तो उन्होंने बताया था कि कैसे इस शब्द को लेकर के एक मंथन हुआ था, एक बहस हुई कि क्या हिंदी वाले, हिंदी के दर्शक अमानुष शब्द को क्या ठीक से समझ पाएंगे, और ये क्या बॉक्स ऑफिस पर जो एक मासी एक्टर का अपना एक इमेज है वहाँ, क्या बॉक्स ऑफिस में यह शब्द उतना पॉपुलर हो पाएगा, लोग क्या देखने आएंगे,
0: और नायक की छवि से इसे जोड़ पाएंगे,
2: नायक की छवि से जोड़ पाएंगे, जो सत्यजीत ने नायक बनाई थी, इतनी ऐसी एक्टिंग है उस फिल्म में उत्तम कुमार
1: जी का, जो है उसके अंदर एक शराबी एक ऐसा व्यक्ति है जो दिल का बड़ा अच्छा है, लेकिन वो शराबी बन गया बहुत ज्यादा, उसका बहुत संपन्न परिवार होता था, मधुसूदन उसका नाम है, मधु जिसको बोलते हैं, और शर्मा टैगोर रेखा की भूमिका में है, रेखा है वो, तो उनका जो आपस का प्रेम है बहुत अच्छा दिखाया है, उसमें नफरत भी है, प्रेम भी है, हमदर्दी भी है, एक दूसरे से दूर होते हुए पास होते हुए रहे, तो बहुत अच्छा मानुष में जो चित्रण किया था। और कमलेश्वर ने उनकी खाली इसी की नहीं, और भी फिल्मों की कथा उन्होंने
2: लिखी,
1: कमलेश्वर जो है उनके साथ इतने पसंद बन गए थे कि बहुत पसंद आते थे उत्तम कुमार को, और जो फिल्में बाद में जो भी आई उसकी पटकथा भी हिंदी में, जो भी फिल्म आई वो कमलेश्वर ने लिखी
0: जी। तो यानी ये गीत हमें बहुत सारी कहानियां एक साथ
1: जोड़ता है।
2: मैं उसमें यही जोड़ना चाह रहा था कि अमानुष शब्द को रखा गया सोच समझ करके, एक चुनौती ली गई
0: जी, बिल्कुल,
2: कि ये नाम रखकर देखते हैं वाकई कितना पॉपुलर होता है, और ये वाकई प्रयोग जो है सफल हो गया, और यह फिल्म बहुत पसंद की गई।
1: अब देखिए ना, वैसे दिल तोड़ने को लेकर बहुत गाने अलग तरह के, ऐसा कोई गाना नहीं मिलेगा कि दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा अमानुष बना के छोड़ा
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: ये जो गाना है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है
0: जी। तो ठीक है, हम आपकी पसंद का यही गाना अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं अभिनेता उत्तम कुमार के बारे में और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं जाने माने फिल्म क्रिटिक संजीव श्रीवास्तव और प्रदीप सरदाना जी। तो संजीव जी, मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगी, हम जब उत्तम कुमार का जिक्र करते हैं तो एक अभिनेता के तौर पर तो बहुत सारी बातें हम उनके बारे में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो नायक के साथ जननायक भी थे, क्योंकि वो जनता के दुख दर्द के साथ जुड़ते थे, वो औरों के बारे में सोचते थे और सुभाष चंद्र बोस जी से भी उन्हें जोड़ा जाता है। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगी कि हमारे श्रोताओं के लिए आप पूरा एलोबरेट करें वो जो संपर्क है, वो जो सूत्र है उनके बीच का।
1: नहीं, जो जननायक वाली बात जो आपने कही है ना, जैसे प्रदीप जी ने जिक्र किया कि सन 1980 में जब उनका देहांत हुआ तो एक जन सैलाब उमड़ा था
0: जी।
1: तो वो जननायक का ही एक प्रभाव था। सन 1980 में तो मैं बहुत छोटा था, स्कूल में पढ़ रहा था, तो मुझे तो वो तस्वीर नहीं मालूम, लेकिन एक फिल्म अध्येता होने के नाते, एक फिल्म समीक्षक होने के नाते, जो हम इतिहास के पन्नों में जो घुसते हैं, बहुत कुछ अध्ययन करते हैं, तो किसी भी फिल्म अभिनेता के बारे में, निर्देशक के बारे में बहुत सारी जानकारियां हासिल करते हैं। तो उत्तम कुमार जी के बारे में जो एक जननायक वाली जो छवि है, वो जो हमें एक देखने को ये मिलता है कि वो आम जनता से
0: जी,
1: आम जनता के दुख दर्द से बहुत ही जुड़ाव रखते थे और उन्होंने अपने जीवन में बहुत तरह के सामाजिक कार्य भी किए थे। आजादी मिलने से पहले की बात है, सन 1943 की बात है, जब आनंद मठ का जब मंचन होने वाला था उसके लिए उन्होंने आर्थिक सहयोग किया था
0: जी।
1: तो समाज सेवा, संस्कृति और साहित्य को लेकर के उनमें में उनके भीतर कैसा एक प्रेम था, लगाव था, वहीं से समझा जा सकता है
0: जी।
1: उसके बाद फिर बंगाल में बहुत तरह की सामाजिक समस्याएं आई, 1978 की बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, उस वक्त उन्होंने सामाजिक कार्य किए, पैसे इकट्ठे किए और तत्कालीन मुख्यमंत्री के राहत कोष में उन्होंने जमा करवाया और इस तरह से समाज सेवा अपनी जारी रखी
0: जी।
1: इसके अलावा कुछ और काम उनके हैं जो कि उनके जननायक की छवि को उजागर करते हैं, जैसे उन्होंने शिल्पी संगठन बनाया था फिल्म आर्टिस्ट के लिए। कई बार ऐसा होता है कि फिल्म आर्टिस्ट जब उम्र दराज हो जाते हैं, उनको जब काम मिलना कम हो जाता है, वैसी स्थिति में उनके पास आर्थिक स्रोत कम हो जाते हैं
0: जी।
1: वहां पर उन्होंने एक संगठन के माध्यम से उन सभी कलाकारों को, जरूरतमंद कलाकारों की मदद के लिए काम किया, पैसे इकट्ठे किए, उन सब तक पैसे पहुंचाते थे। इसके अलावा उन्होंने क्रिकेट का आयोजन भी कराया था एक मदद के लिए, है ना, जिसमें वो खुद कैप्टन बने थे पश्चिम बंगाल से
0: जी।
1: और मुंबई से कैप्टन बने थे दिलीप कुमार साहब
0: जी।
1: इस तरह के कई सारे काम करते थे, लेकिन एक जो सबसे दिलचस्प है वाकया वो ये है कि वो मुरमुरे के बड़े शौकीन थे, मुरमुरे के बड़े शौकीन थे और पकौड़े जो होते हैं ना, खाने वाली चीजें, पकौड़े जो लोकेशन पर वो सबको वो मुरमुरे और पकौड़े खिलाते थे। और उनका जो मानना था ये कि जो छोटा आर्टिस्ट है या कोई बड़ा डायरेक्टर है, उन सबको वो अपनी तरफ से ये खाने की चीजें वितरित करवाते थे, उनको देते थे, और उनके मन में एक ये भाव था कि कोई भी व्यक्ति छोटा और बड़ा नहीं होता है
0: जी।
1: तो ये सारी चीजें ऐसी हैं, एक अभिनेता सिल्वर स्क्रीन के एक बड़े नायक होने के साथ साथ सिल्वर स्क्रीन के पीछे की जो उनकी एक छवि है
0: जी,
1: कि आम जनता से जुड़ाव का, सामाजिक कार्य का, उसने उनको एक जननायक की छवि प्रदान की
0: जी। और इंडियन नेशनल आर्मी के लिए भी वो फंड देते थे, आर्थिक मदद करते थे।
1: इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसमें उनके बारे में एक बात कही जाती है कि वो उन्होंने गुप्त दान बहुत किए थे, गुप्त कार्य बहुत करते थे
0: जी,
1: ऐसे काम जिनको लेकर के पब्लिक में मैसेज जाना बहुत जरूरी नहीं है। अगर हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो पब्लिक में ये जाना बहुत जरूरी नहीं है कि हम कोई बहुत बड़े समाज सेवी है, बहुत बड़े सामाजिक नायक है, क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो इस तरह की छवि भी उन्होंने बनाई थी और गुप्त दान के जरिए जो आम लोगों तक उनकी सहायता पहुंचती थी
0: जी,
1: इससे भी उनकी एक जननायक की छवि बनी थी।
2: जो 1971 की जो वार थी उसमें उन्होंने सेना के लिए बहुत पैसा कलेक्ट किया, उनके परिवार के लिए जो शहीद हो गए थे उनके लिए, उनके कार्यक्रम भी किए, उसके लिए अपनी जेब से भी बहुत दिया
0: जी।
2: तो ये बड़ी बात थी। दूसरा जो आनंद मठ का बता रहे थे राशि, उसके अंदर जो मेरी जानकारी है कि 5,000 रुपए उन्होंने उससे में दिए थे उसके लिए, तो बहुत बड़ी राशि थी
0: जी। जी प्रदीप जी, आपसे जानना चाहूंगी, 1950 से 70 के दशक के दौरान जब समाज में बहुत बड़े बदलाव हो रहे थे और पोस्ट इंडिपेंडेंस की ये बात है, तब ऐसा कहा जाता है कि उत्तम कुमार की फिल्मों ने बंगाली अस्मिता और मध्यम वर्गीय मूल्यों को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने फिल्में भी वो की जो सामाजिक मुद्दों को उजागर करती थी और इस तरह से भी एक सॉफ्ट स्किल के माध्यम से उन्होंने लोगों में एक तरह की क्रांति जगाई। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: बिल्कुल आपकी सही बात है कि उन्होंने इस तरह की फिल्में करते रहे, उनकी चाहिए सामाजिक उद्देश्यों को लेकर हो, खाली देशभक्ति को लेकर ना हो, लेकिन समाज में जो आजादी के बाद स्वतंत्रता के बाद जो बदलाव आए और जो जिस तरह भारत में तरक्की शुरू की उसको लेकर उन्होंने बहुत सारी किस तरह की फिल्में बनाई और साथ ही एंटरटेनमेंट भी किया, क्योंकि एक बड़ा एक ऐसा एटमोसफेयर बन गया था। बंगाल तो बहुत ज्यादा प्रभावित था स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि बिल्कुल बांग्लादेश से जुड़ा हुआ था, उधर कुछ लोग बांग्लादेश में चले गए, कुछ इधर आ गए, तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि बहुत परिवार बिछड़ गए थे। तो इन्होंने मनोरंजन को भी बहुत ज्यादा दिया। जिस तरह राज कपूर ने 1951 में आवारा फिल्म बनाई तो रूस में इसलिए चली कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऐसा एटमोसफेयर बन गया था कि लोग उदास थे, निराशा में जी रहे थे, तो इसलिए इन्होंने भी ऐसी फिल्में की जो लोगों को एंटरटेनमेंट करें, उनको उभारे, उनको नया संदेश दें, नया जीवन दें, जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो दें। तो बहुत बड़ा था। उत्तम कुमार की कितनी ही बात करें, एक बात याद करते हैं 10 बात याद आ जाती है। अब ये बोल रहे तो मुझे कई बात याद आ जाती है बोलते बोलते, वैसे याद आ जाती है। एक ऐसा अभिनेता जो महानायक रहा, तो उसको आप देखिए वहां के लोगों ने, बंगाल ने बहुत वो किया, विदेशों में भी उनकी कुछ फिल्में चली, रूस में भी चली और जगह भी चली, नायक फिल्म भी बहुत जगह उसको अवार्ड मिले, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी गई और उसको फिल्म को भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। जैसे मैंने पहले भी कहा कि उनको इस तरह का सम्मान नहीं मिल सका, वो भी इस बात के लिए परेशान से रहते थे कि मैं भी पूरे विश्व में छाऊं बंगाली सत्यजीत रे के माध्यम से, या अपनी और सत्यजीत रे की फिल्में तो पूरे विश्व में जाती जाती थी, कोई फेस्टिवल ऐसा नहीं होता था जहां उनकी फिल्म नहीं जाती थी। कि उन्होंने तो शुरुआत की अपनी जब पहली फिल्म से पाथेर पंचाली से ही, उसी से उन्होंने विश्व में नाम कमाना शुरू कर दिया था। तो अपनी पहली फिल्म से हो गई तो इसलिए उनकी जो भी फिल्म बनती थी वहां जाती थी, लेकिन वो भी चाहते थे कि मैं हिंदी सिनेमा में जाऊं, उससे भी मेरा नाम हो, मेरी पहचान बने। कि अभिनेता की ख्वाहिश होती है ना, हम भी मान लो लिखते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे सभी पाठक सभी वर्ग में हो, हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो सब जगह सुने जाए, सब जगह देखे जाए, तो अभिनेता की तो बहुत बड़ी चाहत होती है।

0: के लिए उन्होंने कहा था उनको। और संघ राज कपूर ने उत्तम कुमार को, जो राजेंद्र कुमार का रोल था, वो सबसे पहले उन्होंने उत्तम कुमार को ऑफर किया था
1: जी।
0: तो लेकिन उनको लगा कि पता नहीं मैं अभी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब 1964 में वो फिल्म रिलीज हुई, राज कपूर की पहली रंगीन फिल्म जिसकी शूटिंग विदेशों में पहली बार की, तो इतनी सुपरहिट हो गई और राजेंद्र कुमार और राज कपूर की जोड़ी साथ में विजयंती माला एकदम हो गई, तब उनको लगा रही है तो मैंने शायद गलती करी तो मुझे कोई फिल्म करनी चाहिए। उसी का नतीजा था कि उन्होंने 1967 में खुद प्रोड्यूसर बने, विजयंती माला को हीरोइन लिया। विजयंती माला जैसे मेरी कितनी बार बात होती है तो जब भी कहती है उस बात का जरूर जिक्र करती है कि वो फिल्म चली नहीं, लेकिन उत्तम कुमार ने बहुत ही दिल से बनाया था, बहुत पैसा लगाया उस समय के हिसाब से और कलर फिल्म थी पहली वो, तो उन्होंने वो बनाया तो तब वो फिल्म 1967 में आई छोटी सी मुलाकात और वो इतनी मशहूर हो गई। विजयंती माला के साथ उनकी मतलब फिल्म चाहे बॉक्स ऑफिस फ्लॉप हो गई और वो कर्ज में डूब गए, बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उस फिल्म को आज भी हम याद करते हैं, बहुत अच्छी फिल्म बनी थी।
1: तो पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हम बात कर रहे हैं अभिनेता उत्तम कुमार के बारे में। हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हैं संजीव श्रीवास्तव, आप जाने माने फिल्म क्रिटिक हैं, लेखक हैं और इस बार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक के तौर पर आप ही को प्रदान किया जा रहा है स्वर्ण कमल पुरस्कार। संजीव जी शुरुआत में रह गया लेकिन मैं आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस उपलब्धि के लिए, आपकी लेखनी यूं ही चलती रहे और बहुत सारी उपलब्धियां आपको प्राप्त हों।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपको और तमाम श्रोताओं को और साथ में इस पुरस्कार के लिए मेरा चयन करने के लिए जूरी के सदस्य को और सभी चाहने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। और हमारे साथ विशेषज्ञ हैं प्रदीप सरदाना जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, फिल्म समीक्षक हैं और पिछले 50 वर्षों से हम एक सक्रिय मीडियाकर्मी के तौर पर अलग अलग भूमिकाओं में आपको देखते रहे हैं। तो संजीव जी अब मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगी,
0: मुझे भी बधाई दीजिए 50 साल होने की।
1: जी जी आपको बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत बधाई आपको।
0: एक साल से सेलिब्रेशन चल रहा है मेरा शताब्दी का
1: जी, इस अर्धशताब्दी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई।
2: नीलम जी मैं इसमें जोड़ देना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि प्रदीप जी इतने बड़े दिग्गज व्यक्ति हैं, 50 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं करीब 25 साल से कर रहा हूँ
1: जी,
2: बिल्कुल आधे का फर्क है। आज उनके साथ मैं बैठकर वार्ता कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है
1: जी। तो प्रदीप जी आपका ये जोश जो है दमखम यूं ही बना रहे हम ये कामना करते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम हम आपके साथ रिकॉर्ड करेंगे जी। तो संजीव जी आपसे जानना चाहूंगी, उत्तम कुमार जी की बहुत सारी फिल्में, बांग्ला फिल्में जो हिट रही उनका रीमेक बाद में बॉलीवुड में बना यानी हिंदी फिल्मों के रूप में हमारे सामने आया और जो भूमिकाएं उत्तम कुमार ने निभाई थी वो भूमिकाएं बाद में हिंदी फिल्मों में देवानंद साहब ने भी निभाई, फिर दिलीप कुमार साहब भी उसमें रहे और अपने समय के बहुत ही दिग्गज अभिनेता रहे। मेरा एक तो सवाल ये कि उनकी फिल्मों के रीमेक क्यों बने, दूसरा ये कि क्या वजह थी कि वो भूमिकाएं खुद उत्तम कुमार ने नहीं निभाई बल्कि हमारे हिंदी फिल्म कलाकार जो थे बाद में उन्होंने निभाई।
2: इसकी वजह तो नहीं कही जा सकती कि उस समय के डायरेक्टर, उस समय के प्रोड्यूसर और हिंदी में जिस अभिनेता की जो छवि बन चुकी है
1: जी
2: वो भी वजह होती है, साथ में कलाकार के पास क्या समय है, वो किस तरह के काम में और इन्वॉल्व है, दूसरी फिल्मों में इन्वॉल्व है, टाइमिंग, ये सब भी बड़े फैक्टर होते हैं
1: जी।
2: लेकिन कुछ बड़ी फिल्में हैं जो कि बांग्ला में पहले बनी और फिर उनका हिंदी में रीमेक हुआ और जो हिंदी में रीमेक हुआ वे सारी फिल्में
1: जी
2: बहुत ही पसंद की गई, बहुत ही चर्चित वो फिल्में हैं। जैसे कि अगर मैं एक जिक्र करूं साहब बीबी और गुलाम
1: जी,
2: ये बांग्ला में बनी जिसमें खुद उत्तम कुमार जी थे, लेकिन जब उसका हिंदी रीमेक बना
1: जी
2: उसमें बांग्ला में भी वो भूतनाथ बने थे और जब हिंदी रीमेक हुआ तो उसमें गुरुदत्त साहब ने उसमें भूतनाथ का रोल किया
1: जी।
2: इसके अलावा और भी कई सारी फिल्में हैं जैसे कि बांग्ला में सवार ओपोरे नाम की एक फिल्म बनी 1955 में, इसमें क्या है कि एक बेसिकली ये क्राइम थ्रिलर था जिसमें एक अपने बेगुनाह पिता को बचाने के लिए बेटा प्रयास करता है और तो ये कहानी थी और ये कहानी हिंदी में बनी काला पानी नाम से जिसमें देवानंद साहब थे। इसके अलावा भी कई सारी फिल्में हैं जैसे कि अग्नि परीक्षा जिसका जिक्र हम लोग कर चुके हैं, अग्नि परीक्षा का हिंदी रीमेक बना था छोटी सी मुलाकात जिसमें वो खुद ही थे
1: जी।
2: लेकिन इसके अलावा दूसरी फिल्म है जैसे लाल पत्थर बनी थी, लाल पत्थर भी बांग्ला में बनी,
0: आशा पूर्ण देवी के उस पर थी
2: हाँ
1: जी,
2: उपन्यास जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो लाल पत्थर बनी थी तो लाल पत्थर जब हिंदी में बनी तो उसमें राजकुमार एक्टर थे और लाल पत्थर प्रसिद्ध फिल्म हुई अपने आप में, बहुत ही क्लासिक फिल्म है, बहुत प्रसिद्ध फिल्म है, बहुत पसंद की गई थी। बांग्ला में एक फिल्म बनी थी भ्रांति विलास, वो हास्य बोध की फिल्म थी
1: जी,
2: उसमें वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर होते हैं और जब हिंदी रीमेक उसका जब बना ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने बनाई वो फिल्म जिसका नाम चुपके चुपके है, और धर्मेंद्र उसमें

0: परिमल त्रिपाठी का
1: परिमल
0: किरदार
1: त्रिपाठी
0: जो
1: का रोल में आते हैं, और धर्मेंद्र की वो बहुत ही क्लासिक फिल्म है। धर्मेंद्र की मुझे लगता है मेरी चॉइस में अगर अगर हम उनकी हम पांच पसंदीदा फिल्में अगर एक साथ रखते हैं तो उसमें चुपके चुपके को भी हम शामिल करना चाहते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी फिल्में हैं। एक फिल्म आई थी 1975 में, हम इसे ओ सखा, इसका जब हिंदी रीमेक बना वो बना बेमिसाल नाम से
0: जी।
1: उसमें डॉक्टर के दोस्त अमिताभ बच्चन उसमें बनते हैं, विनोद मेहरा उस फिल्म में डॉक्टर बने हैं
0: जी।
1: तो अमिताभ बच्चन का जो रोल था वो रोल बांग्ला फिल्म में उत्तम कुमार जी ने निभाया था।
0: और अंगूर,
1: अंगूर गुलजार साहब की अंगूर, वो भी एक तरह से बांग्ला की ही रीमेक थी। लेकिन इसके अलावा कुल मिलाकर हम ये देखते हैं
2: शेक्सपियर के उस पे थी
0: जी, कॉमेडी ऑफ एरर्स
2: जी, लेकिन इसको बंगला में बहुत चली वो।
1: इसके अलावा देखिए अमर प्रेम, अमर प्रेम को लेकर से बहुत सारी कहानियां हैं
0: जी।
1: राजेश खन्ना उसमें आते हैं, और इसमें राजेश खन्ना को तो कहा गया बकायदा, शक्ति सावंत साहब ने बकायदा कहा कि आप जब बांग्ला में जो बनी है उसमें जो उत्तम कुमार जी ने जो अभिनय किया है उसको आप देखिए और उसको फॉलो करने की भी कोशिश करिए।
2: वैसे ही धोती कुर्ता बांधा उन्होंने, जैसे उसे बांधा
1: जी, वैसे ही धोती कुर्ता पहना। और आयुष खन्ना अपने लिए बहुत ही गौरवान्वित उन्होंने एक भाव व्यक्त किया कि वाकई मुझे उत्तम कुमार जी की पोशाक को धारण करने का मौका मिला है, उनकी भूमिका को निभाने का मौका मिला है। तो राजेश खन्ना जैसे स्टार समझिए उस वक्त, जिस समय अमर प्रेम फिल्म आती है उस समय राजेश खन्ना का क्या सितारा बुलंद था
0: जी।
2: और इसका ये बता दूं, इसका जो गाना है ना चिंगारी कोई भड़के
1: जी,
2: वो भी हुगली में वही पिक्चराइज किया गया, उसी जगह जहाँ वो किया गया। और शिवया टैगोर बता रही थी कि वहाँ इतना पानी सड़ चुका था कि बड़ी बदबू आती थी, और हमको ऐसा लगता फिल्म में ऐसा दिखा रहा था बहुत ही अच्छा एटमोसफेयर है। कहती हमने उसमें भी काम किया, पांच दिन हमने उस गाने को शूट किया वहाँ पर।
0: ये उत्तम कुमार की छवि का प्रभाव था उस समय जी।
1: तो कहने का आशय यह है कि उतने बड़े स्टार जो उस वक्त के इतने बड़े कलाकार थे उन्होंने भी उत्तम कुमार की निभाई हुई भूमिका को हिंदी में निभाया और बहुत ही सफलतापूर्वक निभाया। राजेश खन्ना तो कहते थे कि अगर मैं 50% भी उनके भावों को ठीक से व्यक्त कर पाया तो शायद मेरी वो बहुत बड़ी सफलता होगी।
0: प्रदीप जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम जब कहते हैं उत्तम कुमार तो एक छवि हमारे सामने आती है, एक तो ये छवि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में संजीव कुमार से बहुत मिलती जुलती है, तो क्या इसका कुछ नकारात्मक पहलू रहा कि उत्तम कुमार को अपनी एक इमेज बनाने में समय लगा? और ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये नाम जो उनसे जुड़ा हुआ है, इस नाम के पीछे की कहानी क्या है?
2: देखिए पीछे की कहानी यह है कि इनके पिता ने इनका नाम अरुण कुमार रखा
0: जी,
2: तो अरुण कुमार चट्टोपाध्याय, अरुण कुमार चटर्जी जैसे आप जानते हैं, दोनों बोले जाते हैं, तो अरुण कुमार चट्टोपाध्याय इनका नाम रहा। इनके दो भाई और रहे, एक वरुण कुमार और एक तरुण कुमार। तरुण कुमार तो फिल्मों में रहे, उन्होंने तो 500 से ज्यादा फिल्में की, इनके छोटे भाई थे 5 साल छोटे थे इनसे
0: जी।
2: और उन्होंने, वरुण ने कोई फिल्में नहीं की। और जो इसकी बात है तो इन्होंने जब शुरुआत की, सबसे पहले जो इनकी फिल्म थी 1948 में दृष्टिदान
0: जी,
2: दृष्टिदान, तो दृष्टिदान के अंदर ये अरुण कुमार के नाम से
0: जी,
2: तो वो फिल्म नहीं चली। तो इनके साथ ऐसी हुआ, जैसे 5 साल अमिताभ बच्चन ने बहुत संघर्ष किया ना, सारी फिल्में फ्लॉप होती रही, उसके बाद जंजीर से चले वो, 69 में उनकी पहली फिल्म आई सात हिंदुस्तानी, 1973 में जंजीर आई, से चले। इनका भी ठीक ऐसे ही रहा कि 5 साल इन्होंने खूब संघर्ष किया, लेकिन अमिताभ बच्चन ने नाम नहीं बदले, इन्होंने नाम बदले। उसके बाद इन्होंने अपना नाम अनूप कुमार के नाम से फिल्में की, फिर इन्होंने उत्तम चटर्जी के नाम से फिल्में की, उसके बाद जाकर इनका जो है ये नाम आया उत्तम कुमार, उसके बाद इनकी गाड़ी चल निकली। उसके बाद जो इनकी जो बसु परिवार फिल्म आई थी वो सबसे ज्यादा चली, बसु परिवार। उसके बाद तो बस फिर अग्नि परीक्षा और ये सब सारी फिल्में ऐसे चलती रही, पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। फिर तो पूरा जो भी समय था वो लगातार उत्तम कुमार का था
0: जी।
2: आप देखिए इतनी फिल्में करना और उसमें से अधिकतर फिल्में जुबली होना और इतनी सफलता मिलना, इतनी लोकप्रियता मिलना, लगातार जो है सब करना, ये बहुत बड़ी बात थी। जिस तरह महानायक के रूप में मुंबई इंडस्ट्री के अंदर, मैं उसको बॉलीवुड कहना नहीं चाहता, मैं उसको हिंदी सिनेमा, हिंदी फिल्म उद्योग ही कहूंगा, बॉलीवुड की निकल पे बॉलीवुड मुझे नहीं जमता। तो उसके अंदर जिस तरह दिलीप कुमार को महानायक कहते रहे, आप जाके अमिताभ बच्चन को महानायक कहते हैं, उसी तरह उत्तम कुमार अकेले महानायक रहे वहां पर, अभी भी वही महानायक है, उनकी जगह कोई नहीं ले सका। चाहे कई लोगों ने, और हिंदी के अभिनेता भी वहां गए, उन्होंने भी फिल्में की, विश्वजीत भी इधर भी करते रहे, वहां भी करते रहे, मिथुन चक्रवर्ती भी जुड़े रहे तो दोनों सिनेमा से, और भी बहुत सारे जुड़े रहे, विश्वजीत के पुत्र भी जुड़े रहे, इनके पोते भी जो है उत्तम कुमार के वो भी अब कर रहे हैं फिल्म जो है कि, बाकी और एक बेटा था उनकी डेथ होगी बाद में, फिर बाद में उसने किया, तो वो भी इस तरह सिनेमा कर रहा है। इनका असल में परिवार जो था वो, इनके जो फादर थे हमारा सिनेमा था इंदिरा सिनेमा, उसके अंदर प्रोजेक्टर चलाते थे, तो उसी को देखकर इनको फिल्में करने का मन किया। और लेकिन इनका बहुत बड़ा संयुक्त परिवार था, तो वो थिएटर भी साथ साथ करते रहते थे, तो उससे क्योंकि ये सिनेमा तो कर नहीं सकते थे, आप सिनेमा देख के, यानी कि आप सिनेमा में आपको काम मिल जाएगा, तो ये थिएटर में काम करना शुरू किया। फिर थिएटर से जो है इनको धीरे धीरे वो हुआ, फिर 1948 में इनकी दृष्टि जान आई, और फिर जाके इनकी पिक्चर 1953 के अंदर इनकी चलनी शुरू हुई, और फिर देखिए वो तो इतिहास बन गया उत्तम कुमार, आज हम याद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह, मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा कि इतने साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तम कुमार का जिक्र करके उनको दोबारा से लाइव कर दिया, जो उनको भूल भी रहे थे। मुझे बहुत खुशी है कि उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है, उनको जब पुरानी किसी सरकार ने पद्म पुरस्कार नहीं दिए, चाहे दादा साहब फाल्के नहीं दिया, लेकिन ये याद करके सबसे बड़ा पुरस्कार है। आज देखिए सबसे ज्यादा सर्च हो रहे हैं उत्तम कुमार, उत्तम कुमार कौन है, नई पीढ़ी बिल्कुल नहीं जानती, मेरे परिवार में उत्तम कुमार कौन है, क्योंकि उत्तम कुमार एक तो भगौल में ज्यादा है, यहाँ जैसे बताया कि उनकी फिल्में आई, 15 फिल्में की उन्होंने
0: जी,
2: और जैसे
0: बताया, और संजीव कुमार जी से चेहरा मिलता था, तो देखिए जो आधी फिल्म है
2: वो भी कमलेश्वर ने लिखी थी, और कमलेश्वर पहले चाहते थे कि इसके अंदर इन्हीं को ले उत्तम कुमार को। अब आपने बात की, मुझे याद आ गया, जो कमलेश्वर जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे बहुत लंबे सालों तक, तो उन्होंने ये कहा कि हम उनको लेना चाहते हैं, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं हो रहे। आंधी फिल्म में, 1973 में जब ये फिल्म हुई, तो उत्तम संजीव कुमार का जो रोल था वो चाहते थे वही करें,
0: सुचित्रा सेन
2: इसके अंदर थी, और सुचित्रा सेन उनकी फेवरेट हीरोइन थी, दोनों बहुत अच्छी उनकी जोड़ी थी, लेकिन उस समय उन्होंने वो फिल्म नहीं की इस तरह
0: जी।
2: तो लेकिन आप देखिए वो आंधी फिल्म है, वो भी इतनी चली संजीव कुमार की, संजीव कुमार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी उसके अंदर मिला, और शिल्पा टैगोर भी उसको बहुत याद करती हैं, क्योंकि शिल्पा टैगोर के साथ भी इनकी अच्छी जोड़ी थी, और सुचित्रा सेन के साथ भी इनकी अच्छी रही, तो उनकी दो अभिनेत्रियां तो उनकी बहुत ज्यादा रही जो इनकी इस तरह, बाकी सुप्रिया देवी जो उनके साथ बाद में जीवन में आई, उन्होंने शादी की गौरी देवी से, तो वो लेकिन वो ज्यादा चल नहीं पाई, 1963 में इनका अलगाव हो गया था दोनों का, फिर ये इनके साथ रहने लगे, उनके साथ पूरा तलाक नहीं हुआ था, लेकिन वो अंत तक 1980 तक इनके साथ रही। तो इनका जो परिवार है वो एक अपना एक अलग तरह का था, वैसे दिल खोल परिवार था, मतलब वो इतना संपन्न भी नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं था संयुक्त परिवार था, तो एक ने कमाया, दूसरे ने ज्यादा कमाया, तीसरे ने कम कमाया, तो इस तरह आता था कि वो तो आनंद में रहते थे, तो समाज सेवा में भी सक्रिय रहते थे, सिनेमा में, रंगमंच में बहुत काम किया, रंगमंच का काम तो सामने आ नहीं पाता जो पुराने लोगों ने किया, हम पृथ्वीराज कपूर को याद करते हैं, कोलकाता में उन्होंने इतना किया, शशि कपूर ने भी जाकर किया,
0: और उस समय रंगमंच जन जागरण का कार्य करता था,
2: जेनिफर जो उनकी पत्नी रही वो भी उनको शशि कपूर को वहीं मिली, तो वो थिएटर करती थी अपने फादर के साथ, और शशि कपूर अपने फादर पृथ्वीराज कपूर के साथ करती थी, तो थिएटर का जो देखिए कोलकाता के अंदर सबसे बड़ी बात है, रंगमंच सिनेमा और कला का जो जुनून मैंने वहां देखा है, मैं तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 1985 से कवर कर रहा हूँ, तो जब भी वहां जाता था तो लोगों के पास कपड़े फटे हुए हों, चप्पल टूटी हुई हो, लेकिन फिल्म देखने के लिए बड़े शौक से आते थे टिकट खरीद कर, क्योंकि वो जो रंगमंच और ये सब जो है उसमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान है रंगमंच के अंदर, उत्तम कुमार के योगदान को भी नहीं बुलाया, तभी जो है आप ये देखिए यहाँ के लोग हम वहां जाके सिनेमा करते थे, न्यू थिएटर वहां रहा जिसने इतनी फिल्में बनाई, बड़े बड़े एक्टर वहीं जाके काम करते थे, तो इसलिए कोलकाता जो पश्चिम बंगाल है खासतौर, कोलकाता तो खासतौर से कहेंगे वो तो बिल्कुल कला संस्कृति और सिनेमा की
0: राजधानी कहा जाता था। जी बिल्कुल,
1: एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ इसमें, और प्रदीप जी ने बहुत ही अच्छी बात शुरुआत में कही थी कि उनकी उपेक्षा बहुत हुई, वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया मन की बात में, तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि उत्तम कुमार जी कौन थे
0: जी।
1: ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मन की बात का, इस बारे में हमें कोई संदेह नहीं रहना चाहिए, लेकिन एक चीज मैं देखता हूँ जो मैं चाहता हूँ उसे मेंशन करूँ, वो ये कि मन की बात में इससे पहले भी प्रधानमंत्री जी ने फिल्म कलाकारों को याद किया है, और खास तौर पर अगर याद करें साल 2024 के अंत में जब राज कपूर की जन्म शताब्दी मनाई जाने वाली थी
0: जी।
1: और मोहम्मद रफी साहब की जन्म शताब्दी मनाई जाने वाली थी, तपन सिन्हा की, इतने बड़े फिल्म डायरेक्टर जिन्होंने काबुलीवाला और सगीना महतो जैसी फिल्म बनाई
0: जी।
1: हिंदी और बांग्ला में, उनकी जन्म शताब्दी मनाई जाने वाली थी, तेलुगु फिल्म के एक बहुत बड़े कलाकार थे नागेश्वर राव
0: जी,
1: उनकी जन्म शताब्दी, उन सबको उन्होंने उन सबको उन्होंने मन की बात में याद किया, बहुत शिद्दत से याद किया है, और सिनेमा को लेकर के उनका एक दृष्टिकोण है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात जब हम करते हैं तो सिनेमा हमारा जो है उसमें एक बहुत बड़ा झंडा की तरह दिखाई देता है, कि सिनेमा कैसे पूरे भारत को जोड़ता है और दुनिया में हमारी भाषा को पहुंचाता है, इस बात को उन्होंने मेंशन किया है, और खासतौर पर राज कपूर के लिए उन्होंने ये कहा कि जो सॉफ्ट पावर है इंडिया की उसको उन्होंने दुनिया के मंच पर पहुंचाया।
0: बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो भारतीय फिल्मों का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसकी भी एक बड़ी भूमिका है, और साथ ही जो हमारी कला और संस्कृति का पूरी दुनिया में परचम लहराता है।
2: राज कपूर तो ऐसे रैंक का परिवार, फिल्म इंडस्ट्री का पहला परिवार है
0: जी,
2: जिसको राज कपूर परिवार, कपूर परिवार, उसको प्रधानमंत्री मोदी ने सब इकट्ठे सदस्यों को अपने घर पर बुलाया, उनसे चर्चा की, उन्होंने वो ही सॉफ्ट पावर की चर्चा की।
0: कई पीढ़ियों का दृष्टिकोण उसमें एक साथ दिखाई देता है।
2: राज कपूर भी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि जिस तरह सत्यजीत रे और यहाँ राज कपूर, दो हमारे ऐसे हैं भारतीय सिनेमा के जो फिल्मकार बड़े, जिनको बुलाया जाता है। दोनों ने अभी सत्यजीत रे उस तरह की, राज कपूर ने तो खैर अभिनय भी किया, दोनों में उनका इस तरह का वो रहा, तो वो जो उनको कभी बुला ही सकते हैं। उनकी अब जन्म शताब्दी अब देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है, पिछले 3-4 साल से हम अलग अलग लोगों की जन्म शताब्दी मना रहे हैं। उत्तम कुमार की वहाँ संगीतकार के रूप में हमने अभी रवि और ओपी नैयर है, उनकी जन्म शताब्दी मनाई है। अभी आगे भी हम राजकुमार की जन्म शताब्दी मनाने वाले हैं, प्रेमनाथ की जन्म शताब्दी मनाने वाले हैं, उससे पहले भी हम लगातार शैलेंद्र, गुरुदत्त, देवानंद, राज कपूर, देवानंद, इन सब की हम जो त्रिमूर्ति रही, राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार, तीनों की जन्म शताब्दी मनी मनाना। तो जन्म शताब्दी के बहाने इस तरह याद करना, और उल्टा खासतौर से ऐसे लोगों को याद करना जिनका बहुत अच्छा उनका अतीत, बहुत इतना काम किया उन्होंने, अब जाकर उनको लोग बुला रहे हैं, तो ये जन्म शताब्दी के बहाने और प्रधानमंत्री के कहने से तो इतना आगे हो गया कि हम सब इनको, हमने इसलिए इनको 3 तारीख को बहुत याद किया
0: जी। और नई पीढ़ी भी इनके बारे में अब जान रही है, और विभिन्न माध्यम है हमारे पास जानने के, बहुत चर्चित नाम आपने लिए। मैं यहाँ संजीव जी आपसे जानना चाहूंगी, जैसे हम उत्तम कुमार जी का जिक्र कर रहे हैं, तो ये पता चल रहा है कि किस तरह से वो चाहे अपने नाटकों का मंचन हो या फिर वो अलग अलग इवेंट करते हो, और उससे जो कलेक्शन है, फंड रेजिंग कार्यक्रम है, उनसे वो जन साधारण के लाभ के लिए, उनके कल्याण के लिए दान करते थे। और जैसे बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास की बात कही तो वो हमेशा सजग रहते थे और उसमें अपनी ओर से योगदान करते थे। मैं आपसे जानना चाहूंगी, युवा पीढ़ी खास तौर से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं, जो लोकप्रिय चेहरे हैं, उनसे बहुत प्रेरित होती है और उनको बहुत फॉलो भी करती है, उनके जैसा अंदाज अपनाती है, उनके जैसा लाइफस्टाइल वो जीना चाहते हैं और कुछ कुछ चीजों की नकल भी करते हैं। ऐसे में जब ये चर्चित चेहरे जो हैं, प्रतिष्ठित हस्तियां हैं, जब आगे बढ़कर और अपना जो कार्य क्षेत्र है उससे अलग हटकर कुछ करती है और समाज के प्रति योगदान करते हैं, ये गंभीरता का स्तर बनाए रखते हैं और लोगों से जुड़ना चाहते हैं, इसकी क्या भूमिका है, इससे कैसे हमारी युवा पीढ़ी को एक दिशा मिलती है?
1: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। मुझे लगता है युवा पीढ़ी को बहुत अच्छी दिशा मिलती है, और जिनको नहीं मिलती है उन्हें दिशा हासिल करनी चाहिए ऐसे कार्यों को देख करके। उत्तम कुमार जी ने जिस तरह से काम किया, सामाजिक काम किए, उसके बारे में हम लोग जिक्र कर चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कलाकार हैं, सुनील दत्त साहब ने कितना सामाजिक काम किया था ये हम लोग जानते हैं, उन सब से प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा मुझे लगता है कि जो विरासत उन्होंने खड़ी की, उस विरासत की कड़ी किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है
0: जी।
1: वह विरासत की कड़ी चलती रहती है, एकदम से लुप्त प्राय नहीं होती। जैसे कि पिछले दिनों हमने एक बड़ी सेलिब्रिटी को देखा कोविड के दौर में, सोनू सूद को, सामाजिक काम करते हुए
0: जी।
1: आज के दौर के हमारे एक बड़े गायक हैं अरिजीत सिंह, वो भी सामाजिक सेवा, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं
0: जी।
1: इस तरह के कई सारी पर्सनालिटीज हैं जिनको देख करके युवा पीढ़ी इंस्पायर्ड होती है। हाँ, यह ठीक है कि लाखों की संख्या में अगर फैंस होते हैं तो शायद सामाजिक कार्यों से इंस्पायर्ड होने वालों की संख्या शायद 10-20-25 ही होती है, जो कि उस काम को आगे बढ़ाती है
0: जी।
1: लेकिन वो कड़ी बनी रहती है। लेकिन दिक्कत थोड़ी सी है कि आज की युवा पीढ़ी बहुत जल्दीबाजी में है। मैं भी कभी युवा था, जो आज के जेन ज़ी युवा है उसी तरह से मैं भी कभी युवा था। लेकिन जो आज स्पीड दिखाई देती है कि एक बार में, एक ही झटके में, एक ही कम समय में बहुत सारी चीजें हासिल हो जाए, ये जो जल्दबाजी है उससे थोड़ी दिक्कत आ रही है जरूर। लेकिन उसी भीड़ में एक दो लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो कि सामाजिक काम कर रहे हैं, तो उससे आशा की किरण चमकती है कि एकदम से सामाजिक कार्यों की विरासत जो है वो खत्म नहीं हुई है, इसलिए वहां पर हम आशान्वित होते हैं
0: जी।
1: ये काम चल रहा है और चलता रहेगा आगे भी
0: जी। तो यानी हमारी जो चर्चित हस्तियां हैं, लगातार उन्हें स्वयं आगे बढ़कर इस तरह के कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि उनसे प्रेरित होते हैं लोग।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहूंगी, हमारा ये कार्यक्रम सुनते सुनते अगर हमारे किसी युवा श्रोता के मन में ये बात आए कि उन्हें भी फिल्म क्रिटिक बनना है या फिल्म लेखन से जुड़ना है या वो पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, तो क्योंकि आप दोनों दिग्गज इस समय यहाँ हैं, तो मैं आपसे चलते चलते ये जरूर चाहूंगी कि आप हमारे युवा साथियों के लिए कोई एडवाइस यहाँ जरूर दें, वो कैसे आगे बढ़ें।
2: देखिए, आज तो एडवाइस देने की जरूरत ही नहीं है
0: जी।
2: सोशल मीडिया जब से आया है हर कोई क्रिटिक बन गया है
0: जी।
2: यूट्यूब पे देखिए, कोई फिल्म नहीं आती वो हमसे पहले वो उसका रिव्यू कर देते हैं, कई लोग तो अभी उसका ट्रेलर एक्चुअल में लॉन्च ही नहीं होता उससे पहले उसका रिव्यू कर देते हैं।
0: लेकिन बहुत
2: हमने
0: क्या है कि
2: देखिए, हमने जिस दौर में शुरू किया वो ऐसा दौर था 1974 में कि जब ये बहुत आप किसी से कुछ आज तो आप वो ट्वीट कर देते हैं आप उनके बारे में जान लें, तब तो कुछ ऐसा होता ही नहीं था। हम तो अमिताभ बच्चन से एक बार मिले तो हमें पता है कि हम अमिताभ बच्चन से घर पे जाके मिले दिल्ली में 1976 में उनके बर्थडे पे गए, या उनके पिताजी डॉक्टर हरवंश शाह बच्चन जो मेरे गुरु रहे हम तब भी उनसे मिलते थे इतने सालों से, तो हमें जो अमिताभ बच्चन बात बताते थे हमें पता ये बात कहीं जाने वाली नहीं है क्योंकि मेरे बीच में बात हुई है। हम उसको जरूर कल दे परसों दे तरसों दे कभी भी दे देते थे। आज तो स्थिति ये है कि आप बात करके निकलिए तभी कभी दीजिए नहीं पता लगे वो एकदम आउट हो जाएगी। तो अब जो है हमने लेकिन हम देखिए उस समय जब मैं वी शांताराम से मिलता था, तारचरण बड़ियाती से मिलता था, बी आर चोपड़ा, रामानंद सागर, उस समय के जितने दिग्गज फिल्मकार थे पुराने पुराने, तो इनसे बात करने का अलग आनंद आता था, अलग सुख मिलता था हमसे। वो खाली हम उनसे सलाह लेते थे। तारचरण बड़ियातिया जी ने जब फिल्म मैंने प्यार किया बनाई तो उन्होंने सबसे पहले मुझे उसका पोस्टर दिखाया, उसके स्टूडियो में मुझे उसके रशेस दिखाए कि जरा बताइए कैसे हैं, उसके गाने दिल्ली में मुझे अपनी एम्बेसडर कार में सुनाए जनपद पे गाड़ी रोक कर, जब हमने रिकॉर्डिंग कर कराया आप गाने सुनी है। तो उस समय फिल्म समीक्षा की इतनी अहम भूमिका होती थी कि उसे सराह ली जाती थी कि आप जानते हैं सिनेमा देखते हैं लोगों की नफी पहचानते हैं तो आप बताइए क्या है, हम आपके कौन जब लगी पहली बार तो उसमें जो हमारे और क्रिटिक्स से बड़े क्रिटिसाइज कर रहे थे नहीं नहीं क्या फिल्म चित्रा बनाया चलेगी नहीं यही नहीं, तो जो उसके यहाँ दिल्ली के जो महावीर बड़जातिया थे वो उसके बाद भाग गए कि मेरे को पकड़ लेंगे क्या फिल्म बनाई है ये, तो मेरे को फोन आया मैं आप चिंता मत कीजिए ये फिल्म सुपरहिट होने वाली है क्योंकि मैं आसपास के लोगों को देख रहा था बहुत एंजॉय कर रहे थे, मैं तो कर ही रहा था मैं आसपास के लोगों को भी देखता हूँ तो उससे अंदाजा लग सकता है। तो फिल्म क्रिटिक बनी है बहुत अच्छी बात है लेकिन अच्छी आलोचना कीजिए। आज का रास्ता सबके पास यूट्यूब के और सोशल मीडिया के माध्यम से आ गया है, उससे भी कर सकते हैं, अखबार में भी और रेडियो में भी और टीवी में भी बहुत रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन उसको गंभीरता से लीजिए, जल्दबाजी अभी भी मत कीजिए। चाहे बेशक आप कर लें ये नहीं कि उसने क्या बोला मैंने क्या बोला उसको देखकर मैं बोल दूं, आप अपने दिमाग से बोलिए, हम आपके कौन के लिए सब लोग बोल रहे थे मैं भी बोल देता तो मैं उसी हवा में बह जाता लेकिन नहीं, तो इसलिए मेरी उनकी नजर में मेरा सम्मान और भी बढ़ गया, इसने कहा था ऐसे होगा पोस्टर दिखाया कि ये होगा, तो ये सब चीजें अगर आप करेंगे गंभीरता से करेंगे आप इसको ये ना सोचे हवाई हो जाए एकदम सब कुछ और हम ये बन जाए पॉपुलर हो जाए बहुत सारे पैसे कमा लें, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिस पर आपको लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए, इसलिए आज भी हम बिल्कुल ट्रस्ट करते हैं, हम ये मानते हैं कि हमारी बातों पर लोग ट्रस्ट करें तो अच्छा लगता है कि आज भी हमारी बातों पर लोग ट्रस्ट करते हैं कि जैसे प्रदीप सदाना ने लिखा है या कहा है तो वो सच होगा, तो ये चीज आज की फिल्म जो बनना चाहते हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि अपनी विश्वसनीयता बनाए, हवा हवाई बातें ऐसे ना करें, कोई भी अपना जो भी लिखे हैं जो भी बोले हैं जो भी करते हैं बहुत ही ईमानदारी से करें, क्योंकि जो जैसी फिल्म लग रही है उस ईमानदारी से करें और बहुत अच्छे से करें, ये सबसे मैं चाहूंगा ईमानदारी कर्मठता से करें परिश्रम से करें दिमाग लगाएं और फिल्मों के साथ अच्छी तुलना करें, ये नहीं कि आपने लिख दिया तो अगर वो करेंगे तो वो भी उनकी अच्छी फिल्म समीक्षक के रूप में अच्छी पहचान,
0: यानी फिल्म अध्ययन सिर्फ मनोरंजन नहीं है एक जिम्मेदारी भी है और आपकी जो लेखनी है या आपके जो शब्द हैं उनमें गंभीरता भी बनी रहे,
2: लोग अपना देखने जाते हैं
0: जी।
2: मैंने सबसे पहले टीवी के अंदर जो फिल्म आती थी संडे को मैं सबसे पहले नवभारत टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में इसका रिव्यू करना शुरू किया, आज की टीवी फिल्म और टाइम्स ऑफ इंडिया में टू डेज टेली फिल्म, तो उसमें बताता शाम को जो क्योंकि एक ही मनोरंजन का साधन होता था, तो मैंने सबसे पहले शुरुआत की कि लोग शाम को फिल्म देखें या ना देखें, तो वो इतना पॉपुलर हुआ लोग कॉलम, तो लोग कहते थे कि उसको देख के प्रोग्राम बनाते हैं कि जो आपने लिखा है आज ये फिल्म देखें या बाजार में परिवार के साथ घूमने जाएं या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएं, तो वो जो हमने दौर देखा है हम उसको आज तक उनकी जो दर्शकों की भावना थी तो उसको मैं सर झुकाता हूँ हमेशा, इतना सम्मान दिया तो आज भी मैं उसी लकीर पर चल रहा हूँ
0: जी। यानी अपने काम के लिए ईमानदार भी रहना है और जो सामाजिक दायित्व है उसे भी समझना है और ये समझ बनी रही है, इसीलिए फिल्म से जुड़े हुए लेखन को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल रहा है और पुरस्कार विजेता जब यहाँ बैठे हैं तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगी संजीव जी, चलते चलते एक तो आपकी पसंद का गाना और हमारे श्रोताओं के लिए आपकी कोई सलाह।
1: श्रोताओं के लिए सलाह किस मायने में, फिल्म समीक्षा के बारे में
0: जी।
1: अभी प्रदीप जी ने बहुत ही अच्छा व्याख्यान दे दिया इस बारे में कि फिल्म समीक्षक जो भी नए आ रहे हैं और फिल्में देख के कुछ लिख रहे हैं तो उनके लिए उसमें बहुत कुछ टिप्स है
0: जी।
1: लेकिन एक दो बात मैं उसमें जोड़ना चाहता हूँ, वो ये कि जब फिल्म आप देखते हैं, कोई भी नया युवा अगर देख रहा है, मैं भी अपने आप को युवा ही मानता हूँ है ना, तो पर्दे पे दिखाई जो भी चीजें दिखाई दे रही है जो भी चीजें वो केवल खेल तमाशा नहीं है
0: जी।
1: सिनेमा के भीतर सारे विषय हैं, राजनीति भी है, इतिहास भी है, संस्कृति है, तमाम कलाओं का संगम है, पूरा समाज है, पूरा परिवार है, युवा है, सब कुछ है, महिला है, महिला मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, सब कुछ है। आप उसको केवल एक मत समझिए कि केवल खेल तमाशा देख रहे हैं और गाने देख रहे हैं, केवल उस दृष्टि से सिनेमा को कभी मत देखिए। हाँ, उस नजरिए की फिल्म में कुछ आती है वह एक अलग मसला है। आज तो सिनेमा पर देखिए पीएचडी हो रही है, विश्वविद्यालयों में फैकल्टीज हैं, पढ़ाई हो रही है, अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल रहा है कई सालों से। तो ये इसलिए मिल रहा है और ये इसलिए पीएचडी मिल रही है क्योंकि सिनेमा को एक गंभीर विषय माना गया है जो पूरे समाज को प्रभावित करता है सिनेमा। तो फिल्म अगर हम देखते हैं, किसी फिल्म को हम देखते हैं तो उसके बारे में हम क्या लिखें? सबसे पहली बात तो यह है कि फिल्म को समझना, फिल्म को हम समझ कितना पाए हैं। अगर फिल्म हमें पसंद आई तो क्या हम ये लिख दें कि मुझे पसंद नहीं आई? क्या यह समीक्षा है? अगर हमें पसंद आ गई तो हम क्या ये लिखते हैं कि हमें पसंद आ गई? यह क्या यह समीक्षा है? फिल्म समीक्षा एक एजुकेशनल पार्ट है
0: जी।
1: फिल्म समीक्षा जो है एक एजुकेशनल पार्ट है। जैसा कि प्रदीप सर ने अभी बताया था कि उनकी टिप्पणी पढ़ने के बाद लोग इंस्पायर्ड होते थे कि फिल्म देखने जाते थे। पहली सूचना आप देते हैं फिल्म की गुणवत्ता के बारे में, आप उसमें बताते हैं हाँ ठीक है फिल्म में खामियां हैं, अभिनय खराब है, कहानी खराब है, उसका भी जिक्र करिए, लेकिन आप जजमेंटल मत होइए ये फिल्म कैसी है। दर्शकों के लिए, दर्शकों को पहले आप बताइए उस फिल्म में क्या है, और खामियां है तो बताइए, फिल्म के संदर्भ में बात करिए, वो कहानी के संदर्भ में है। ये नहीं कि अगर लव स्टोरी है तो उसकी तुलना हम वॉर मूवी से कर दें और वॉर मूवी है तो हम लव स्टोरी की अपेक्षा उसमें डालें
0: जी।
1: ऐसा नहीं होता, ऐसी समीक्षा कभी भी मानक नहीं मानी जाती
0: जी। तो सही और सटीक शब्दों में दोनों पक्ष जो है वो सामने रखे जाएं, उसे फिल्म समीक्षा हम कहेंगे कि दर्शकों के नजरिए से भी आपने लिखा है और साथ ही जो फिल्म निर्माता है उनके नजरिए से भी जी। और अब चलते चलते आपकी पसंद का एक और गीत,
1: आनंद आश्रम का एक गाना है
0: जी,
1: सारा प्यार तुम्हारा बांध लिया है आंचल में
0: जी।
1: ये बहुत ही खूबसूरत गाना है
0: जी।
1: और मुझे लगता है कि चलते चलते आप इस गाने को अगर सुनाए तो मुझे भी बहुत सुकून मिलेगा और जो हमारे तमाम श्रोतागण हैं उन्हें भी बहुत ही आनंद आएगा
0: जी। ठीक है, तो हम सुनवा रहे हैं यही गाना।

0: गाने के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहे हमारे ऐसे दो विशेषज्ञ जिनके माध्यम से हमने उत्तम कुमार जो अभिनेता थे उनके व्यक्तित्व से जुड़े हुए अलग अलग पहलुओं को जाना, हमने जो समसामयिकता रही उनके अभिनय की उस दौर की उसे पहचाना, और फिल्म लेखन की गंभीरता क्या है, वो कैसे समाज पर अपना असर डालता है, किस तरह से करियर के साथ साथ ये एक जिम्मेदारी भी है, अपने दोनों विशेषज्ञों के माध्यम से हमने ये समझा। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहे जाने माने फिल्म क्रिटिक संजीव श्रीवास्तव, जो कि एक लेखक भी हैं और स्वर्ण कमल पुरस्कार विजेता राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार श्रेणी में आपको प्रदान किया जा रहा है इस बार का, और साथ ही प्रदीप सरदाना जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। पिछले 50 वर्षों से आप अलग अलग शैलियों में अलग अलग माध्यमों में लगातार सक्रिय रहे हैं, आप स्तंभकार रहे हैं, पत्र पत्रिकाओं में लगातार लिखते रहे हैं, विभिन्न चैनल्स में हम आपको देखते हैं पैनलिस्ट के तौर पर, समीक्षक के तौर पर, जाने माने फिल्म समीक्षक भी आप हैं। और दोनों का संदेश यही कि फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं है। जब हम कहते हैं कि सिनेमा समाज का आईना है, तो जो सिनेमा के पात्र हैं वो भी हम में से ही निकले हुए हैं और उनकी जिम्मेदारी समाज के प्रति है, और हमारी जिम्मेदारी ये है कि जो अभिनय हम पर्दे पर देख रहे हैं उसके इतर जाकर हम उस व्यक्ति को भी समझने का प्रयास करें जो उस पात्र को जीवंत कर रहा है पर्दे पर। तो इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में हमने आकाशवाणी परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की अभिनेता उत्तम कुमार को। कार्यक्रम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकानिया अब आप सभी से लेती हूं अनुमति पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से, और साथ ही हमारे दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं यहां पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर की हों। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो इसकी बढ़ती आर्थिक क्षमताओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति करता हुआ देश है।
1: दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे गृह मंत्रालय की बैठक का नेतृत्व करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। गृहमंत्री 3 दिन के दौरे पर कल गोवा पहुंचे। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया है। इनकी सजा पर अंतिम फैसला 16 सितंबर को होगा। मई 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया गया था। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित 29 लोग मारे गए थे। नेपाल में बाढ़ में मृतकों की संख्या 1344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण का सहारा भी लिया जा रहा है। चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई है। तूफान सॉडेल से कई दिनों की मूसलाधार बारिश के कारण ये आपदा हुई है। मिस्र की एक अदालत ने टीवी एंकर सारा खलीफा समेत 12 लोगों को ड्रग्स तस्करी के मामले में मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने माना कि आरोपी एक आपराधिक गिरोह चला रहे थे जो मादक पदार्थों के निर्माण और बिक्री के लिए कच्चा माल आयात करता था। आरोपियों के पास अवैध हथियार होने की भी बात सामने आई है। सारा खलीफा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होने वाली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आई ब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा तथा डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए कार्य करना है। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न होगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। विश्व की 5वें नंबर की जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरियन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया। उधर दुबई में 2020 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 55 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम ने 8 ओवर और 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Lalima Aneja Dang. Prime Minister Narendra Modi has urged young Indians to dream even bigger than previous generations and build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. Mr. Modi said, "Today Indians are leading the top companies of the world, so why can't companies built by Indians lead the world?" Prime Minister was addressing centenary celebrations of Shriram College of Commerce, SRCC, at the Delhi University yesterday evening.
1: हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
2: Mr. Modi said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. He said the world is watching India become the fastest growing major economy. BJP Rajya Sabha MP Dinesh Sharma has been appointed Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands. Dr. Sharma will succeed Admiral D.K. Joshi, retired, who took over as Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands on October the 8th, 2017. Dr. Sharma, 62, earlier served as Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh. His Rajya Sabha term was to end on November the 25th. A Rashtrapati Bhavan communique issued late last night said that Dr. Sharma's appointment will come into effect from the date he assumes charge of his office. More than 500 institutional investors, finance ministers and business leaders will participate in the inaugural iBRICS Summit on the sidelines of BRICS Summit in New Delhi on 12th and 13th of this month. The two-day summit is designed to connect sovereign capital with bankable infrastructure, energy and digital capacity projects across 21 BRICS member states and partner nations. Sovereign wealth funds, pension funds and family offices attending the iBRICS summit manage a total wealth of $1 trillion. They will discuss cross-border investments, non-dollar settlements and payment systems among BRICS economies. As BRICS Chair 2026, India will be hosting the 18th BRICS Summit on September 12th and 13th at Bharat Mandapam in New Delhi. In Nepal, the death toll from the devastating flash floods stands at 1,344, while around 5,000 people, including nearly 590 foreign nationals, remain missing. More than 13,100 people have been rescued so far. A 60-year-old woman was rescued alive after being trapped under mud and debris for 10 days in Nuwakot district. Authorities are facing difficulties in identifying the deceased, with DNA testing being used in several cases. The naval force of Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, has claimed that it carried out strikes against three oil tankers travelling through what it described as an unauthorized route in the strategic Strait of Hormuz, as well as three vessels allegedly affiliated with the United States. The development came after the United States reportedly struck three Iranian oil tankers in the Persian Gulf and the Sea of Oman. In Egypt, television presenter Sahra Khalifa and 11 others have been sentenced to death by hanging after being convicted of drug trafficking. A court found them guilty of running a criminal gang that imported raw materials to manufacture and sell illegal drugs while also possessing unlawful firearms. Khalifa, who had hosted a crime-focused TV show called Mission Impossible, has denied all allegations and claimed she only saw the narcotics when authorities forced her to pose for photos with them. In badminton, India's Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty have entered the China Masters final for the third time. The world number 5 pair defeated Malaysia's Nur Mohammad Azrin Ayub and Tan Wee Keong 12-15, 18-21, 21-11 in the semi-final. The Asian Games champions will face China's He Chi Ting and Ren Xiang Hu in the final today at approximately 1:50 p.m. IST. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। सैनिक भाइयों, आइए आज का प्रसारण शुरू करने से पहले मैं आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे देती हूँ। आज रविवार है। आज का पहला कार्यक्रम 12:12 पर फिल्म संगीत, 12:30 पर कार्यक्रम आज का गीत, 12:38 पर कार्यक्रम सबरंग, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार। एक बज के 10 पर कार्यक्रम गीतिका, 1:40 पर कार्यक्रम शीर्षक संगीत, 2 मिड डे न्यूज, 2:15 पर हिंदी में समाचार, 2:30 पर कार्यक्रम गीत अपना धुन पराई, और इसी के साथ कार्यक्रम का अंत होगा दिन के 3 बजे। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 287.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है आज का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना शंकर महादेवन और सुनिधि चौहान की आवाजों में। फिल्म का नाम है दोस्ताना।

अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना, राहत फतेह अली खान की आवाज में। फिल्म का नाम है पाप।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीएनएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है आज का दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे गुलाम फिल्म से गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

सैनिक भाइयों, आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे देती हूँ। कल सोमवार है। कल का पहला कार्यक्रम 12:12 पर फिल्म संगीत, 12:30 पर कार्यक्रम आज का गीत, 12:38 पर संगीत माधुरी, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

1:10 पर कार्यक्रम गीत माला, 1:40 पर कार्यक्रम वतन के तराने, 2:00 मिड डे न्यूज, 2:15 पर हिंदी में समाचार, 2:30 पर कार्यक्रम चयनिका, और इसी के साथ कार्यक्रम का अंत होगा दिन के 3:00। तो ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्जो दिसपुर है। मीडियम वेव 282.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरंग। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना सुनिधि चौहान की आवाज में। फिल्म का नाम है सुर।

अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरंग। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना शान की आवाज में। फिल्म का नाम है सावरिया।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गाना, मैं खिलाड़ी तू अनारी फिल्म से, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतिका। सैनिक भाइयों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी का कार्यक्रम आप डिब्रूगढ़ केंद्र से भी सुन सकते हैं 529.1 मीटर पर। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम गीतिका। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है अमर प्रेम।

अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतिका। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना, गीता दत्त मन्ना दी की आवाजों में। फिल्म का नाम है जिद्दी।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना किस्मत फिल्म से, शमशाद बेगम और आसा भोसले की आवाजों में।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शीर्षक संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना मिथुन और अरिजीत सिंह की आवाजों में। फिल्म का नाम है सनम रे।

0: इसी गीत के साथ शीर्षक संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अभी से कुछ ही देर में आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और 2:15 पर हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम लालिमा अनेजा डैंग विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's economic strength and policy dynamism is driving nation towards Vikasit Bharat, calls upon Indian companies to aspire to lead the world. India backs UN resolution on equal area world map, reiterates Jammu and Kashmir and Ladakh must be depicted as per Indian official map as sovereignty and territorial integrity are non-negotiable. 10 people dead, several hospitalized after consuming suspected spurious liquor in Sagar district of Madhya Pradesh. Iran strikes 3 US tankers and vessels in Strait of Hormuz. Flood situation worsens in Bihar and Uttar Pradesh after heavy rainfall. IMD forecasts heavy rain over Haryana, Chandigarh, Punjab, Rajasthan and Uttar Pradesh. In China, Masters Badminton, Indian pair of Sattvic Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to take on Chinese pair in title clash this afternoon. Prime Minister Narendra Modi has called upon Indians to dream big and lead from the front, saying that if Indian talent can lead the world's top companies, Indian enterprises can also lead the world. Mr. Modi made these remarks while addressing the gathering at the centenary celebrations of Shriram College of Commerce, SRCC, in New Delhi. Encouraging the ambitious spirit of the 21st century youth, the Prime Minister celebrated their drive to build unicorns, innovate in drone technology and create cutting-edge AI solutions.
2: हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
1: The Prime Minister also highlighted that the world now praises India's policy dynamism and its status as the fastest growing major economy. He asserted that achieving a 7.8% quarterly growth amid the West Asia war and global trade hurdles demonstrates India's intrinsic capability.
2: जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है।
1: The Prime Minister also celebrated the success of the Make in India initiative in transforming the nation from a massive importer to a leading exporter. During his address, he shared that smartphone exports now exceed 2.5 lakh crore rupees, while domestic defense production has hit an all-time high of nearly 2 lakh crore rupees. Mr. Modi also noted that the defense exports, which were just 600 to 700 crore rupees in 2013,

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य में अमेरिका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। तेज बारिश के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन यांग यू से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत के लोग दुनिया की बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं तो भारतीय कंपनियां भी दुनिया का नेतृत्व कर सकती हैं। उन्होंने युवाओं से यूनिकॉर्न बनाने, ड्रोन तकनीक में नवाचार करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमताओं को दर्शाती है।
1: जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी, वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है।
0: श्री मोदी ने मेक इन इंडिया की सफलता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत अब प्रमुख निर्यातक राष्ट्र बन रहा है। स्मार्टफोन का निर्यात 2,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है, जबकि देश का रक्षा उत्पादन करीब 2,00,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री ने देश में तेजी से हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं को पूरा होने में पहले दशकों लगते थे, वे अब कुछ ही वर्षों में पूरी हो रही हैं। उन्होंने रेलवे के विद्युतीकरण का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 2014 तक 30% से भी कम रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ था, जबकि पिछले 12 वर्षों में लगभग 100% रेलवे विद्युतीकरण किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिवसीय गोवा दौरे पर हैं। वे कल रात गोवा पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री शाह आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
2: अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के साथ गोवा से जुड़े अहम मुद्दों पर समीक्षा बैठक की। इसके बाद वे जल्द ही मीडिया से बातचीत करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज बीजेपी के नए प्रदेश कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन भी करेंगे। वे पार्टी की स्टेट कोर कमेटी के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। कल 28वें वेस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 35 लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। इनमें कुछ की हालत गंभीर है। यह मामला बांदा थाना क्षेत्र के नौरोजा और घुघरा खुर्द गांवों का है। शुरुआती जांच में शराब में मिथाइल अल्कोहल होने की आशंका जताई गई है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। उन्होंने कहा कि भारत के संप्रभु क्षेत्र, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल हैं, उन्हें भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दिखाया जाना चाहिए। किसी भी गलत या भ्रामक चित्रण को भारत स्वीकार नहीं करेगा। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट तथा अडिग है। उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रस्ताव किसी खास मानचित्र, प्रक्षेपण या किसी देश की सीमा के चित्रण का समर्थन नहीं करता। होर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास अमरीका ईरान संघर्ष में इस सप्ताह एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों पक्षों ने होर्मुज जल डमरू मध्य और उसके आसपास जहाजों पर हमले किए हैं। कल के ताजा घटनाक्रम में अमरीका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा कि उसने ईरान के 3 तेल टैंकरों को निष्क्रिय कर दिया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने भी दावा किया है कि उसकी नौसेना ने होर्मुज जल डमरू मध्य के संरक्षित क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रही रिमोट से संचालित अमरीका की एक नाव को निशाना बनाया है। अमेरिका के दूत आज यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे। शांति प्रक्रिया के तहत अमरीकी दूतों की यह यूक्रेन की पहली यात्रा है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल क्रेमलिन में अमरीकी दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर से मुलाकात की थी। बातचीत के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने कीव पर रूसी हमलों को 3 दिन के लिए रोकने का आदेश दिया। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन भी सोमवार तक मॉस्को पर हमले रोकने के लिए तैयार है। नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 1344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। मृतकों की पहचान के लिए DNA परीक्षण की सहायता ली जा रही है। 1270 अज्ञात शवों का विवरण नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर दिया गया है। भारत और चीन की टीमों की सहायता से कई पनबिजली परियोजनाओं में बचाव अभियान अब भी जारी है। उधर चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई। तूफान सॉडेल से कई दिन की मूसलाधार बारिश के कारण यह दुर्घटना हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज

0: ये आकाशवाणी है। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट जिले में स्थिति और राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया।
1: राज्य की कई नदियां अभी भी उफान पर हैं। बदायूं, गाजीपुर और बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और फर्रुखाबाद में खतरे के निशान के नजदीक पहुंच गई है। वहीं लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में शारदा तथा अयोध्या और तुर्तीपार बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के पार पहुँच गया है। चित्रकूट के राजापुर में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में वरुणा नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ राहत शिविर में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री बांटी। उधर मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी हिस्से और आगामी 2 दिनों तक पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार के कई हिस्सों में भी बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल तक बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली में भी लगातार दूसरे दिन बारिश हो रही है। इसके चलते कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, झारखंड और छत्तीसगढ़ में कल बिजली गिरने की भी संभावना है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ये विशेष सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आयोजन की सुरक्षा तैयारियों के अंतर्गत आज सुबह दिल्ली पुलिस ने मोटर काफिले की रिहर्सल की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
2: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर NDMC क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के अनुसार यमुना नदी के किनारे सुरक्षा उपायों की भी समीक्षा की गई है। इस बीच NDMC नई दिल्ली के प्रमुख इलाकों में सौंदर्यकरण और सड़कों के स्वरूप में सुधार से जुड़े कार्य कर रही है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के नेताओं, आउटरीच देशों तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुखों को एक मंच पर एकत्रित करेगा। समर्थ के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारे संवाददाता ने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आईब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आईब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा तथा डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है।
3: सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की UPI भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमरीकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष
0: भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम दूसरे अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय एयर शो में भाग लेने के लिए मिस्र पहुंच चुकी है। ये एयर शो 8 से 10 सितंबर तक अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि टीम सुनियोजित प्रदर्शनों की श्रृंखला के माध्यम से सटीकता, पेशेवर अंदाज और उड़ान कौशल का प्रदर्शन करेगी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि सारंग टीम देश में ही डिजाइन और निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव का संचालन करेगी। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
4: जो निर्देश होगा, जो भी प्रधानमंत्री जी का, वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
0: आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के साधारण चुनाव कराने के लिए संवैधानिक नियम जारी किए हैं। ये नियम महापौर, अध्यक्षों और वार्ड सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव के साथ साथ उपमहापौर और उपाध्यक्षों के अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए बनाए गए हैं। संशोधित कानूनों के तहत नगर निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर किया जाएगा।

0: भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जलडमरों मध्य में अमरीका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचार के बाद एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआर फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत अपना धुन पराई। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम है शराबी।

अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत अपना धुन पराई। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना के और सुनिधि चौहान की आवाजों में। फिल्म का नाम है गरम मसाला।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गाना हिमेश रेशमिया और नेहा कक्कड़ की आवाजों में। फिल्म का नाम है हिट स्टोरी 4।

इसी गीत के साथ गीत अपना धुन पढ़ाई कार्यक्रम यही समाप्त होता है। सैनिक भाइयों, आज का प्रसारण भी यही समाप्त होता है। अभी से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम रेनबो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सैनिक भाइयों, कल हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सुनंदा तिवारी को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: आकाशवाणी आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: माँ बनने का एहसास जितना अनमोल है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। एक स्वस्थ बच्चे का पालन पोषण और इस खूबसूरत सफर की शुरुआत होती है माँ के दूध से। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और मैं हूँ आपकी दोस्त और मेजबान शिल्पा गुप्ता। स्तनपान केवल शिशु का पहला आहार नहीं बल्कि उसके स्वस्थ जीवन और बीमारियों से सुरक्षित रखने की पहली शुरुआत है। आज रेडियो डॉक्टर में हमारा विषय है मातृ और शिशु देखभाल यानी मदर एंड चाइल्ड केयर। गर्भ अवस्था से लेकर जन्म के बाद तक माँ और बच्चे की सेहत, स्तनपान, पोषण और जानेंगे उन जरूरी बातों के बारे में जिन्हें हर परिवार को जानना चाहिए। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं विशेषज्ञ डॉक्टर सुजाता दास, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट, सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।
2: और हमारे साथ हैं डॉक्टर ललन के भारती, HOD पीडियाट्रिक, JPC हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, प्रेसिडेंट NNF इंडिया। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो डॉक्टर में।
4: शिल्पा जी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज और AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो श्रोताओं जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो डॉक्टर में। आज हम बात करेंगे मदर एंड चाइल्ड केयर पर। तो सबसे पहले डॉक्टर साहिब आपसे जानना चाहेंगे कि कोई कपल अगर बेबी प्लान कर रहा है तो किन बातों का ध्यान रखे जिससे गर्भधारण सही से हो और बच्चा स्वस्थ हो।
3: जी शिल्पा जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। इसमें कई बातें हैं जो एक कपल को ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ अपने कुछ जांचें करवा लें जिससे आगे गर्भधारण में भी आसानी होती है और डॉक्टर्स को भी उसे फॉलो करने में बहुत आसान रहता है। आगे जो भी है तो कुछ खून की जांचें हैं जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट की जांच है या ब्लड ग्रुप की जांच है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में RH नेगेटिव ग्रुपिंग है तो डॉक्टर्स को इस बात का खास ख्याल रखना होता है। कुछ टीके भी लगते हैं। इसके अलावा HIV की जांच है तो हस्बैंड वाइफ दोनों को करवानी चाहिए। HPS एंटीजन की जांच है, HCV की जांच है और एक थैलेसीमिया की जांच है जो बहुत जरूरी है, जो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को होनी चाहिए ताकि ये जो बीमारी है, जो अनुवांशिक बीमारी है, जो वो बच्चे में आगे ना पहुंचे। तो इस तरह की बहुत सी जांचें हैं। इसके अलावा अगर मरीज कुछ और दवाइयां ले रहा है पहले से, हृदय रोग की दवाई है या किडनी डिजीज की दवाई है या थायराइड की दवाई है या खून की कमी है, उसके लिए वो आयरन कैल्शियम की गोलियां ले रहे हैं, तो ये सारी जानकारी डॉक्टर्स को देना रजिस्ट्रेशन के टाइम पर बहुत जरूरी है।
2: डॉक्टर भारती आपसे जानना चाहेंगे अगर कोई बच्चा न्यूबॉर्न बच्चा है तो उसके लिए फर्स्ट गोल्डन आवर किसे कहते हैं और वो क्यों इम्पोर्टेंट है।
4: गोल्डन आवर यानी जन्म के बाद का पहला घंटा जो बच्चे के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस दौरान सही देखभाल से नवजात की जान बचाई जा सकती है और आगे का स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सकता है। अगर हम इस समय सही से देखभाल करेंगे तो लॉन्ग टर्म आउटकम जो उसका बहुत ही अच्छा होगा। इस एक घंटे में कुछ बहुत जरूरी कदम होते हैं, जैसे कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे को अच्छी तरह सुखाना और गर्म रखना। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चे को हम गर्म रखें, क्योंकि बच्चा जो माँ के पेट के अंदर रहता है तो वहां टेम्परेचर माँ से मिलता है और अचानक बच्चे बाहर आ जाते हैं तो वहां हमारा काम होता है कि उसको हम गर्म रखें, गर्माहट दे, टेम्परेचर मेंटेन करें। यदि जरूरत हो तो उस बच्चे को हमें रिससिटेशन भी देना पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चा सांस नहीं ले रहा है अपने से तो तुरंत हमें सांस देना है। वहां हम गोल्डन मिनट की बात करते हैं। अगर बच्चा ऐसा होता है कि 10 में अगर 100 में से 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सांस नहीं लेता है अपने, उस बच्चे को हमें सांस देना होता और ये सांस फर्स्ट मिनट में देना पड़ता है, इसलिए इसे हम फर्स्ट गोल्डन मिनट बोलते हैं। जैसा कि आपने अभी कहा कि फर्स्ट गोल्डन आवर, उस तरह से फर्स्ट गोल्डन मिनट होता है जिसमें कि बच्चे को हमें सांस देना पड़ता है और इसको हम न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम कहते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। दूसरी बात जो फर्स्ट गोल्डन आवर में होता है वो होता है कि डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, जो नाल होता है उसको हमें तुरंत नहीं काटना चाहिए, उसे एटलीस्ट 60 सेकेंड्स के बाद ही काटना चाहिए अगर बच्चा रो रहा है, सांस ले रहा है। इससे क्या होगा कि माँ के शरीर का जो ब्लड है वो बच्चे में जाएगा और बाद में बच्चे में एनीमिया का चांस कम होगा। तीसरी बातें जो है कि माँ को अपने बच्चे को छाती से लगा के रखना चाहिए, जिससे दो फायदे हैं। एक तो माँ से गर्माहट मिलेगी बच्चे को, दूसरा ये है कि बच्चा से एक बॉन्डिंग बनेगा और उससे क्या होगा कि मिल्क प्रोडक्शन में और सिक्रेशन में हेल्प मिलता है। तो ये भी हमें विद इन वन आवर बच्चे को मदर्स मिल्क स्टार्ट कर देना चाहिए। तीसरी बात ये है कि जो फर्स्ट फ्यू डेज और फर्स्ट फ्यू आवर्स जो मिल्क सिक्रेट होता है उसको हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो बहुत ही उपयोगी होता है, उसे फेंकना नहीं चाहिए उसे और उसको देना चाहिए। उसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं जो कि इन्फेक्शन से बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। बच्चे को बिना जरूरत माँ से अलग नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि बच्चे को सांस लेने में परेशानी हो तो उस समय हमें डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए। हो सकता है इस बच्चे को हमें नर्सरी के अंदर एडमिट भी करना पड़ सकता है। सो गोल्डन आवर में सही देखभाल जीवन भर बेहतर स्वास्थ्य की नींव रखती है, इसलिए गोल्डन आवर के बारे में हमें जानना चाहिए, हमारे श्रोता को भी जानना चाहिए और खास करके हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है, जो डिलीवरी अटेंड करते हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन और पीडियाट्रिशियन, उनको जानना चाहिए। इसी समय हमें यह भी पता करना होता है कि कौन सा बच्चा को एडमिट करना है नर्सरी में, कौन से बच्चे को सांस ऊपर से देने की जरूरत पड़ सकती है, कौन से बच्चे को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, कि इस गोल्डन आवर में बच्चे को माँ का दूध शुरू कर देना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि अगर बच्चे को हम स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट में रखते हैं माँ के साथ और इस गोल्डन आवर में ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देते हैं तो मिल्क का वॉल्यूम ज्यादा होता है। दूसरी बात यह है कि जो फेलियर रेट होता है ब्रेस्ट फीडिंग का, वो भी कम हो जाता है। देखा गया है, अभी आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी वो 90% से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी भी अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग जो कि एक घंटा के अंदर होना चाहिए वो उतना नहीं है, वो 50% 55% के आसपास है। तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि फर्स्ट गोल्डन मिनट में बच्चे को गर्माहट, दूसरी बात माँ के कंटेक्ट में रखना चाहिए, कॉर्ड को डिले काटना चाहिए, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको डिले करना चाहिए काटने के लिए, और ब्रेस्ट फीडिंग एज अर्ली पॉसिबल शुरू करना चाहिए।
2: जैसा कि आपने कहा कि माँ और बच्चे की जादू की झप्पी वो गोल्डन आर गोल्डन मोमेंट्स में तब्दील हो जाता है। बात कर रहे हैं आज मदर एंड चाइल्ड केयर पर, इस पर हम बातें और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: मेरी दुनिया तू ही रे। अगर किसी परिवार में कोई बच्चा आता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो वाकई में सारी दुनिया उस तक ही सीमित रह जाती है। तो डॉक्टर सुजाता, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई पहली बार माँ बनने वाली जो महिलाएं होती हैं, तो उनको किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए?
1: जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो माताएं गर्भ धारण कर रही हैं। उनके लिए कुछ बातें जो हैं, चार पांच मुख्य रूप से जो बातें हैं वो मैं यहाँ जरूर बताना चाहूंगी। पहली बात, अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हॉस्पिटल में अपना एंटीनेटल कार्ड बनवाएं, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। इसके साथ ही हिस्ट्री टेकिंग होती है, एग्जामिनेशन होता है जो पेशेंट का, उसी कार्ड पे लिखा जाता है। ब्लड प्रेशर की जांच है, पल्स की जांच है, हाइट है, वेट है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है जो कार्ड पे मेंशन की जाती है। तो रजिस्ट्रेशन जो है सभी महिलाओं का बहुत जरूरी है, और भारत सरकार का काफी प्रयास रहा है। और अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में जो प्रतिशत है वो 25 पॉइंट से भी ऊपर उठ के आया है। तो रजिस्ट्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही जो कुछ खून की जांचें हैं, कुछ पेशाब की जांचें हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड्स हैं जो बहुत जरूरी हैं, चाहे CBC की जांच हो, या ब्लड ग्रुप की जांच हो, चाहे HBS एंटीजन की जांच हो, या VDRL की जांच हो, या HIV टेस्टिंग की जांच हो हस्बैंड या वाइफ की, या शुगर की जांच हो, ताकि प्रेगनेंसी में अधिक शुगर ना बढ़े, जिससे गर्भवती महिलाओं को भी परेशानी होती है और शिशुओं को भी परेशानी होती है। तो ये सब जानना बहुत जरूरी है। ब्लड प्रेशर की जांच बहुत जरूरी है, HPLC यानी कि थैलेसीमिया की जांच बहुत जरूरी है। कुछ अल्ट्रासाउंड्स होते हैं जो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवाते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर में करवाते हैं, और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी करवाते हैं। तो कब जांच करवानी है अल्ट्रासाउंड की, वो डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं। सो ये चीजें बहुत बहुत जरूरी है कि कब अल्ट्रासाउंड की जांच कराएं, कब खून की जांच कराएं, पेशाब की जांच कराएं। इसके साथ ही समय समय पे डॉक्टर के पास आके अपनी जांच करवाना बहुत जरूरी है। ANC की जांच एक ऐसी जांच है जिसके द्वारा हम तीन चार चीजें जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर ज्यादा होना, शुगर का ज्यादा होना, बच्चे का ठीक से ना पनपना, RH नेगेटिव प्रेगनेंसी है, या समय से पहले बच्चे का दर्द शुरू हो गया, तो ये सब कुछ प्रेगनेंसीज जो है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में आती है। तो हमें ये सब जानना बहुत जरूरी है कि हमारी जो है वो लो रिस्क प्रेगनेंसी कौन सी है और हाई रिस्क प्रेगनेंसी कौन सी है, तभी हम एंटीनेटल फॉलोअप और एंटीनेटल की जांच सही ढंग से कर पाएंगे। इसके साथ ही जब भी माताएं हमारे पास आती हैं, एक एक ओपीडी विजिट में हमें क्या क्या उनको जानकारी देनी है, ये बहुत जरूरी है। किस प्रकार का भोजन करें, कैसा भोजन करें, आयरन और कैल्शियम की जो खुराक है वो कब लें, कैसे लें। इसके साथ ही कोई अन्य दवा चल रही है तो उसके लिए भी डॉक्टरी सलाह बहुत जरूरी है। किस तरह से उस दवाई को लेना है वो बहुत जरूरी है, चाहे वो आपकी हृदय रोग की दवा हो, या थायराइड की दवा हो, या पहले से शुगर की दवाई चल रही है, तो ये सारी चीजें डॉक्टरी सलाह पे ली जा सकती हैं। इसके साथ ही जो कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस हैं जो प्रेगनेंसी में बताई जाती हैं, हर तरह की एक्सरसाइज नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस हैं जो प्रेगनेंसी में की जा सकती हैं, तो वो डॉक्टरी सलाह के साथ ही करनी चाहिए। कुछ वॉक है, कुछ खाने के बाद 15 मिनट 20 मिनट का वॉक है जो हम बताते हैं, और इस तरह से कई तरह की जानकारियां जो हैं जो हम एंटीनेटल पीरियड में हम अपनी गर्भवती महिलाओं को दे सकते हैं। ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है उन्हें पिकअप जल्दी कर सकते हैं।
0: डॉक्टर सुजाता, जैसे कि आपने कहा कि प्रेगनेंसी में महिलाएं क्या खाएं क्या ना खाएं, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर भारती ने जैसे कि अभी हमें गोल्डन आर के बारे में बताया था कि गोल्डन आर के बारे में तो हमें पता लग गया, लेकिन ये है कि अगर बच्चा हो गया, हम घर पे ले गए, बच्चा स्वस्थ है, लेकिन क्या ऐसे कोई डेंजर साइंस होते हैं कि जिसके बाद हमें लगे कि हमें तुरंत डॉक्टर को कॉन्टेक्ट करना चाहिए?
2: आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। ये सवाल हर एक पेरेंट्स को जानना चाहिए कि बच्चे को कब हॉस्पिटल ले जाना है या कब घबराने की बात है। तो यदि बच्चा दूध ना पी रहा हो, या पहले से कम दूध पी रहा है, बहुत सुस्त हो गया, जग नहीं रहा है, उनकी सांस तेज या कठिन हो रही है, छाती अंदर धस रही है, होंठ नीले पड़ रहे हैं, शरीर बहुत गर्म या ठंडा लग रहा है, बार बार वॉमिटिंग हो रहा है, दौरे पड़ रहे हैं, या बच्चा अचानक ढीला पड़ गया, तो तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। इसी तरह पीलापन, जिसे हम जॉन्डिस बोलते हैं, अगर ये जॉन्डिस सोल में या पाम में आ गया, पहुंच जाए, नाभि से मवाद आ जाए, शरीर पर कई कई फूरे दिखाई देने, एक दो तो हो सकते हैं लेकिन अगर पांच से ज्यादा पड़ने लगे, या बच्चे की गतिविधि अचानक कम हो जाए, तो जांच बहुत जरूरी है। 3 महीने से छोटे बच्चे में बुखार को हल्के में नहीं लेना चाहिए, घर पर अपने आप एंटीबायोटिक्स या बुखार की दवा देकर इंतजार करने के बजाय उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तो WHO का क्लियर कट गाइडलाइन है कि अगर बच्चा दूध ना पिए, सुस्त हो जाए, तेज या कठिन सांस लेने लगे, शरीर बहुत गर्म या ठंडा होने लगे, दौरा पड़ने लगे, हथेली या तलवा पीला होने लगे, तो इसे हम प्रमुख खतरे के संकेत मानते हैं और इस समय हमें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। नवजात शिशु में हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है बच्चे का गर्माहट। तो अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है किसी पेरेंट्स के पास, तो हाथ से भी, हाथ के उल्टे जो पाम के अपोजिट साइड से, उसको हमें एक पेट पर और एक तलवे पर रखना चाहिए। दोनों गर्म होना चाहिए। अगर पेट पर गर्म है और तलवे में ठंडा है, तो इसका मतलब बच्चा को हाइपोथर्मिया की तरफ जा रहा है, तो उसे तुरंत हमें गर्म करके रखना चाहिए।
0: ये आपने बहुत अच्छा बताया कि कई बार हम बाहर हो, हमारे पास ट्रेवल कर रहे हो, थर्मामीटर नहीं हो, तो हम बच्चे का इंस्टेंटली चेकअप कर सके।
2: एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जितना कपड़ा पहनते हैं, बच्चे को एक लेयर अपने से ज्यादा पहनना चाहिए नवजात बच्चे को, क्योंकि उसमें गर्माहट देना बहुत जरूरी है और ये बच्चे यूजुअली हाइपोथर्मिया की ओर जल्दी से जल्दी जा सकता है।
0: ममता की गर्माहट के साथ ये भी जरूरी है। जरूरी। एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
3: हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब सबको।
0: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे
3: हो? पंचकूला से।
0: जी बताइए, स्वागत है आपका रेडियो डॉक्टर में। बताइए क्या प्रश्न है आपका।
3: जी थैंक यू। मेरे दो तीन क्वेश्चन है। पहला तो ये है कि प्रेग्नेंट का डाउन सिंड्रोम टेस्ट होना मैंडेटरी होना चाहिए, क्योंकि हमारे किसी के बच्चे हुए बहुत बड़ा नर्सिंग होम पर वो टेस्ट नहीं करवाया और बच्चा डाउन सिंड्रोम से पैदा हुआ और 4 महीने में वो खत्म हो गया, ग्रो ही नहीं किया। दूसरा ये कि क्या बड़ी एज में प्रेगनेंसी होने से ज्यादा स्पेशल चिल्ड्रन आ रहे हैं दुनिया में? थोड़ी मेरी एक क्वेरीज दूर करें।
1: जी आपने बहुत इम्पोर्टेंट बातें पूछी हैं, कुछ दो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले तो डाउन सिंड्रोम, आजकल डाउन सिंड्रोम की तरफ अगर हम देखें तो बढ़ती उम्र में अगर प्रेगनेंसी की जाती है तो डाउन सिंड्रोम का जो इंसिडेंस है वो डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द अदर पॉपुलेशन। तो डाउन सिंड्रोम की जांच बहुत जरूरी है, सभी बड़े अस्पतालों में की जाती है, जिसको हम डुअल मार्कर या क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट कहते हैं, जो कि हर बड़े संस्थान में, हर छोटे संस्थान में की जाती है और वो बहुत जरूरी है, हर प्रेगनेंसी में होनी चाहिए। पहली बात, कुछ अल्ट्रासाउंड के फीचर्स भी होते हैं जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर, मतलब 18 से 20 हफ्ते, 22 हफ्ते के बीच में जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसी स्पेशल बातें हैं जो सामने उभर के आती हैं, जिससे ये काफी हद तक पिकअप किया जा सकता है कि बच्चा जो है वो डाउन सिंड्रोम का बच्चा है, उसमें शायद इस तरह की कुछ परेशानी है। और जिसको हम खून के टेस्ट के द्वारा या बच्चे के आसपास जो पानी है उसे लेके उसके टेस्ट के द्वारा ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे को सचमुच डाउन सिंड्रोम है। तो आजकल डाउन सिंड्रोम की जांच डेफिनेटली की जाती है और सभी प्रेगनेंसीज के लिए की जाती है। ये आपका पहला प्रश्न था। आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि बढ़ती उम्र की महिलाओं में प्रेगनेंसी, जो गर्भधारण है, वो एक हाई रिस्क फैक्टर है। डेफिनेटली वो एक हाई रिस्क फैक्टर है, क्योंकि इसमें जो हमारी जेनेटिक डिजीजेस हैं जो बच्चे की तरफ जाती हैं उसका प्रतिशत थोड़ा बढ़ जाता है। तो ऐसी प्रेगनेंसीज के साथ डॉक्टर्स भी बहुत सावधान रहते हैं। कई तरह की जांचें होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा जांचें होती है, खून के पेशाब की, जेनेटिक काउंसलिंग होती है, जेनेटिक टेस्ट्स होते हैं। आजकल तो हमारे पास इतने बड़े बड़े टेस्ट हैं कि हम होल जीनोम सीक्वेंसिंग तक कर लेते हैं। तो इस तरह की कुछ स्पेशल जांचें होती हैं जिसके द्वारा यह पता लगाया जा सकता है। तो डेफिनेटली बढ़ती उम्र में कुछ अनुवांशिक बीमारियों का जो खतरा है वो बढ़ जाता है बच्चे का। यस
3: नहीं, डाउन सिंड्रोम टेस्ट किस मंथ में होता है?
1: देखिए, प्रेगनेंसी में फोर्थ मंथ में डाउन सिंड्रोम टेस्ट, थर्ड मंथ के बाद डाउन सिंड्रोम टेस्ट हो जाता है। एक टेस्ट फोर्थ मंथ के बाद होता है, एक अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है 4.5 मंथ्स पे। तो इससे पता चल जाता है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम की समस्या है।
3: तो क्या फिर वो बेबी अबॉर्ट करा देना चाहिए?
1: जी, क्योंकि डाउन सिंड्रोम का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो स्पैन है, वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में पेशेंट की काउंसलिंग के द्वारा, जो माता पिता हैं उनकी काउंसलिंग के द्वारा, इस तरह का डिसीजन लिया जा सकता है कि प्रेगनेंसी को आगे ना बढ़ाया जाए।
3: थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत मेरे दिल से एक बोझ उतारा है, मैंने किसी को बताना।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: ये तो डॉक्टर साहब आपने इसके बारे में बताया, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी माता पिता खुशहाली से अपने बच्चे को अपनाएं, तो हेल्दी प्रेगनेंसी हो उसके लिए माँ क्या खाएं क्या ना खाएं?
1: जी, जो न्यूट्रिशन है, जो प्रेगनेंसी में जो एंटीनेटल मदर्स हैं, जो न्यूट्रिशन है, जिस प्रकार का भोजन चाहिए वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास अधिकतर महिलाएं जो आज भी आ रही हैं, 50-55% महिलाओं में खून की कमी है, एनीमिया है, चाहे वो माइल्ड फॉर्म में हो, मॉडरेट फॉर्म में हो या सेवियर फॉर्म में हो, ये एक चिंता का विषय है। सभी बड़े अस्पतालों में आयरन और कैल्शियम की गोली मुफ्त दी जाती है, उन्हें हर एंटीनेटल विजिट पे समझाया जाता है कि इन गोलियों को लेना बहुत जरूरी है। लगातार प्रेगनेंसी में कब तक लेनी चाहिए, उसके बाद भी डिलीवरी के बाद 2 या 3 महीने लेनी चाहिए, आपके अंदर खून की कमी ना हो, किस तरह का भोजन करें वो बहुत जरूरी है। तो 3 बातें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह से आप अपनी जो कैलोरी इनटेक है, जो प्रेगनेंसी के दौरान जो डाइट हम लेते हैं उस पे अतिरिक्त 300 कैलोरीज का जो वो है फूड इनटेक वो अधिक होना चाहिए। हमारे खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां हो, सलाद हो, ठीक है, दूध है, दूध से बनी चीजें हैं, दही है, कम से कम माताओं को 1 लीटर दूध प्रतिदिन लेना चाहिए। अगर वो एग्स लेते हैं तो 2 एग्स ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना आयरन इनटेक और अपना प्रोटीन इनटेक डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। और जैसा हमने कहा 300 कैलोरीज पर डे की अतिरिक्त आवश्यकता होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर 9 मंथ्स और 500 कैलोरीज प्रतिदिन की अतिरिक्त आवश्यकता होती है ड्यूरिंग लैक्टेशन, डिलीवरी के बाद जब तक माताएं बच्चों को दूध पिला रही हैं उसके बाद। एंड प्रोटीन इनटेक भी डेफिनेटली 1 ग्राम पर डे एक्स्ट्रा चाहिए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखना बहुत जरूरी है कि हमारा जो खान पान है वो किस तरह से हो। तो हम अपने मील को इस तरह की कोई उस तरह का खाना न ले कि एक साथ बहुत सारा ले लिया या तेल मिर्च मसालेदार भोजन ले लिया। हमें अपने मील्स को प्लान करना होता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, जिसे हम मेजर मील्स कहते हैं। इसके साथ ही हम बीच बीच में कुछ माइनर मील्स ले सकते हैं। इसका मतलब होता है भोजन के बीच में अतिरिक्त हमने कुछ सलाद ले लिया, कुछ फ्रूट्स ले लिया, कुछ फ्रूट जूसेस ले लिए जो घर में बने हुए हों, या हमने कुछ सूप्स ले लिए। इस तरह से हम अपने जो खान पान है उसे नियंत्रित भी कर सकते हैं और उसको ठीक से प्लान भी कर सकते हैं। तो एक चीज जो है वो सभी अस्पतालों में हर एंटीनेटल विजिट पे मरीजों को समझाई जाती है जी।
0: लेकिन कई बार प्रेगनेंसी के दौरान कहा जाता है कि जो मन है वो खाओ, जब मन के हिसाब से खाओगे तभी बच्चा स्वस्थ होगा। तो क्या कुछ ऐसा है जो हमें अवॉइड करना चाहिए, जी, नहीं खाना चाहिए?
1: बहुत सी चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। जैसा मैंने आपको पहले बताया, बहुत ज्यादा तेल मिर्च मसाला जो भोजन है ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह का भोजन आपके लिए ना आपके बच्चे के लिए पौष्टिक है। पानी जो है दूषित नहीं होना चाहिए, जो हमारा भोजन है दूषित नहीं होना चाहिए। खाना खाएं, बनाएं, हाथ धोने के बाद ही भोजन ग्रहण करें और हमारा जो भोजन है वो बिल्कुल साफ, स्वच्छ, शुद्ध, घर का बना हुआ होना चाहिए। बाहर से भोजन खाना खतरे से खाली नहीं है, कई तरह के पेट के संक्रमण और बाकी रिस्क हैं जो बच्चों को हो सकते हैं, माताओं को भी।
0: डॉक्टर भारती, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे हम बात कर रहे थे बच्चों की, तो जो बच्चा समय से पहले हो जाए या कम वजन का हो पैदा हुआ तो उसके लिए क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, जैसे प्रीमैच्योर डिलीवरी हो या वेट कम हो?
2: तो अभी जैसे हम बात करते हैं न्यूनेटल मोर्टैलिटी का, तो इंडिया का न्यूनेटल मोर्टैलिटी रेट अभी अराउंड 18 per 1000 लाइव बर्थ है, और प्रीमैच्योरिटी एंड लो बर्थ ये जो है करीब करीब 1/3 ऑफ द न्यूनेटल मोर्टैलिटी कॉज है। ये मतलब 1/3 जो टोटल मोर्टैलिटी का हिस्सा प्रीमैच्योरिटी और लो बर्थ वेट से कवर होता है। तो हमें इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और ये ध्यान हमें प्रेगनेंसी के समय से ही देना चाहिए। डॉक्टर दास बता सकते हैं इसके बारे में कि अगर हम मदर को सही समय पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड लगाएंगे तो वो बच्चे को हम मॉर्बिडिटी और मोर्टैलिटी कम कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका देखभाल, अगर डिलीवरी होता है तो इस मदर्स को हम ऐसे अस्पताल में ले जाएं जहां की लेवल 3 या सारी सुविधाएं हो, वेंटिलेशन की सुविधाएं हो, लेवल 3 केयर नर्सरी की सुविधा हो, तो वहां हमें ले जाना चाहिए इसको। या मान लो कि इसका डिलीवरी किसी ऐसे अस्पताल में हो गया जहां लेवल 3 सुविधाएं नहीं है, प्रीटर्म बेबी डिलीवर हो गया, तो उसको अच्छे तरह से हमें गर्माहट के साथ साथ लेवल 3 नर्सरी में ले जाना चाहिए। अब ऐसे बच्चे को क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, जैसा कि आपने सवाल पूछा, तो ऐसे बच्चे जल्द से जल्द ठंड पड़ जाते हैं, दूध पीने में ये थक सकते हैं और इन्फेक्शन का खतरा इसमें अधिक हो सकता है। तो उन्हें अस्पताल की सलाह के अनुसार नियमित रूप से फॉलो अप की जरूरत होती है, तो उसको बार बार दिखाने की जरूरत है। जैसा कि मैंने डेंजर साइन बताया, अगर कोई भी साइंस आ जाते हैं तो उसको तुरंत डॉक्टर्स के पास ले जाना चाहिए। दूसरी बात जो है कि इसमें अगर वजन कम बढ़ने लगे, इस बच्चे में अगर वजन कम बढ़ रहा है तो वो भी देखना पड़ेगा कि वजन कम क्यों बढ़ रहा है। एक तो कारण हो सकता है कि ये बच्चा ठंडा रह रहा है, जैसा कि हमने भी बताया कि अपने हाथ से आप देख सकते हो कि इसके बच्चे का पैर जो है वो ठंडा तो नहीं हो रहा है पेट के कंपेरिजन में। तो अगर ठंडा हो रहा है तो उसको हमें गर्म रखना पड़ेगा। दूसरी बात जो एक बहुत ही जरूरी है वो है कंगारू मदर केयर। ये है यानी बच्चे को माँ या पिता की खुली छाती से स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट में रखना होता है। यह बहुत ही उपयोगी है, इससे गर्माहट मिलता है, स्तनपान और जुड़ाव में सहायता मिलता है। तो ये हॉस्पिटल में तो कंगारू मदर केयर हम करते ही करते हैं, जब ये बच्चे छुट्टी होके जाने लगते हैं तो हम लोग सलाह देते हैं मदर को, पेरेंट्स को, पर्टिकुलरली ग्रैंड्स मदर को, कि आप घर पे भी इसको कंगारू मदर कराएं। तो कंगारू मदर केयर सिर्फ ऐसा नहीं है कि गोद में पकड़ना, बल्कि इसे सीखना पड़ता है सही तरह से। परिवार को अस्पताल से सही तरीके से कंगारू मदर केयर सीखना चाहिए। दूध की मात्रा, वजन, तापमान, सांस और बच्चे की गतिविधि पर निगरानी रखनी चाहिए जब हम कंगारू मदर करते हैं। बच्चा छोटा है इसलिए उसे इन्फेक्शन से बचने के लिए भी अनावश्यक भीड़ या बीमार लोगों के संपर्क और बार बार अलग अलग लोगों के द्वारा गोद में लेना सीमित रखना चाहिए।
0: जी हाँ, आपने बहुत अच्छा बताया हमें कंगारू मदर केयर के बारे में और गोल्डन आर के बारे में। इस पे बातें हम और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं मदर एंड चाइल्ड केयर पे। तो डॉक्टर सुजाता, सबसे पहले तो आप हमें अभी ये बताइए कि जो नॉर्मल डिलीवरी भी होती है, सीजेरियन भी होती है, सी सेक्शन डिलीवरी जिसे हम कहते हैं, तो उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए?
2: जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो हमारी माताएं हैं जो गर्भ धारण कर चुकी हैं या डिलीवरी हुई है, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि जो स्तनपान है वो कब शुरू किया जाए। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, स्तनपान जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए, प्रेफरेबली एक घंटे के अंदर, डिलीवरी के एक घंटे के अंदर माताओं को अपना दूध देना चाहिए अपने नवजात शिशुओं को, जिसको पहला जो दूध होता है जो पीला और गाढ़ा होता है वो बहुत जरूरी है, जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम के अपने कई फायदे हैं, इसमें जो एनर्जी दी जाती है, जो मिलती है बच्चों को, वो काफी ज्यादा होती है। इसके साथ ही बहुत से एंटीबॉडीज होते हैं जिससे शिशुओं को कई तरह के रोगों से लड़ने में काफी ज्यादा कैपेसिटी उनकी डेवलप होती है। तो ये बहुत जरूरी है कि एक घंटे के अंदर स्तनपान कराएं अपने बच्चों को। तो ये आपके सवाल का पहला हिस्सा हुआ।
1: और एक दूसरा चीज ये भी जानना चाहूंगी कि साथ में की ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कौन कौन सी समस्याएं अक्सर माँ को होती हैं?
2: हाँ, 4-5 तरह की समस्याएं हैं। जैसे कि अगर डिलीवरी हुई है, नॉर्मल डिलीवरी भी है या सीजरियन सेक्शन भी है, तो जो पेन है, जो माताओं को निचले हिस्से में पेन होता है जिसकी वजह से वो बैठकर या किसी भी पोजीशन में दूध नहीं पिला पा रही है, ये पहली समस्या है। दूसरी बात जो बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं कि माताओं की ये शिकायत होती है कि पर्याप्त दूध की मात्रा नहीं आ रही है। ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो हमें उन्हें समझाना होता है कि जो बच्चा है उसकी जो कैपेसिटी है, स्टमक की कैपेसिटी है, वो बहुत कम होती है, 5 ml या 10 ml। तो जितना दूध आपका आ रहा है वो बच्चे के लिए सफिशिएंट है। ये काउंसलिंग पार्ट जो है जो सभी माताओं के लिए बहुत जरूरी है, उन्हें बैठ के समझाना किस तरह से आप स्तनपान कराएं, किस पोजीशन में कराएं, कितनी बार कराएं, ये एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही कई बार ऐसा होता है कि माताएं अगर ठीक से अपना दूध नहीं पिला पा रही हैं, तो हम जिसे कहते हैं दूध छाती का भर जाना, जिसे एंगॉर्ज्ड ब्रेस्ट कहते हैं, या क्रैक निपल्स होते हैं जिनकी वजह से माताओं को बहुत पेन होता है, जो माताएं अपने बच्चों को ठीक से स्तनपान नहीं करवा पाती हैं। तो इस तरह की कुछ आम समस्याएं हैं जो देखने में आती हैं। जी,
1: जैसे कि

0: अभी डॉक्टर सुजाता ने कहा कि दूध कम आ रहा है, तो डॉक्टर भारती आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार होता है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा दी है, बच्चा फिर भी रो जा रहा है, लगता है कि उसने अभी भूखा है, तो कैसे पता लगे कि बच्चा ने डाइट पूरी हो गई है या वो भूखा है? और साथ में मैं ये भी जानना चाहूंगी कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए और पानी कब देना चाहिए बच्चे को?
1: यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले मैं लेता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। तो जन्म से पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल और केवल माँ का दूध देना चाहिए। इस दौरान पानी, शहद, घुट्टी, गाय का दूध या कोई भी अन्य चीज देने की आवश्यकता नहीं है। माँ के दूध में ही बच्चों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी और सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। 6 महीने पूरे होने पर माँ का दूध जारी रखते हुए कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करना चाहिए। घर का ताजा, नरम और पौष्टिक भोजन जैसे दाल, चावल, खिचड़ी, मसली हुई सब्जियां और फल देना शुरू कर सकते हैं। माँ का दूध 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक जारी रखना चाहिए। अब आपका मैं दूसरा सवाल लेता हूँ कि कैसे पता चले कि बच्चा सही तरह से दूध पी रहा है। बच्चा स्तनपान के बाद तुरंत शांत हो जाता है और संतुष्ट दिखता है। 24 घंटे में कम से कम 6 से 7 बार यूरिन पास करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा फीड करने के बाद सो रहा है अच्छे से और 6 to 7 times यूरिन पास कर रहा है। उसका वजन बढ़ रहा है, एटलीस्ट 20 to 30 grams एक दिन में उसका वजन बढ़ रहा है। स्तनपान के समय बच्चा अच्छी तरह से स्तन को पकड़कर निगलने की आवाज माँ सुन पा रही है, तो इससे पता चलता है कि बच्चे को मिल्क मिल रहा है। ये सवाल आता है, मदर्स आती है हम लोग की ओपीडी में ये बता करके कि बच्चे को दूध नहीं हो रहा है, क्या हम अलग से ऊपर से दूध पिला दें? तो माँ को ये बताना बहुत जरूरी है, माँ को काउंसिल करना बहुत जरूरी है, माँ को एम्पावर करना बहुत जरूरी है कि आपके बच्चे को अगर वजन सही से बढ़ रहा है, बच्चा सो रहा है सही से, बच्चा यूरिन पास कर रहा है, तो आपको ऊपर का दूध देने का जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखें कि पहले 6 महीने केवल माँ का दूध दें, 6 महीने के बाद पूरक आहार के साथ माँ का दूध दें और 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक स्तनपान करें। यही स्वस्थ बच्चे की सबसे मजबूत नींव है।
0: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, गुड आफ्टरनून जी, मोहम्मद इम्तियाज एंड सलमा बेगम, जवाहर कैंप कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से। ये लिखते हैं, मेरा सवाल है कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत से घरों में आराम के लिए बोला जाता है, जैसे तुम ये ना करो या वो ना करो, यहाँ तक कि फिजिकली एक्टिविटीज भी बंद कर दी जाती है। बाद में क्या ये प्रॉब्लम का कारण हो सकता है, क्या परेशानी कर सकता है, तो प्लीज गाइड करें
2: जी। ये बहुत ही आम बात है जो काफी घरों में देखने को मिलती है कि आप अपनी जो एक्टिविटीज है वो अपने फिजिकल एक्टिविटीज को कितना कर सकते हैं और कितना रिस्ट्रिक्ट करना है। देखिए, रिस्ट्रिक्शन ऐसा सच कुछ खास नहीं है, आप अपने घर के जो नॉर्मल काम है वो सभी कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दिन में 2 घंटे और रात में 8 से 10 घंटे आप आराम कीजिए, कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस जो डॉक्टर की सलाह पे की जा सकती हैं। सो ऐसा नहीं है कि आपको अपनी एक्टिविटीज को, डेली रूटीन को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करना है। हाँ, जैसे कोई भारी वजन नहीं उठाना है, इसका ध्यान रखना है, भारी बाल्टी वगैरह इस तरह का कोई सामान नहीं उठाना है, इससे प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लेकिन आप अपना जो नॉर्मल रूटीन का काम है वो डेफिनेटली कर सकते हैं।
0: तो डॉक्टर भारती आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने अभी बताया था कि बच्चों को, जब हम बात करें तो वैक्सीनेशन की, तो बच्चों को वैक्सीनेशन कितनी इम्पोर्टेंट है और किस एज तक हमें देनी चाहिए?
1: टीके बच्चे की सुरक्षा कवच है, राइट? जैसे हम बाइक चलाते समय हेलमेट पहनते हैं, वैसे ही टीके बच्चे को कई गंभीर बीमारियों और जानलेवे बीमारियों से बचाते हैं। वैक्सीनेशन से पोलियो, टीबी, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, खसरा जिसको मिजल्स बोलते हैं, रूबेला, हेपेटाइटिस बी जैसी कई बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। टीकाकरण जन्म से शुरू हो जाता है। पहला टीका जन्म के समय लगता है, जिसमें कि हम BCG, हेपेटाइटिस बी और ओरल पोलियो देते हैं। इसके बाद 6, 10 और 14 वीक्स और फिर 9 months और उसके बाद 12 to 15 months, फिर 16 to 24 months यानी कि 2 साल, और उसके बाद भी उम्र के अनुसार बूस्टर टीके दिए जाते हैं। माता पिता को चाहिए कि बच्चे का टीकाकरण कार्ड हमेशा अपने पास संभाल कर रखें, सभी टीके समय पर लगवाएं।

0: किसी कारण से कोई टीका छूट जाए तो घबराए नहीं, अपने पीडियाट्रिशियन या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें और कैचअप वैक्सीनेशन करवाएं। ऐसा नहीं कि फिर से वैक्सीन शुरू हो जाएगा, राइट? तो देयर इज प्रोविजन ऑफ कैचअप वैक्सीनेशन, तो वो वैक्सीन शुरू हो जाता। सो समय पर लगाया गया हर टीका आपके बच्चे को स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ साथ मैं एक और टीके के बारे में बात करूंगा जो कि सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको शुरू कर दिया है, वो फ्री में गवर्नमेंट में मिलता है। और इसके साथ साथ कुछ टीके ऐसे भी हैं जो कि गवर्नमेंट सप्लाई में नहीं है, उसको भी लगाना चाहिए। जैसे फ्लू के टीके हैं, अगर अफोर्डेबल है तो इसके साथ साथ, जैसे चिकन पॉक्स है, हेपेटाइटिस ए है, फ्लू का टीका है, सर्वाइकल कैंसर का टीका है, मेनिंजाइटिस का टीका है, तो ये भी लगवाना चाहिए अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करने के बाद।
1: तो ये सारे वैक्सीनेशंस देखा जाए तो बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए हमें वैक्सीनेशन का नाम सुनकर डरना नहीं है,
0: डरना नहीं चाहिए।
1: हाँ, बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको वैक्सीनेशन जरूर लगवाना चाहिए। डॉक्टर सुजाता, जैसे कि आपने कहा था कि अभी हम बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए, कई बार होता है प्रेगनेंसी के दौरान घर पे वाकई में ये होता है कि मना कर देते कि काम मत करो, रेस्ट कर लो। कई बार होता है जो वर्किंग लेडीज होती हैं तो उनको क्या एहतियात बरतना चाहिए और कौन से मंथ तक वो काम कर सकती हैं और काम के क्या डाइट चार्ट फॉलो करे, क्या स्केड्यूल फॉलो करे जिससे वो काम भी कर ले और फिट भी रहे।
2: देखिए, जहां तक कामकाजी महिलाओं का सवाल है, इसमें तीन बातें जो हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले अपनी डाइट का ध्यान रखना। कई बार ऐसा होता है कि काम की अधिकता के कारण जो डाइट है, जो पौष्टिक आहार है, वही सबसे ज्यादा सफर कर रहा होता है। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया, 300 कैलोरीज प्रतिदिन अतिरिक्त, जैसे अगर एक नॉर्मल लेडी 2200 कैलोरीज ले रही है तो उसमें 300 कैलोरीज और जोड़ के 2500 कैलोरीज पर डे के हिसाब से उन्हें लेना होता है, जिसे वो अलग अलग मील्स के अकॉर्डिंग वो डिवाइड कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, बीच में तीन माइनर मील्स हैं, चाहे वो फ्रूट के फॉर्म में हो, चाहे वो फ्रूट जूसेस के फॉर्म में हो या सूप्स एंड सैलेड के फॉर्म में हो। प्रतिदिन 1 लीटर दूध लेना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही पनीर है, अंडा है, दाल है, जिसपे हमने पहले भी चर्चा की थी, वो बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा जो प्रोटीन इंटेक है पर डे वो भी बहुत जरूरी है बच्चों की ग्रोथ के लिए, विकास के लिए। जो आयरन है, कैल्शियम है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन है, एक एक चीज जो है वो बहुत ही जरूरी होती है। इसके साथ ही जो महिलाएं हैं वो बीच बीच में छोटे ब्रेक्स ले सकते हैं अपने काम के बीच में। अगर 10-15 मिनट, आधा घंटा अपना ब्रेक ले सकते हैं वो लंच टाइम के बाद या इस तरह से शाम के समय, तो इस तरह से डेफिनेटली वो अपनी जो थकावट है उसे कम कर सकते हैं। जब अगर लंबे समय तक बैठने का अगर काम है तो अपने पीछे कमर के साथ एक छोटा तकिया लगा के, ताकि इससे जो आपकी फटीक है वो कम हो, और आप अपने पैरों के नीचे एक छोटा स्टूल लगा के भी अपना काम को जारी रख सकते हैं। इससे आपके पैरों में जो थकावट है, जो सूजन है, वो काफी कम होती है। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। डेफिनेटली यू शुड टेक केयर ऑफ योर डाइट, एक्सरसाइज, आयरन एंड कैल्शियम सप्लीमेंटेशन।
1: इसके साथ में एक चीज और पूछना चाहूंगी जो मेरे मन में आई है, कई बार मूड स्विंग्स भी होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी और बाद में भी
2: जी,
1: तो उसका कैसे पता लगे कि हाँ इस वजह से हो रहा है और उसको कैसे नियंत्रण में करें?
2: जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है वो डेफिनेटली एक ऐसा एरिया है जिसकी तरफ न मरीजों का ध्यान जाता है, न डॉक्टर्स का ध्यान जाता है। 5% से 10% पेशेंट्स में, इन महिलाओं में जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है वो देखा गया है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो महिला ना अपना ध्यान रख सकती है, ना अपने नवजात शिशु का ध्यान रख सकती है, ना पौष्टिक आहार का ध्यान रख पाएंगी, ना आयरन और कैल्शियम की वो खुराक ठीक से ले पाएंगी। तो एक एक चीज बहुत जरूरी है। आपके परिवार को ध्यान रखना चाहिए कि उस महिला को एक सपोर्ट की जरूरत है, एक मेंटल सपोर्ट की जरूरत है। ये एक कठिन समय है उनके लिए, डिलीवरी या डिलीवरी के बाद, जिन्हें अपना भी ध्यान रखना है, अपने बच्चे का भी ध्यान रखना है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि परिवार का सहयोग ऐसी कंडीशंस में बहुत जरूरी है। और यस, अगर समस्या उत्पन्न होती है तो डेफिनेटली डॉक्टर्स के पास आना चाहिए और इलाज लेना चाहिए। इसका अपना एक अलग ट्रीटमेंट है, इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है।
1: डॉक्टर भारती, जैसे कि आप प्रेसिडेंट हैं NNF के, तो ये NNF इंडिया क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?
0: NNF यानी नेशनल न्यूरोलॉजी फोरम ऑफ इंडिया, यह भारत में नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए काम करने वाला सबसे बड़ा प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। NNF का उद्देश्य है कि देश के हर नवजात शिशु को जीवन की सुरक्षित और स्वस्थ शुरुआत मिले।

0: इसके लिए हम डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देते हैं, नवजात देखभाल के मानक स्टैंडर्ड तैयार करते हैं, शोध को बढ़ावा देते हैं और सरकार तथा अन्य ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करते हैं सो दैट की न्यूनेटल मोर्टैलिटी कम हो. बेबी शुड रिसीव द मिनिमम स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट अक्रॉस द कंट्री. ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर दिल्ली में पैदा हुआ तो उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिले और कोई बच्चा बहुत दूर दरार गांव में हुआ तो वहां ना मिले. तो हम लोग इस पर ध्यान देते हैं कि हर एक जगह एक मिनिमम न्यूनेटल स्टैंडर्ड से बच्चों को का देखभाल हो. एनएनएफ की सबसे महत्वपूर्ण पहल है न्यूनेटल रिसस्टेशन एनआरपी. समय से पूर्व जन्मे शिशु का देखभाल, जैसे जिसका कि हमने अभी बताया केएमसी, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना, इन्फेक्शन का रोकथाम के लिए काम करना और एनआईसीयू की गुणवत्ता को सुधार करना. हमारा एक्रीडेटेड सेंटर है, हमारे पूरे देश में एनएनएफ का 300 से ज्यादा एक्रीडेटेड सेंटर है. इसका ये मतलब हुआ कि उस सेंटर में एक मिनिमम स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है. अगर वो क्राइटेरिया, मैंडेटरी क्राइटेरिया वो हॉस्पिटल फुलफिल कर रहा है तभी हम लोग उसको सर्टिफाइड करते हैं. तो उस सेंटर पर जाकर के लोग अपने बच्चे को रख सकते हैं और दिखा सकते हैं. तो हमारा विश्वास है कि हर नवजात का जीवन अनमोल है और सही देखभाल सही समय पर सही हाथों से मिलनी चाहिए, यही एनएनएफ का संकल्प है.
1: और ये एनआरपी क्या है?
0: सो एनआरपी का पूरा नाम है न्यूनेटल रिसस्टेशन प्रोग्राम. इसका उद्देश्य है जन्म के समय हर नवजात शिशु को उसकी आवश्यकता के अनुसार सही देखभाल मिले. अक्सर लोग सोचते हैं एनआरपी केवल उन बच्चों के लिए है जो जन्म के बाद नहीं रोते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. लगभग 90% न्यूबॉर्न जन्म के बाद अपने आप रोते हैं और सामान्य रूप से सांस लेते हैं. एनआरपी हमें यह भी सिखाता है कि ऐसे स्वस्थ बच्चे को भी एसेंशियल न्यूबॉर्न कैसे दिया जाए. इसमें बच्चों को गर्म रखना, मेंटेनिंग टेम्परेचर, देर से नाल काटना दैट इज डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, जन्म के पहले एक घंटे में मां का दूध शुरू करना अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट के साथ साथ इन्फेक्शन ना हो, वो सारी बातें भी एनआरपी में सिखाई जाती है. यहीं पर जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि करीब 10% न्यूबॉर्न जन्म के समय नहीं रोते हैं, मतलब सांस नहीं ले पाता है. तो उसे हमें एयरवे, जिससे कि सांस हवा जाती है, तो एयरवे को खोलना या सांस देने में मदद करने की जरूरत होती है. तो वो भी हमें एनआरपी के थ्रू सिखाया जाता है. और लगभग 1% बच्चे ऐसे होते हैं जिसे कि एडवांस एनआरपी की जरूरत होती है, जिसमें कि हमें चेस्ट कंप्रेशन करना पड़ता है या मेडिकेशन देना पड़ता है, वो बहुत ही कम बच्चे हैं. सो यही कारण है कि एनआरपी केवल रिसस्टेशन ही नहीं सिखाता है बल्कि हर न्यूबॉर्न के लिए सही, सुरक्षित और एविडेंस बेस्ड केयर देना सिखाता है, ताकि हर बच्चे को जीवन की सबसे अच्छी शुरुआत मिल सके. हमने 10 मई को एनआरपी डे फॉर द फर्स्ट टाइम मनाया, जो कि वर्ल्ड में कहीं भी नहीं मना. और यह भारत की पहली बार इतने बड़े स्तर पर एक नेशनल मिशन के रूप में एनआरपी डे हमने मनाया. एक ही दिन पूरे देश में हजारों डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ केयर प्रोफेशनल को न्यूनेटल रिसस्टेशन प्रोग्राम का ट्रेनिंग दिया हम लोगों ने. यह अभियान का उद्देश्य केवल ट्रेनिंग देना नहीं था बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि देश के हर एक लेबर रूम या डिलीवरी सेंटर में कम से कम एक एनआरपी ट्रेन पर्सन उपलब्ध हो, ताकि जरूरत पड़ने पर हर नवजात शिशु को जन्म के पहले ही मिनट में सही सांस दिया जा सके. यह अभियान पूरे देश में एक दिन में मनाया गया, विथ वन डे वन नेशन वन मिशन के रूप में चलाया गया, जिसमें 11,000 से अधिक सेंटर्स, 2,000 से अधिक इंस्ट्रक्टर तथा 27,000 से अधिक हेल्थ केयर प्रोफेशनल को ट्रेन किया गया. यह भारत में न्यूबॉर्न केयर के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व पहल रही और ये पूरे वर्ल्ड में कभी भी 27,000 हेल्थ केयर प्रोफेशनल को एक दिन में फिजिकल रूप से ट्रेनिंग नहीं दिया गया. और ऐसा नहीं था कि ये

0: ट्रेनिंग सिर्फ दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में दिया गया। देश के कोने कोने में, अरुणाचल प्रदेश हो या कहीं भी, आप कोई भी शहर का नाम लीजिए, छोटे से छोटे शहर में जहां हमारा मेंबर्स है, वी आर हैविंग 15,000 मेंबर, उन्होंने इसका ट्रेनिंग दिया। और इस ट्रेनिंग में हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, फॉक्सी, सारे साथ मिलकर के हमें हेल्प किया। और ये ट्रेनिंग तो हमने अभी दिया, लेकिन इसका असर हमें 10 साल तक देखने को मिलेगा।
1: जी डॉक्टर भारती, आपने हमें NNF और NRP के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर सुजाता, आपसे जानना चाहेंगे, आपने प्रेगनेंसी के दौरान कैसे केयर करनी है ये तो हमें बता दिया। ये जरूर चाहेंगे कि हमारे सारे श्रोताओं को तक ये जानकारी पहुंच जाए कि डिलीवरी के बाद किन बातों का विशेष ध्यान रखना है।
2: जी, डिलीवरी के बाद जो है कुछ 4-5 जो मुख्य बातें हैं उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात है अपने स्वच्छता का ध्यान रखना। आप प्रतिदिन नहाएं, अपने दांतों की सफाई, अपने शरीर की सफाई, ईच एंड एवरी पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट। दूसरी बात है पौष्टिक भोजन का लेना। पौष्टिक भोजन होना चाहिए, भोजन पूरा होना चाहिए, जो आप नॉर्मल डाइट में लेते हैं बिल्कुल वही लीजिए। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करें कि केवल खिचड़ी लेनी है या दाल का पानी लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने नॉर्मल डाइट को बिल्कुल जारी रख सकते हैं। तीसरी बात इम्पॉर्टेंट जो है वो आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन है। डिलीवरी के बाद 2 या 3 महीने तक आपको आयरन और कैल्शियम बराबर खाना है, जिससे आपके ही नहीं आपके नवजात शिशु को भी काफी फायदा होता है। कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस भी हैं, कुछ पेट के निचले हिस्से की एक्सरसाइजेस, कुछ पेल्विक एक्सरसाइजेस, जिससे शरीर की जो मसल्स है उसमें भी स्ट्रेंथ आती है। आप अगर दर्द है, कुछ परेशानी है, तो डेफिनेटली पेन किलर्स ले सकते हैं, मगर डॉक्टरी सलाह और जांच बहुत जरूरी है। जी,
1: जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं मदर एंड चाइल्ड केयर पे, हमारा जाने का वक्त हो गया है, तो जाते जाते डॉक्टर सुजाता, आप मदर के लिए क्या संदेश देंगी और डॉक्टर भारती, आप चाइल्ड केयर के लिए क्या संदेश देंगी?
2: जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट संदेश जो मैं आप सभी के माध्यम से अपनी सभी माताओं को देना चाहती हूँ, अपने सभी पेशेंट्स को, वो है एक कदम आप बढ़ाएं, एक कदम हम बढ़ाएं, तभी स्वास्थ्य के सभी लक्ष्य पाएं। जी,
1: और डॉक्टर भारती, आप चाइल्ड केयर के लिए?
0: सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमें यहाँ बुलाया। और मेरा पहला संदेश होगा कि बच्चे को गर्म रखें, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट बनाकर रखें, और ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा दें और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ तक कराएं। बच्चे को बिना सलाह शहद, घुट्टी, पानी या दवाएं ना दें। बच्चा दूध ना पिए, सुस्त हो जाए, सांस लेने में कठिनाई हो, शरीर बहुत गर्म या ठंडा हो, दौरा आए, पीलिया बढ़े, तो इंतजार ना करें, तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाएं। और परिवार बच्चे की माँ का, बच्चे के साथ साथ माँ का भी ध्यान रखें।
1: तो दोस्तों, माँ का स्नेह, माँ का स्पर्श और माँ का दूध, यही वे अनमोल उपहार हैं जो किसी भी बच्चे को जीवन की सबसे मजबूत शुरुआत देते हैं। स्वस्थ माँ और स्वस्थ शिशु एक परिवार की ताकत है। आज की चर्चा से यही संदेश मिलता है। माँ और शिशु की अच्छी देखभाल, सही जानकारी, सही पोषण पूरे परिवार के सहयोग से होती है। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रही डॉक्टर सुजाता दास, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट, सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली, और हमारे साथ है डॉक्टर ललन के भारती, HOD पीडियाट्रिक, JPC हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड प्रेसिडेंट ऑफ NNF इंडिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की।
0: आपका भी बहुत
2: बहुत, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद
1: दोस्तों, हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthaiardelhi@gmail.com। जाते जाते बस इतना कहूंगी, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और खुशहाल परिवार, यही है बेहतर कल की नींव। इसी के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर रूबरू होंगे आप और हम आपके अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, मुस्कुरा रहे, नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

नमस्कार, प्रस्तुत है मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व करने का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्रण को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात कही। कहा कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर से पहले आए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। तेज बारिश के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान। महिला क्रिकेट में 2020 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रिंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से होगा। तो ये थे अभी तक के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार।

नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, नमे प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूँ आरजे चेतन। आज हम एक ऐसे विषय उठा रहे हैं जिसमें स्पष्ट रूप से हमने से कई लोगों की रुचि है, कार्य और जीवन में संतुलन। स्वस्थ जीवन शैली के लिए रणनीतियाँ, चाहे आप यात्रा पर हो, व्यायाम कर रहे हो या बस एक शांत पल का आनंद ले रहे हो, आइए अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के बीच सामंजस्य स्थापित करने के ठोस तरीके पर गौर करें। जिस दुनिया में हम रहते हैं उसके इस भवंडर में काम और जीवन के बीच उस मधुर स्थान को छूना एक तेज रफ्तार ट्रेन पकड़ने की कोशिश करने जैसी महसूस हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि क्या ये सिर्फ एक पहेली से कहीं अधिक है। ये हमारी भलाई को बरकरार रखने और हमारी खुशी के स्तर को ऊपर रखने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। जब तक ये प्रोग्राम खत्म न हो आप आराम से बैठ जाइए, क्योंकि हम कुछ व्यावहारिक रणनीतियों को उजागर करने जा रहे हैं। ये केवल आपकी सामान्य युक्तियां नहीं है, ये कार्य प्रतिबद्धताएं और व्यक्तिगत पूर्ति को संतुलित करने का नाजुक नृत्य के माध्यम से शानदार ढंग से चलने के लिए आपके भरोसेमंद रोड मैप की तरह है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस संतुलन क्रिया को थोड़ा और अच्छा संतुलन बनाते हैं। तो अब दोस्तों इस तथ्य पर हाँ कहकर शुरुआत करें कि उस आदर्श संतुलन तक पहुंचना एक बार की मंजिल के बजाय निरंतर चलने वाला साहसिक कार्य की तरह है। इसे एक यात्रा के रूप में देखें, न कि एक पड़ाव के रूप में। चाल एक ऐसी लाए कि खोज करना है जो आपके लिए क्लिक करती है, कुछ ऐसा जो आपको अपने व्यक्तिगत जीवन और जुनून को बढ़ावा देने के साथ साथ उन पेशेवर कर्तव्यों को पूरा करने देता है। यह सब उस जगह को खोजने के बारे में है जहां आपका काम और व्यक्तिगत दुनिया सामंजस्य स्थापित करती है, एक ऐसा माहौल बनाती है जो विशिष्ट रूप से आपका है। हाँ प्रिय श्रोता, काम में आपके समय का एक बड़ा हिस्सा लग जाता है और ऐसा महसूस होता है जैसे व्यक्तिगत गतिविधियां आपके शेड्यूल में लुका छुपी खेल रही है। तो आइए इस बारे में बात करें कि आत्म देखभाल कैसे करें, क्योंकि आप व्यस्त कार्यक्रम के बीच है, तरोताजा और विश्राम के उन क्षणों के हकदार हैं। तो आइए दोस्तों एक गेम चेंजर पर जूम इन करें, वह है सीमाएं निर्धारित करना। नॉनस्टॉप डिजिटल कनेक्शन के इस युग में काम उस दोस्त की तरह हो सकता है जो अपने स्वागत से ज्यादा देर तक रुकता है। काम के घंटे और व्यक्तिगत समय के बीच एक रेखा खींचना अपना खुद का जादुई मंत्र रखना जैसा है। यह अराजकता में संरचना लाता है और उस भयावह राक्षस के खिलाफ ढाल के रूप में कार्य करता है। दोस्तों हम सीमाएं तय करने की बात कर रहे हैं। आप जूम कॉल, ईमेल और कार्य से निपटने के एक दिन पूरा करते हैं। आप सोशल मीडिया पर लगातार स्क्रॉल करने के बजाय आप विराम कर सकते हैं। ये सीमाएं निर्धारित करने का जादू है, ये घोषणा करने के बारे में है, ठीक है काम करो, आपकी बारी है, अब ये व्यक्तिगत समय है। ये न केवल आपके निजी जीवन को काम के बोझ तले दबने से बचाता है बल्कि आपके मस्तिष्क को भी वह आवश्यक विश्राम देता है जिसका वो हकदार है। काम और फैमिली के बीच तालमेल रखना ही वर्क लाइफ बैलेंस कहलाता है मेरे दोस्तों। इस तालमेल के बिगड़ने से काफी कुछ बिगड़ सकता है, इसीलिए इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फिट एंड फाइन रहने के लिए लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस का होना बेहद जरूरी है। कामयाबी के लिए घंटों घंटों तक मेहनत करना ठीक माना जाता है, लेकिन कुशल और हेल्थी लाइफ के लिए काम और फैमिली के बीच बैलेंस बनाइए, इसे वर्क लाइफ बैलेंस कहा जाता है। सरल शब्दों में कहे तो काम और फैमिली के बीच तालमेल रखना ही वर्क लाइफ बैलेंस है। आप प्रायोरिटीज फिक्स करें मेरे दोस्तों, प्राथमिकता तय करें। एक समय में एक ही काम करना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले प्रायोरिटीज तय करना पड़ेगा। जो काम पहले जरूरी है उसे पहले करना चाहिए और गैर जरूरी कामों को बाद में करें, इससे पर्सनल लाइफ के लिए समय मिल जाता है।

जाता है। काम में जो छुट्टियां मिले उसे सही तरह मैनेज करें, जिससे घर के किसी जरूरी इवेंट मिस न हो। बात समझनी चाहिए कि जिंदगी में जो समय आ रहे हैं वो बीत जाएंगे और दोबारा नहीं आएंगे। फैमिली के साथ दोबारा टाइम भी नहीं मिलेगा, इसीलिए ऑफिस के काम के साथ साथ अपनी फैमिली और पर्सनल लाइफ को भी मैनेज करें। हर किसी के पास एक निश्चित समय है, इसीलिए टाइम को मैनेज करना सीखे। अगर एक काम निश्चित समय पर नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी दूसरे की मदद ले। इसके लिए कभी भी हिचकिचाए नहीं, इससे काम आसानी से हो जाएगा और थकान भी आप पर हावी नहीं होगा। ऑफिस और फैमिली के लिए वक्त निकालते निकालते खुद को समय देना न भूले। अपनी हेल्थ के लिए खुद के लिए समय निकालना चाहिए। इस वक्त में जो काम आपको खुशी दे वही करें, इससे आप खुद को और दूसरों को खुश रख पाएंगे। हर चीज को पहले से प्लान करके चले, स्पेशली फॉर वर्किंग वुमेन। इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि आप अपनी पूरी दिनचर्या की सही प्लानिंग करें। इसके लिए आपको सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट की सबसे पहली शर्त यह है कि आपको वक्त बर्बाद करने के बजाय इसको आपको फोकस करने के लिए यूज करना चाहिए। अपने बच्चों की रूटीन और फिर ऑफिस पहुंचकर वहां के कामों को पूरा करने का प्लान पहले ही करना चाहिए। हर काम का प्राथमिकता तय करें, जैसे कि मैंने आपने पहले बोला कि प्रायोरिटाइज योर वर्क। अपना होमवर्क समय पर करें, अपने लिए कुछ समय निकालें, जीवन साथी से खुलकर बात करें। वर्किंग वुमेन होने के नाते आपकी जिंदगी बिल्कुल सहज और सामान्यता तरीके से चले, इसके लिए आपको अपने जीवन साथी की मदद लेनी चाहिए। उसे हिचक तोड़कर सारी बातें करें और दोनों मिलकर घर परिवार की सारी जिम्मेदारियों को आपस में बांट लें। इससे आपको परेशानी नहीं होगी और काम भी आसानी से मिल बांट कर हो जाएगा। घर का काम ऑफिस, ऑफिस का काम घर पर न लाए। ये भी सुखी जीवन जीने का मूल मंत्र है कि घर के काम को कभी भी ऑफिस में न लाए। प्रोफेशनल की तरह बर्ताव करें और ऑफिस के काम को भी कभी घर पर न लेकर जाए। ऑफिस का सारा काम वही खत्म करके आए। जो महिला घर को और ऑफिस दोनों मैनेज करती है, उनके दिमाग में कई सारे बातें चलती रहती है, इससे इन्हें तनाव भी अधिक होता है। इससे कई बार डिप्रेशन के शिकार भी होते हैं। इसके लिए इन बातों का रखे ध्यान जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। दोस्तों, जिंदगी में हर बात को बहुत अधिक गंभीरता से न लिया करें। किसी भी चीज के बारे में दिन भर सोचते न रहना। सकारात्मक चीजें करें और नेगेटिव बातों को दिमाग में लेने की कोशिश न करें। दिन में कम से कम समय ही सही मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। काम को बाद में करने में भरोसा न छोड़ो। इससे आप अपने दिमाग को शांत रखकर अपने मेंटल हेल्थ को खुद मैनेज कर सकते हैं। कहने को ये बात आम लगती है, लेकिन ये सच है। घर परिवार और ऑफिस के चक्कर में कई बार हम खुद को पूरी तरह से भूल जाते हैं, लेकिन सेहत का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपका शेड्यूल कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, अपनी सेहत के लिए थोड़ा वक्त जरूर निकाले। सुबह व्यायाम करने से दिन भर आपका दिमाग और शरीर अच्छा रहेगा। ये भी बेहद जरूरी है कि बड़ी खुशियों का इंतजार न करें। वक्त मिलते ही कम दिनों के लिए सही वेकेशन पर जरूर जाइए, कई परिवार के साथ घूमे और कभी बाहर खाने पर चले जाए या कभी फिल्म देखने जाए। कुछ नहीं तो नहीं, अपने घर के आसपास वाले पार्क में जाके वॉक कर लीजिए, अपने दोस्तों से मिलिए, कुछ अच्छा सा काम जो आपको अच्छा लगे करने में, जैसे कि आपके हॉबीज रहे होंगे, आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पटिंग, ड्राइंग, म्यूजिक, डांस, जो भी आपको पसंद है ये सब आप कर सकते हैं और अपने आप को खुश रखिए। विद दिस लवली इन्फॉर्मेशन, दिस इज योर आरजे चेतन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट प्रोग्राम। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। बाय। आप एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर द्वारा निर्मित और प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे हैं। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

एग्जैक्टली वेलकम वेलकम वेलकम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी रेनबो 102.6 और ये आपका फेवरेट नॉलेज गेम शो की शुरुआत हो चुकी है, बिल्कुल जहां दिमाग बिना लगाए काम नहीं चलता है और हर सवाल लेकर आता है एक नया रंग आपके लिए और जहां आपको सिर्फ 5 सही सवालों का जवाब देना है और आप बन जाते हैं हमारे रेनबो जीनियस बिल्कुल। और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी क्विज जहां मुकाबला किसी दूसरे से नहीं बल्कि आपकी अपनी जनरल नॉलेज से होने वाला है। तो बिल्कुल गेम्स के रूल्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, आपको मिलेंगे सिर्फ 5 सवाल और अगर आप 5 सवालों के एकदम सही जवाब दे देते हैं तो आप बिल्कुल बन जाएंगे हमारे रेनबो जीनियस। तो तैयार हो जाइए क्योंकि पहला सवाल कुछ ही पलों में आने वाला है और हमारी जो नंबर है ना उसको भी आप नोट कर लीजिए, लाइव आपको हमसे बात करनी होगी 2342-1080 एंड 2342-1084, ये हमारे दो नंबर हैं। अगर आप दिल्ली के बाहर से बात कर रहे हैं तो 011 नंबर से पहले लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिल्कुल आप सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, लेकिन हाँ जल्दी तो करना होगा क्योंकि ज़्यादा पॉज भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि बहुत सारे हमारे श्रोता है ना वो हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं फिलहाल। और फिलहाल इस गीत के बाद मैं बिल्कुल जुड़ने वाला हूँ आपके साथ, नंबर नोट कर लीजिए एक बार फिर से 2342-1080 या फिर 2342-1084। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेनबो जीनियस।

0: और हम भी ऐसे ही सुनते रहेंगे आपको, क्योंकि आपके कॉल्स हमारे पास लगातार शुरू हो चुके हैं और हमारे पहले कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम है आपका, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार नमस्कार। अपना नाम प्लीज हमारे सुनने वालों को प्लीज बताएंगे और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं मनोज बंसल बोल रहा हूँ जी, हांसी हरियाणा से।
0: ओके, हांसी हरियाणा से इस वक्त मनोज बंसल जी हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण शहर है आपका और बिल्कुल 1000 पुराना वर्ष पुराना किला भी आपके यहाँ पर मौजूद है।
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल सही जानकारी आपके पास।
0: बहुत बहुत बहुत बढ़िया। सो मनोज जी तैयार हैं आज के क्विज के लिए?
1: हाँ जी हाँ जी
0: बिल्कुल। सो हमारा पहला सवाल आपके लिए आ रहा है, ज्यादा देर हम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे कॉलर्स यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल हमारे भारत से ही कि आपको बताना है कि 2026 जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें भारत ने मेडल टैली में कौन सा स्थान हासिल किया था?
1: चौथा स्थान हासिल किया।
0: बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल आप बहुत अच्छी शुरुआत की है आपने आज और साथ साथ आपको बताना है अगला सवाल आपके लिए आ रहा है, दूसरा सवाल, भारत में नेशनल स्पेस डे किस तारीख को मनाया जाता है? ये आपको बताना है, नेशनल स्पेस डे किस तारीख को मनाया जाता है भारत में?
1: नहीं मालूम है।
0: कोई बात नहीं, आप इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा समझिएगा। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी।
1: थैंक यू सो मच।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर कनेक्टेड है। हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी, स्वागत है आपका आकाशवाणी रेनबो पर। कौन बात कर रहे हैं?
2: Hello?
0: नहीं सुन पा रहे हैं शायद आप हमें। मुझे मेरे ख्याल में शायद इन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई। कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कनेक्ट हो सकते हैं बिल्कुल आकाशवाणी पर। रेनबो जीनियस चल रहा है इस वक्त, आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम, और इसके माध्यम से आप बिल्कुल रेनबो जीनियस बन सकते हैं। 5 सही सवालों के आपको जवाब देने हैं और बिल्कुल आपके नाम हो जाएगा ये खिताब। फिलहाल एक गीत के माध्यम से ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ा सा म्यूजिकल ब्रेक, और उसके बाद जुड़िएगा हमारे साथ और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो 102.6।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
2: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
1: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
4: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: मोहाली पंजाब से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, और क्या करते हैं विद्या आप?
1: सर मैं 9th क्लास के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो बिल्कुल आप स्टडी में बिल्कुल अच्छे से लगे हुए हैं। तो ये जो क्या बोलते हैं प्रोग्राम है, ये खास आपके लिए हमने डिजाइन किया हुआ है। सो बताइए कि आप तैयार हैं इस क्विज के लिए?
1: जी कोशिश करेंगे।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छा जवाब दिया कि कोशिश करेंगे। कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है, तो इसलिए हमेशा कोशिश करते रहने चाहिए जिंदगी में। हमें आपको बताना है कि चंद्रयान 3 का जो रोवर था उसका नाम क्या था? चंद्रयान 3 जो था हमारा अंतरिक्ष में गया था, उसका जो रोवर था उसका नाम क्या था, आपको बताना है। नहीं पता है ना सर? आंसर
1: जी सर
0: नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया, ये अच्छी बात है। जी जी
1: सर, मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप दूसरे लिसनर से पूछे, मतलब कि मेरी क्यू को ये वो शायद बता दे, फिर मेरे को पता चल जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं अगले जो हमारे लिसनर है उनसे पूछने वाला हूँ सवाल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।
1: जी सर,
0: थैंक यू सो मच। और बिल्कुल हमारे साथ अगले कॉलर भी कनेक्टेड है। हेलो।
2: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: मैं पंकज बात कर रहा हूँ सर, दिल्ली से।
0: पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो आज जो आप क्विज के लिए तैयार हैं?
2: जी।
0: सो पंकज, आपको बताना है कि चंद्रयान 3 का रोवर का नाम क्या था, वो आपको बताना है।
2: शायद विक्रम।
0: नहीं, गलत जवाब, लेकिन आपने तैयारी अच्छे से की थी, लेकिन आपने कोशिश भी अच्छे की। प्रज्ञान है उसका नाम, प्रज्ञान। तो कोई बात नहीं, पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अगली बार ट्राई जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
3: शंकर बोल रहे हैं,
0: पटना से। सॉरी, आपका नाम हम नहीं सुन पाए।
3: शंकर बोल रहे हैं पटना से सर।
0: अच्छा, शंकर जी बोल रहे हैं पटना से। सो क्या करते हैं आप?
3: स्टूडेंट
0: हैं। ओके, क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। आपको बताना है, स्टूडेंट हैं तो, कि भारत में टीचर्स डे कब मनाया जाता है?
3: 5 सितंबर को मनाया जाता है।
0: कब मनाया जाता है?
3: 5 सितंबर
0: को। कल ही टीचर्स डे मनाया हमारे पूरे भारतवर्ष ने। सो बिल्कुल, ये तो लेटेस्ट सवाल आपसे पूछ लिया हमने, है ना। अच्छा, ये तो पहला सवाल आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आपको बताना है कि भारत में नेशनल स्पेस डे किस तारीख को मनाया जाता है?
3: 23 अगस्त को मनाया जाता है सर।
0: 23 अगस्त को, बहुत सही जवाब आपने, बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ रहे हैं, 2 सवालों के आप सही जवाब दे चुके हैं। अब आपको बताना है कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो भारत में है वो कब मनाया जाता है, ये पूरा हफ्ता कब मनाया जाता है? नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो होता है हमारा, राष्ट्रीय पोषण जो सप्ताह होता है, वो किस एक से 7 सितंबर? बहुत सही जा रहे हैं आप, बहुत अच्छे से आपने ये इस खेल को खेल रहे हैं आप। और साथ ही साथ आपको बताना है कि अगला सवाल आप लिए, 3 सवाल को आप सही जवाब दे चुके हैं। साथ ही आपको बताना है कि प्रसून जोशी जी को 2026 में किस संस्थान का चेयरमैन बनाया गया है? प्रसून जोशी जी जो गीतकार हैं, फिल्म मेकर हैं, उनको किस संस्थान का चेयरमैन बनाया गया है 2026 में?
3: नाम तो सुने हैं लेकिन याद नहीं आ रहा,
0: याद नहीं आ रहा है। तो
3: प्रसून जोशी का नाम सुने हैं?
0: जी, काफी अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने बनाई हैं, तारे जमीन पे, भाग मिल्खा भाग, बहुत अच्छे अच्छे गीत उन्होंने लिखे हैं। तो नहीं याद आ रहा आपको?
3: नहीं सर, नहीं आ रहा।
0: कोई बात नहीं, आपने अच्छी ट्राई किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के लिए भी। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
3: थैंक यू सो मच,
0: टेक केयर। और फिलहाल आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, हमारे नंबर हैं 2342-1080 एंड 2342-1084। और अगर आप दिल्ली के बाहर से बात करें तो 011 लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए रेनबो जीनियस, क्योंकि अगर आपने 500 सवालों के सही जवाब दे दिए तो आप बन सकते हैं हमारे रेनबो जीनियस। अभी तक फिलहाल कोई बना नहीं है, सो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, आशुतोष के साथ।

0: बिल्कुल वेलकम, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेनबो जीनियस और फिलहाल हमारे साथ अगले कॉलर कनेक्टेड है हमारे साथ। हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी रेनबो पर।
1: जी हांसी हरियाणा से बात कर रहा हूँ,
0: रामधारियावाना जी इस वक्त हांसी हरियाणा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और आपका बहुत सारा वेलकम है आज के इस प्रोग्राम में। तो तैयार है क्विज के लिए आज?
1: जी कोशिश करूंगा।
0: चलिए बहुत अच्छी बात कही। और आपका पहला सवाल हम लेकर आ रहे हैं कि ब्रिक्स जो अभी जो होने वाला है सम्मेलन, वो किस देश में होने वाला है, कौन उसकी मेजबानी करने वाला है?
1: ये इंडिया करेगा मेजबानी।
0: इंडिया करने वाला है
1: 12 और 13 सितंबर
0: को। बहुत भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और बिल्कुल पहला सवाल आपने बिल्कुल सही जवाब दिया इसका। आपको बहुत सारी मुबारकबाद। और आपको बताना है कि 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें भारत की बॉक्सिंग टीम ने कितने मेडल्स जीते थे, आपका दूसरा सवाल है। उसमें बॉक्सिंग टीम ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारी भारतीय टीम ने। और
1: बॉक्सिंग
0: की टीम ने कितने मेडल्स जीते थे इस कॉमनवेल्थ गेम्स पे, याद आ रहा है आपको?
1: नो, गलत
0: जवाब। नहीं, सात भी नहीं। बहुत कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया, इसके लिए हम बिल्कुल आभार व्यक्त करते हैं आपका।
1: दस जीते सर, क्योंकि मुझे याद आ रहा सर कि सात तो स्वर्ण थे और
0: दो सवालों के सही जवाब दे चुके हैं। तीसरा सवाल हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कि नीति आयोग के जो फुल टाइम मेंबर्स होते हैं उनकी संख्या कितनी है, आपको ये बतानी है। तीसरा सवाल आपके लिए, नीति आयोग जो है उसके फुल टाइम मेंबर्स हैं उसकी उनकी संख्या कितनी है,
1: अध्यक्ष को मिला के सर? या
0: हाँ, मतलब वो फुल टाइम 2026 में उनको उनकी की गई है फुल टाइम मेंबर्स की, उसमें कितनी की गई है फिलहाल?

0: सर
1: नहीं याद आ रहा
0: सात
1: जी।
0: सेवन
1: सेवन, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, सात। और तीन सवालों के आप सही जवाब दे चुके हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। अब चौथा सवाल आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम, कि प्रसून जोशी जी हैं जो 2026 में किस संस्थान का चेयरमैन उनको बनाया गया था, ये आपको बताना है।
0: जी, ये प्रसार भारती की।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, चौथा, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है, बहुत ही करीब हैं आप अपने इस रेनबो जीनियस के सफर में। और आयुर्वेदा डे जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है, आपको इसका सवाल का जवाब देना है।
0: कौन सा सर?
1: आयुर्वेदा डे जो होता है, आयुर्वेदिक जो आयुर्वेदा डे होता है, उसका जो दिन होता है किस तारीख को वो मनाया जाता है, वो आपको बताना है। आयुर्वेदा डे
0: इंडिया,
1: यस इंडिया में, इंडिया में, यस जी जी जी
0: सर, भगवान धन्वंतरि के जन्मदिवस पर होता है
1: जी। बताइए,
0: पर्टिकुलर तो कोई डेट तो नहीं होती सर, फिर इसका धनतेरस के दिन जो होता है।
1: सो तारीख अभी आपको नहीं याद आ रही?
0: नहीं सर, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हर बार है ना ये,
1: हाँ,
0: इस बार आपको
1: नई तारीख पता है, इस बार इस वर्ष कौन सी तारीख को मनाया जा रहा है?
0: इस टाइम तो सर हर वर्ष मेरे को तो ये पता है सर, हाँ, धनतेरस के दिन
1: जी,
0: होता है।
1: जी जी जी जी तो
0: इस वर्ष का पूछ रहे हो आप?
1: जी
0: इस वर्ष का होना चाहिए सर, ये नवंबर कितना हो सकता, धनतेरस दीपावली होगा तो आई थिंक 10 होना चाहिए, 10 नवंबर।
1: नहीं, 10 नवंबर नहीं है इसका आंसर, कोई बात नहीं, आपने ट्राई अच्छा किया। चलिए, हम आपके लिए थोड़ा सा आपको मुश्किल लगा सवाल, तो हम कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन था तो हम ये सवाल चेंज कर देते हैं आपके लिए। और आपको जो अगला सवाल है, हम आखिरी सवाल दे रहे हैं एक बार फिर से, उसका आपको आंसर देना है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है?
0: संविधान दिवस,
1: जी संविधान दिवस कब मनाया जी?
0: 26 नवंबर।
1: बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके पांचों सही आपने सवालों के जवाब दिए। आपको, आप हमारे बने इस प्रोग्राम के पहले रेनबो जीनियस, और एक बार फिर से सभी श्रोताओं को अपना नाम और जगह का नाम प्लीज बता दीजिए।
0: जी, रामधारी अवाना बात कर रहा हूँ, गांव है मेरा ढाणी कुतुबपुर, जिला हांसी हरियाणा से बात कर रहा हूँ।
1: क्या बात है, तो आपको बहुत सारी मुबारकबाद, और आज हमारे पहले रेनबो जीनियस बने हैं रामधारी जी, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको।
0: बहुत आभार, धन्यवाद इस कार्यक्रम का भी, जो कि मुझे जॉब पे रहने के दौरान भी इस कार्यक्रम से कनेक्ट होने का मौका मिलता रहता
1: है। बिल्कुल बिल्कुल, और क्या करते हैं आप?
0: सर हरियाणा पुलिस में एज ए कांस्टेबल जॉब कर रहा हूँ।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, और आप देश सेवा में लगे हुए हैं लगातार, और ऐसे ही बस अपने काम को निरंतर करते चले जाइए। थैंक यू सो मच रामधारी जी हमसे जुड़ने के लिए।
0: थैंक यू सर,
1: बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल आप भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आप हमारे नंबर्स नोट कर सकते हैं 2342-1080 एंड 2342-1084, इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, 011 लगाना मत भूलिएगा। और बिल्कुल आप भी बन सकते हैं रेनबो जीनियस, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल एक कमर्शियल ब्रेक, और उसके बाद एक और गीत खास आपके लिए निकलेगा।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।

0: बिल्कुल, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हमारा विशेष कार्यक्रम चल रहा है रेनबो जीनियस। और इस वक्त हमारे अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत करते हैं। हेलो।
1: हेलो सर, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं बिट्स पिलानी सर, डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू राजस्थान से राहुल बात कर रहा हूँ।
0: क्या बात है राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और बिल्कुल ऐसी जगह से बात कर रहे हैं कि बिल्कुल नाम अपने आप ही रोशन है उस जगह का। सो बिल्कुल, आप क्या करते हैं?
1: मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता हूँ।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। और पहला सवाल हम आपके लिए इस क्विज का लेकर आ रहे हैं कि हम थोड़ा सा खेलों के प्रति थोड़ा सा आपको और सचेत करना चाहते हैं, क्योंकि इसलिए हम बात करें खेलों के बारे में। तो जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 हुए थे, उसमें भारत की ओर से पहला मेडल किसने जीता था, आपको उनका नाम बताना है।
1: बिल्कुल,
0: पहला मेडल किसने जीता था, थोड़ा हिंट देना चाहूंगा।
1: मेरा भाई चान्नू जी ने।
0: नहीं, ये पैरा एथलीट थे हमारे, और बिल्कुल उनके बारे में हम थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहे हैं कि उन्होंने जीता था पहला मेडल। नहीं आइडिया आपको?
1: ठीक है सर, धन्यवाद।
0: नहीं नहीं, कोई बात नहीं, चलो अगली बार आप ट्राई जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर कनेक्टेड है, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन बोल रहे हैं?
2: बिहार से।
0: आपका शुभ नाम?
2: अमोद कुमार।
0: अमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो हम जो सवाल आप पूछ रहे हैं आज की कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की ओर से पहला मेडल किसने जीता था, आपको उनका नाम बताना है। पहला मेडल किसने जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में, आपको उन खिलाड़ी का नाम बताना है। आपको शायद नहीं जानकारी?
2: नहीं सर।
0: कोई बात नहीं, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा से ट्राई कीजिएगा फिर कभी। थैंक यू सो मच। और फिलहाल बस, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, वक्त बहुत बहुत कम बचा है, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल, नंबर है हमारा 2342-1080 एंड 2342-1084, इन दो नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल एक कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद एक गीत, और फिलहाल एक बार फिर से कोशिश करेंगे आपसे बात करने की।
3: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

0: जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बस कोशिश करते हैं एक और कॉलर से बात करने की क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। हेलो
1: हेलो
0: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुभ नाम आपका, और कहाँ से बात कर रहे हैं
1: जी? मेरा नाम आकाश है।

0: और मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ।
1: आकाश आपका बहुत बहुत स्वागत है, तैयार हैं इस क्विज के लिए? टाइम बहुत कम बचा है एक्चुअली।
0: जी सर, जी सर।
1: जी जी जी, तो आपको बताना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने कुल कितने मेडल्स जीते थे अपने नाम किए थे?
0: 39 मेडल
1: जीते थे। बहुत सही जवाब आपने दिया है। और साथ ही साथ आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है?
0: राष्ट्रगान आपका जनगण मन।
1: राष्ट्रीय गीत बात कर रहा
0: हूं। वंदे मातरम,
1: सॉरी, वंदे मातरम, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। और आपको बताना है कि भारत में जो बाल दिवस है वो कब मनाया जाता है?
0: चाचा नेहरू जी के बर्थडे पे मनाया जाता है।
1: डेट क्या है? हम
0: 14 नवंबर।
1: 14 नवंबर, बिल्कुल सही जवाब। तीसरा आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और जो साथ में आपको बताना है कि चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग साइट थी, जो जहाँ पर वो उतरा था, उस पॉइंट का नाम क्या है?
0: शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया।
1: बहुत सही, बहुत सही। 4 सवालों के सही जवाब दे चुके हैं आप। और साथ ही साथ आपको बताना है कि भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है?
0: भारत का सबसे बड़ा
1: रेगिस्तान, उसका नाम क्या है?
0: थार रेगिस्तान है।
1: बिल्कुल सही जवाब। और हमारे सुनने वाले आपके खुद के आवाज में सुनना चाहते हैं आपका नाम और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: जी, मेरा नाम आकाश सोलंकी है, मैं दिल्ली के रोहिणी से बात कर रहा हूँ।
1: आकाश जी, बिल्कुल, आप हमारे दूसरे रेनबो जीनियस बने आज के इस प्रोग्राम के, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ।
0: ट्राई कर रहे थे, लगी नहीं रहा।
1: सो फाइनली आप हमारे साथ जुड़े, कनेक्ट हुए, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल हमको बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच आकाश,
0: धन्यवाद।
1: थैंक यू। बिल्कुल आज बिल्कुल आपके साथ, सभी के साथ जुड़कर हमें बहुत अच्छा लगा। आप लगातार यूं ही प्रयास करते रहिए, यूं ही मेहनत करते चले जाइए, क्योंकि मेहनत हमेशा रंग लेकर आती है और आप कभी ना कभी रेनबो जीनियस जरूर बनेंगे, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है और आपसे बात जरूर करेंगे। फिलहाल आप लगातार बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आकाश में रेनबो 102.6। आशुतोष आपसे लेता है अनुमति। थैंक यू सो मच, टेक केयर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारतीय लोग दुनिया की बड़ी कंपनियों का नेतृत्व कर सकते हैं तो भारतीय कंपनियां भी दुनिया का नेतृत्व कर सकती हैं।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती?

0: व्यक्ति, हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती। हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया की सफलता का भी उल्लेख किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार की तैयारी नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक तैयार करना भी होना चाहिए। गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और चरित्र निर्माण देश की प्रगति के लिए जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को नारी शक्ति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की शिक्षा और अवसर देकर आत्मनिर्भर बनाना ही सच्चा सशक्तिकरण है। श्री राधाकृष्णन आज से असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की है। उन्होंने मादक पदार्थों के खिलाफ देशव्यापी समन्वित अभियान चलाने का आह्वान किया। गोवा में गृहमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है। वर्ष 2014 से 2024 के बीच 1,19,00,000 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडप में आयोजित होगा। सम्मेलन की सुरक्षा तैयारियों के तहत आज सुबह दिल्ली पुलिस ने मोटर काफिले की रिहर्सल की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़ी प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है। उन्होंने कहा कि भारत के संप्रभु क्षेत्र, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल हैं, उन्हें भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दिखाया जाना चाहिए। किसी भी गलत या भ्रामक चित्रण को भारत स्वीकार नहीं करेगा। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट और अडिग है। कोयला मंत्रालय ने पंजाब के ताप विद्युत संयंत्रों में कम बिजली उत्पादन का कारण केंद्र से कोयले की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने की मीडिया की खबरों का खंडन किया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पंजाब के बिजली संयंत्रों के लिए पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध कराया गया है। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज 4 मंजिला इमारत ढह गई। अग्निशमन विभाग के अनुसार 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर दमकल की 18 गाड़ियां तैनात की गई हैं। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू को हराया। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में तेज वर्षा का अनुमान जताया है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल तक वर्षा की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ঘৰতে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানত ভাগ ল'বলৈ আপুনি আমালৈ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব পাৰে। আমাৰ নম্বৰ হৈছে 6003166944। পুৱা প্ৰচাৰিত ফোন ইন অনুৰোধৰ গীতৰ অনুষ্ঠান সুৰধ্বনি আৰু সন্ধিয়া প্ৰচাৰিত সান্ধ্য আলাপ অনুষ্ঠানটিলৈ আলোচিত বিষয় সম্পৰ্কত আপোনাৰ মতামত আদি প্ৰেৰণ কৰিবলৈ আপুনি আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটি আজিয়েই টুকি থওক। আমাৰ নম্বৰ হৈছে 6003166944। আপোনাৰ সৈতে আমাৰ যোগাযোগৰ এক নতুন মাধ্যম হৈছে হোৱাটছএপ মেছেজ। আমাৰ নম্বৰ 6003166944।
1: প্ৰিয় শ্ৰোতা, এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পাছতে ক্ৰমে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
2: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মে বৈষ্ণৱী। गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों रूपरेखा तैयार जारी की है। उन्होंने मादक पदार्थों के खिलाफ देशव्यापी समन्वित अभियान चलाने का आह्वान किया। गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है।
3: 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए एक रोड मैप बनाया है। 26 से 29 को हमने मिशन मोड अवधि के रूप में चिन्हित किया है, समय सीमाएं तय की है। 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, तीसरा डिमांड और हार्म रिडक्शन और चौथा क्षमता निर्माण और समन्वय।
2: श्री शाह ने बताया कि वर्ष 2014

0: से 2024 के बीच 1,19,00,000 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए गए। इनकी कीमत करीब 1,89,000 करोड़ रुपए है। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में सत्य निकेतन में बहुमंजिला पीजी आवास की इमारत ढहने की घटना के बाद अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे। दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलंक प्रदान करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमता को दर्शाती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार की तैयारी नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक तैयार करना भी होना चाहिए। गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और चरित्र निर्माण देश की प्रगति के लिए जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को नारी शक्ति का प्रतीक बताया। श्री राधाकृष्णन आज से असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। कोयला मंत्रालय ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि केंद्र से कोयले की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण पंजाब के ताप विद्युत संयंत्रों में कम बिजली उत्पादन हो रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड पंजाब सहित पूरे देश में बिजली उत्पादन के लिए निर्बाध कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी को बंबई उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने कल उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। वे बंबई उच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स में फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। A major rescue operation is underway after a multi-story building housing a student paying guest PG accommodation collapsed in Satya Niketan area of Delhi this afternoon. According to the All India Institute of Medical Sciences, AIIMS in New Delhi, 4 persons were brought to the trauma centre for treatment. Of them, 1 person was brought dead, 2 persons are in critical condition and 1 was discharged. Meanwhile, the Delhi police has said that 6 persons have been rescued so far and shifted to hospitals. Several people are feared trapped. The police said during the local inquiry, it was revealed that the building was 40 to 50 years old and some repair work was underway in the basement of the building when the incident happened. The Delhi Fire Service has deployed 18 fire tenders for the relief and rescue work at the location. The area where the incident occurred is close to the heart of Delhi University's South Campus and has several buildings, mostly housing student PGs, hostels and eateries. Delhi Lieutenant Governor Taranjit Singh

0: প্ৰিয় শ্ৰোতা, এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পাছতে সংস্কৃতত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। ऊनत्रिंशदधिकद्विसहस्रतमवर्षं यावत् भारतं मादकद्रव्यमुक्तं विधातुम् एका त्रिवार्षिकी मार्गदर्शिका प्रस्तुता। आगामि त्रिवर्षेषु शत अन्ताराष्ट्रिय तथा अन्ताराज्यीय मादक सञ्जालानि खण्डयितुं केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन निर्धारितं लक्ष्यम्। भारतस्य आर्थिकशक्तिः, नीति, गतिशीलता च देशं विकसित भारतस्य लक्ष्यं प्रति नयतः। भारतीय प्रतिष्ठानानि जागतिक स्तरे नेतृत्वं कुर्युः इति प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः ओजस्वयुतम् आह्वानम्। संयुक्तराष्ट्रसंसदि समान क्षेत्रफल मानचित्र प्रस्तावस्य भारतेन कृतं समर्थनम्। संप्रभुता प्रादेशिक अखण्डतयोः अक्षुण्णतां रेखाङ्कयत् भारतेन प्रोक्तम्।

0: यत् जम्मू कश्मीर लद्दाख समेत्य समस्त क्षेत्रस्य प्रदर्शनं केवलम् आधिकारिक मानचित्रानुगुणम् एव स्वीकार्यम्। मध्यप्रदेशस्य सागर मण्डले संदिग्ध विषाक्त मद्यपानेन 10 जनाः मृत्युमुपगताः, 35 जनाः चिकित्सालयेषु प्रवेशिताः, कतिपय संदिग्धाः आरक्षिदलेन गृहीताः। अपि च चीनदेशस्य शेंझेन नगरे आयोजितायां बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां चाइना मास्टर्स पुरुष युगल प्रतियोगितायाः चषकं भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी युगलेन विजितम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य गोवा राज्ये वार्ताहर सम्मेलने 39,000 वर्षं यावत् भारतं मादक द्रव्य मुक्तं कर्तुं रूपरेखां प्राकटयत्। तेन मादक पदार्थ विरोधी त्रिवार्षिक राष्ट्रीय अभियानस्य आह्वानं कृतम्। गृहमन्त्रिणा संसूचितं यत् प्रशासनेन 100 मादक संजालानि खण्डयितुं, 100 अपराधिनः भारतम् आनेतुं तथा 100 अवैधिक प्रयोगशालाः विनष्टं कर्तुं उच्च लक्ष्यं विनिर्धारितम्। नवदेहल्यां श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स महाविद्यालयस्य 100 वर्षे सम्पूर्णे सति आयोजिते शताब्दी समारोहे प्रधानमन्त्री मोदी मुख्य अभ्यागतः आसीत्। तेन जेन्जी युवा उद्यमिनः प्रोत्साहयितुम् उच्च लक्ष्य धारणस्य मन्त्रो दत्तः। तेन प्रोदीरितं यत् भारतीय मेधा जागतिक व्यापार जगत् नूतनां दिशं दर्शयति। एआई प्रौद्योगिक्याः उपयोगेन च देशः आर्थिक समृद्धिं प्राप्नोति।
1: हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
0: आर्थिक दृढ़ताम प्रतिपादयन प्रधानमंत्री अवोचत यत् पश्चिम एशिया संकटावधौ अपि भारतेन 7.8% यावत् अभूतपूर्व समृद्धि मानमर्जितम्। अनेन भारतस्य आन्तरिक शक्तेः परिचयः लभ्यते। तेन प्रख्यापितं यत् वैश्विक संकटेषु भारतस्य दृढ नीति संचालनमद्य जागतिक स्तरे श्लाघनीयं वर्तते।
1: जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी, वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है।
0: आत्मनिर्भर भारतस्य दिशि मेक इन इंडिया अभियानम् अभूतपूर्वम् परिवर्तनम् साधयतीति प्रधानमंत्री अवोचत्। अनेन अभियानेन भारतमद्य प्रमुख निर्यातक राष्ट्रम् अभवत्। असौ न्यगादीत् यत् स्मार्टफोन क्षेत्रे 2.25 लाख कोटि रूप्यकाणां निर्यातं सम्प्राप्तम्। रक्षा उत्पादने च 2 लाख कोटि रूप्यकाणां नूतन कीर्तिमानं स्थापितम्। भारतस्य भौगोलिक अखण्डतां संप्रभुतां रेखांकयन् विदेश मन्त्रालयः संयुक्त राष्ट्रस्य मानचित्र प्रस्तावे स्वपक्षम् उपस्थापितवान्। मन्त्रालयस्य प्रवक्त्रा रणधीर जयसवालेन प्रोक्तं यत् भारतेन यूएन प्रस्तावस्य समर्थनं कुर्वता स्पष्टं कृतं यत् भारतस्य राष्ट्रिय सीमासु किमपि भ्रामकं प्रदर्शनम् असह्यमस्ति। तेन प्रोक्तं यत् अयं प्रस्तावः कस्यापि देशस्य सीमायाः अनुमोदनं नैव करोति, अपि तु केवलं समान क्षेत्रफल प्रदर्शनस्य नीतिं पोषयति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। नवदेहल्याम् अद्य महती दुर्घटना अभवत् यत्र सत्यनिकेतन क्षेत्रे एकं 5-स्तरीयं भवनं

0: ध्वस्तम अभवत्। सूचनां प्राप्य देहली अग्निशमन दलेन अष्टादश वाहनानि प्रेष्य आपदुद्धार कार्यम् आरब्धम्। ततः एव चतुः जनाः उद्धृत्य चिकित्सालयं प्रति नीताः, तेषु एकः मृत्युमुपगतः, अन्ये च गभीरावस्थायां सन्ति। उपराज्यपालः तरंजीत सिंह संधुः, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता च पीडितानां सहाय्याय त्वरित निर्देशान् अयच्छताम्। सहैव सुरक्षा दृष्ट्या पार्श्वस्थम् एकम् अपरं भवनमपि रिक्तं कारितम्। सागरमण्डले विषाक्त मद्यपानेन भीषण त्रासदी संजाता, यत्र दश जनाः स्वप्राणान् अयच्छन्, पञ्चत्रिंशत् जनाः चिकित्सालयेषु नीताः, येषु केषाञ्चन अवस्था गभीरा वर्तते। गंभीर रुग्णाः बुन्देलखण्ड वैद्यकीय महाविद्यालयं तथा सागर मंडल चिकित्सालयं प्रति स्थानान्तरिताः सन्ति। एषा घटना बन्दा आरक्षी स्थानक क्षेत्रस्य नवराजा तथा गुगरा खुर्द इत्यत्र अभवत्। समाहर्त्री अवोचत् यत् शव परीक्षणस्य प्राथमिक निष्कर्षैः मिथेल अल्कोहल इति विषाक्त रसायनस्य सेवनस्य संभावना प्रतीयते। घटना संबंधे बन्दा थाना क्षेत्रात केचन संदिग्धाः गृहीताः सन्ति। ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य आतिथ्यं कर्तुं राष्ट्र राजधानी नवदेहली पूर्ण सज्जतां भजते। सितंबर मासस्य द्वादश त्रयोदश दिनांकयोः भारत मंडपम् इत्यत्र आयोज्यमानस्य अस्य बृहत् सम्मेलनस्य सुरक्षा समीक्षायै देहली आरक्षी दलेन अद्य वाहन व्यूह पूर्वाभ्यासः संचालितः। सम्मेलने विश्व नेतारः ब्रिक्स देशानां प्रमुखाश्च भागं ग्रहीष्यन्ति। आसाम प्रवासे संप्राप्तः उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् अद्य गुवाहाट्यां गीतानगर महाविद्यालयस्य 50वें वार्षिकोत्सवे मुख्य अभ्यागतः आसीत्। तेन छात्रान् संबोध्य गुणवत्तापूर्वकं शिक्षायै अनुसंधानाय च बलं दत्तम्। उपराष्ट्रपतिना उच्चशिक्षायां महिलानां सहभागिता नारीशक्तेः प्रतीकमिति अभिहितम्। बैडमिंटन क्रीडायां अद्य शेंजेन नगरे चाइना मास्टर्स स्पर्धायाः पुरुष युगल क्रीडायां सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी इत्येतयोः भारतीय युगलेन उपाधिः विजितः। चीन देशस्य हीजी टिंग तथा रेन्जियांग यू इत्युभयोः युगलम् एकादश एकविंशतिः एकविंशति त्रयोदश एकविंशति सप्तदश अंकैः पराजित्य प्रथमवारं स्वर्णपदकं प्राप्तवन्तौ। पुनः एकवारं मुख्याः वार्ताः। ऊनत्रिंशदधिकद्विसहस्रतम वर्षं यावत् भारतं मादकद्रव्यमुक्तं विधातुम् एका त्रिवार्षिकी मार्गदर्शिका प्रस्तुता। भारतस्य आर्थिकशक्तिः, नीति, गतिशीलता च देशं विकसितभारतस्य लक्ष्यं प्रति नयतः। संयुक्तराष्ट्रसंसदि समानक्षेत्रफलमानचित्रप्रस्तावस्य भारतेन कृतं समर्थनम्। मध्यप्रदेशस्य सागरमण्डले संदिग्ध विषाक्त मद्यपानेन जनाः मृत्युमुपगताः इति वार्ताः।
1: बातरी पासते उभति आहिसो जुबवाणीर अनुष्ठानर माजलय। प्रिय श्रोता, एया आकाशवाणी गुवाहाटीर प्राग्जोतिषपुर अनुष्ठान प्रचार करा हैछे मीडियम वेभर 299.9 मीटार 1035 किलोहार्ज आरु डी आर एम फ्रिकुवेन्सीर 1026 किलोहार्ज। প্রিয় শ্রোতা, এতিয়া আগবঢ়াইছো গীতেৰে কথাৰ অনুষ্ঠানটিৰ দ্বিতীয়টি অংশ। অনুষ্ঠানটিৰ আঠ ধৰিছে ঝৰ্ণা ভৰালীয়ে।
2: বাতৰিৰ পাছত পুনৰ উভতি আহিছো গীতেৰে কথাৰে অনুষ্ঠানৰ দ্বিতীয়টি খণ্ডলৈ। অসমীয়াৰ হৃদয়ৰ নজহান অপমা এটি নাম সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকা। তেওঁ আছিল শব্দৰ খনিকৰ, কি নাছিল তেওঁৰ গীতত, তেওঁৰ গানত প্ৰাণৱন্ত হৈ পৰে লুইতখন। তেখেত আজীৱন আমৰণ প্ৰবাহিত হৈ ৰব আমাৰ হৃদয়ত, আমাৰ ভাষাত, আমাৰ অসমখনত আৰু প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ উশাহত।
3: নমস্কাৰ, আপোনাক আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ গীতেৰে কথাৰে অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম। আপোনাৰ পৰিচয়টো জানিব বিচাৰিম।
4: মোৰ নাম অংকিতা বৰুৱা, মই গুৱাহাটীৰ

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढह गई। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने बताया है कि चार लोगों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर लाया गया। इनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई, दो की हालत गंभीर है, जबकि एक व्यक्ति को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि अब तक 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। पुलिस के अनुसार स्थानीय जांच में पता चला कि इमारत 40 से 50 वर्ष पुरानी थी और हादसे के समय इसके बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था। दिल्ली अग्निशमन विभाग ने राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर दमकल की 18 गाड़ियां तैनात की हैं। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी संबंधित एजेंसियों को समन्वय के साथ राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने बताया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एहतियात के तौर पर पास की एक इमारत को भी खाली करा लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में इमारत ढहने की घटना के बाद अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे। दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर भी प्रदान करना था। इससे पहले गोवा में

0: ভজনৰ অনুষ্ঠানটিৰ ইমানতে অন্ত পৰিল। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পাছত 8:45 সমাচাৰ সন্ধ্যা, 9:00 নিউজ এট 9 আৰু 9:15 স্পটলাইট দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সে সমাচাৰ সন্ধ্যা কে সাথ মই বৈষ্ণৱী। मुख्य समाचार। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने तथा नशीले पदार्थों से दूर रहने का आग्रह किया। सोशल मीडिया के रचनात्मक उपयोग का भी आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया। विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
2: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी, जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं।
3: 2 टीमें करीब 70 लोग हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर और विक्टिम्स को हमने आइडेंटिफाई किया है और इसमें हमने अपने कैनाइंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कटिंग इक्विपमेंट है, टेक्निकल इक्विपमेंट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक 4 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और जो भी लोकल कम्युनिटी है वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रही है, असिस्टेंस दे रही है, सबके कोऑपरेशन से हमने 4 विक्टिम्स को निकाला है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। गृहमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। श्री नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। इस बीच श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। गृहमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इसके अतिरिक्त श्री शाह अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे। दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करना था। इससे पहले गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में श्री शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों की रूपरेखा भी जारी की है।
4: 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, तीसरा डिमांड और हार्म रिडक्शन और चौथा क्षमता निर्माण और समन्वय।
1: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है।
4: 2004 से 14 जो कांग्रेस का शासन था उसमें ड्रग की मात्रा 26 लाख किलोग्राम और आज वो बढ़कर 14 से 26 में 1,19,00,000 किलोग्राम से ज्यादा पकड़ा गया। उसका मूल्य 1,89,000 करोड़। 14 से 26 में 48,66,000 किलो ड्रग विनिष्ट करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर कर रहने के लिए भी प्रेरित करने का आह्वान किया है। असम के गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए।
8: Our thoughts, our thinking, our

0: actions should be controlled by one single factor, that is our own brain. Drugs should not determine what we should think. Our brain should determine what we should think and act. That's why wherever I am going, I am always saying, say no to drugs. Not only you should not take the drugs, you should not allow your friends, family members also should not take drugs.
1: असम के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 45% की वृद्धि हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर सहित हर राज्य और क्षेत्र का समावेशी विकास जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉ. सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता को पहचानने की जरूरत है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आर्थिक शक्ति बन रहा है। देश व्यापार, वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश भी इस विकास यात्रा में आगे बढ़ रहा है। डॉ. यादव 3 दिन की दुबई यात्रा पर आज संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य मध्य प्रदेश में अधिक निवेश और नए उद्योग आकर्षित करना है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि उसकी एयरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमेरिकी विमानवाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमेरिका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में संदिग्ध जहरीली और अवैध शराब के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर आबकारी विभाग के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। एक अन्य अधिकारी को जिले से हटाकर मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में वन्य जीवों के शिकार के खिलाफ चल रहे अभियान में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने बाघों के शिकार के आरोपी शेरू पारधी उर्फ शेरू सिंह को शहडोल के ब्योहारी से गिरफ्तार किया है। शेरू पारधी कटनी का रहने वाला है और करीब 1.5 साल से फरार था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कल आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस बीच उत्तर प्रदेश में कई नदियां अब भी उफान पर हैं और 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं।
5: शाहजहांपुर जिले में गंगा और रामगंगा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण और रामघाट का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने 800 बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की और बेघर परिवारों को भूमि

0: ৰামধেনু অনুষ্ঠানটি শুনিলে। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া দেওপৰীয়া নৈশ সংগীতানুষ্ঠানত এন আৰ প্ৰসন্নাথৰ কৰ্ণাটকী কণ্ঠসংগীত দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: ये आकाशवाणी है। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के आज के प्रसारण में अब हम आपके लिए श्री एन आर प्रशांत का कर्नाटक शास्त्रीय गायन प्रस्तुत कर रहे हैं।
2: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी विल नाउ ब्रिंग यू द कर्नाटक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय श्री एन आर प्रशांत।
1: श्री एन आर प्रशांत कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के एक प्रतिष्ठित गायक हैं, जो संगीत क्षेत्र में अपने अभिनव और शोध आधारित असाधारण योगदान के लिए जाने जाते हैं। श्री एन आर प्रशांत की संगीतमय यात्रा का शुभारंभ बेंगलुरु में विद्वान आर के पद्मनाभ के मार्गदर्शन में हुआ। श्री तिट्टे कृष्णयंगार जैसी महान विभूतियों से प्रेरित होकर आपने विदुषी नीला रामगोपाल के सानिध्य में अपना गहन प्रशिक्षण जारी रखा। तत्पश्चात प्रोफेसर आर विश्वेश्वरन जी के आदरणीय मार्गदर्शन में आपने कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की सूक्ष्म बारीकियों की गहरी समझ प्राप्त की। आपने मैसूर विश्वविद्यालय से इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की थी। आप वर्तमान में आकाशवाणी के प्रतिष्ठित ए ग्रेड कलाकार हैं। आपकी संगीतमय यात्रा की एक विशेष और अद्वितीय उपलब्धि एक राग संगीत सभाओं का सफलतापूर्वक संचालन करना है। वर्ष 2001 में आपको सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट्स सोसाइटी में वरिष्ठ संकाय सदस्य के रूप में आमंत्रित एवं नियुक्त किया गया था।
2: श्री एन आर प्रशांत इज अ डिस्टिंग्विश्ड वोकलिस्ट इन कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक रेनाउंड फॉर हिज इनोवेटिव एंड रिसर्च ओरिएंटेड exceptional contributions to the field. Shri N.R. Prashant's musical journey commenced in Bengaluru under the guidance of Vidwan R.K. Padmanabha. Inspired by stalwarts like Shri Tite Krishna Iyengar, he pursued his advanced training under the tutelage of Vidushi Neela Ramgopal. Subsequently, under the revered mentorship of Professor R. Vishweshwaran, he gained a deep understanding of the subtle nuances of Carnatic classical music. He earned a degree in engineering in instrumentation technology from the University of Mysore. He is currently a prestigious A-grade artist of Akashvani. A distinct and unique highlight of his musical journey is the successful presentation of the Ekaraga concert series. In the year 2001, he was invited and appointed as a senior faculty member at the Singapore Indian Fine Arts Society.
1: आज के कार्यक्रम में आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर सीवी श्रुति, मृदंगम पर ये राधेश और घटम पर शरद कौशिक।
2: In tonight's broadcast, he is accompanied on the violin by CV Shruti, on the mridangam by A Radhesh and on the ghatam by Sharad Kaushik.
1: श्री एन आर प्रशांत अपने कार्यक्रम का आरंभ स्वाति तिरुनाल की रचना से कर रहे हैं, नरसिंह मामवा, जो राग आरभी खंड चापताल में निबद्ध हैं।
2: श्री एन आर प्रशांत बिगिन्स हिज कॉन्सर्ट विद द कंपोजिशन ऑफ स्वाति तिरुनाल नरसिंह मामवा इन राग आरभी सेट टू खंड चापताल।

0: लीजिए अब आप सुनिए मैसूर वासुदेवाचार्य की कृति देवी रमे मामवाब्दि तनये, जो राग वसंत तथा आदिताल में निबद्ध हैं।
1: यू विल नाउ लिसन टू अ कंपोजिशन ऑफ मैसूर वासुदेवाचार्य देवी रमे मामवाब्दि तनये इन द राग वसंता सेट टू आदिताल।

0: श्री एनआर प्रशांत अपने गायन को जारी रखते हुए अब प्रस्तुत कर रहे हैं रामनाथपुरम श्रीनिवास अय्यंगार की एक रचना परम पावन रामा, जो राग पूर्वी कल्याणी आदि ताल में निबद्ध हैं।
1: कंटिन्यूइंग हिज वोकल रिसाइटल, श्री एनआर प्रशांत विल नाउ प्रेजेंट अ कंपोजिशन ऑफ रामनाथपुरम श्रीनिवास अय्यंगार परम पावन रामा इन द राग पूर्वी कल्याणी सेट टू आदिताल।

0: इसके साथ ही रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में श्री एनआर प्रशांत का कर्नाटक शास्त्रीय गायन अब संपन्न होता है। संगत करने वाले थे वायलिन पर सी वी श्रुति, मृदंगम पर ए राधेश और घटम पर शरद कौशिक।
1: विद दैट वी कंक्लूड द कर्नाटिक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय श्री एनआर प्रशांत इन द ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। He was accompanied on the violin by

0: C.V. Shruti, on the Mridangam by A. Radhesh and on the Ghatam by Sharat Kaushik.
1: इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी के मैसूर केंद्र पर की गई और इसे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया.
0: This program was recorded at the studios of Akashvani Mysuru and the broadcast came to you from Akashvani Delhi.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर. अब से कुछ ही क्षण बाद समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए.
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र. नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है. अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया. संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
4: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है. जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था. बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई. पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है. हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए. दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ.
3: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु भी घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी. एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस पुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया. उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है. उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर रहने के लिए भी प्रेरित करने का आह्वान किया है. असम के गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए. असम के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 45% की वृद्धि हुई है. उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर सहित हर राज्य और क्षेत्र का समावेशी विकास जरूरी है. विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है. कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉ सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता पहचानने की जरूरत है. ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है. क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं. ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा है कि उनके एरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमरीकी विमान वाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया. ईरान ने इन हमलों को दिन में अमरीका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया. इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण 8 हवाई अड्डों पर परिचालन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। इससे 1.5 लाख से अधिक यात्री फंस गए हैं। परिवहन मंत्री रूडी पूर्वा गांधी ने बताया कि अब तक 712 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। जकार्ता के सोकार्नो हट्टा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने आज सुबह अनाक क्राकाटाऊ ज्वालामुखी से निकली राख के हवाई क्षेत्र में पाए जाने के बाद सबसे पहले परिचालन निलंबित किया। चीन के शेंझेन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी के चीन के हे जी टिंग और रेयान जियांग यू को हराया। इस वर्ष यह उनका दूसरा सुपर 750 और कुल मिलाकर चौथा खिताब है। सात्विक चिराग की जोड़ी इस टूर्नामेंट में 2023 और 2025 में उपविजेता रही थी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashwani, the news read by Aditi Lumba. A multi-story building housing a student paying guest accommodation collapsed in Satyaniketan area of Delhi this afternoon. 3 persons have lost their lives and 11 people have been rescued so far, while several students are feared trapped under the debris. A major rescue operation involving multiple emergency and disaster response agencies is underway. Delhi Chief Minister Rekha Gupta visited the mishap site and took stock of the situation. Talking to media after the visit, Ms. Gupta said relief and rescue operations are continuing on a war footing. She said those found responsible for the incident will not be spared. Delhi Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu also reached the mishap site and oversaw the rescue operations. Talking to media, Inspector General of the National Disaster Response Force, N.S. Bundela, said that 2 NDRF teams comprising 70 personnel are currently working on the site. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief at the loss of lives in the incident. Union Home Minister Amit Shah said he spoke with the Delhi Chief Minister, Delhi Police Commissioner and the Director General of NDRF and took stock of the situation. Union Home Minister Amit Shah has said the government has prepared a 3-year roadmap to make country drug-free by 2029. He said the roadmap will be based on a 4-pillar approach aimed at dismantling narcotics networks. Mr. Shah was addressing a press conference at Panaji in Goa. He said a drug-free youth will play a crucial role in achieving the vision of a developed India by 2047.
6: 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए एक रोड मैप बनाया है।
7: We have prepared a roadmap to make India drug-free by 2029. We have identified the period from 2026 to 2029 as a mission mode period with clearly defined timelines and targets. Our vision document is based on 4 key pillars. First, intelligence and operations-based enforcement. Second, effective control over precursors and synthetic drugs. Third, demand reduction and harm reduction. And fourth, capacity building and cooperation.
5: Vice President C.P. Radhakrishnan today urged students to stay away from drugs and restrict social media usage. He called upon youth to stay healthy and disciplined lives and contribute towards building a drug-free India. He also advised students to use social media constructively and not allow it to consume excessive time. Mr. Radhakrishnan was addressing the convocation ceremony of Srimanta Sankaradeva University of Health Sciences at Guwahati in Assam. The Vice President reached Guwahati today on a 2-day visit to Assam. Earlier in the day, Mr. Radhakrishnan addressed the Golden Jubilee celebrations of Geeta Nagar College in Guwahati. Indian Space Research Organization ISRO has issued a clarification on reports circulating in the media regarding the speculations and misinformation that there is an attempt to privatize ISRO or reduce its role. In a social media post, ISRO said that it will neither be privatized nor will its importance be diminished. It added that participation of the private sector in space is aimed at enabling ISRO to focus even more strongly on the next generation of India's space program while industry scales up mature technologies and capabilities. ISRO said the space sector reforms aims to create a larger, stronger and globally competitive Indian space ecosystem. It also said the reform should therefore be seen as ecosystem expansion and capability multiplication rather than privatization. Union Science and Technology and Earth Sciences Minister Dr. Jitendra Singh has called for taking country's rapidly expanding startup ecosystem beyond the metropolitan centres.